मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़ एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 28 जून सन 2026, सुबह के 5:57 होने को हैं। अब हमारी पहली सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है।

0: हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए यह खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुई संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। चाहा नहीं मैंने दौलत की कोई ताज, तेरी मुस्कान ही है मेरी सबसे बड़ी आस। चाहा नहीं मैंने दुनिया की हर खुशी, बस तू साथ रहे यही है मेरी जिंदगी।

मीत वही जो हर मुश्किल में साथ निभाए, बिना कहे दिल का हर दर्द समझ जाए। सुख में तो दुनिया साथ चलती है, सच्चा दोस्त वही जो दुख में मुस्कुराना सिखाए।

मेरे मन के तमस में उम्मीद का दीप जला देना, जब भी मैं हारने लगूं हौसला फिर से जगा देना। मेरे मन के तमस में विश्वास की किरण भर दो, जीवन के सुने पथ पर मुस्कानों का सफर कर दो।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:20 हुए हैं, लिए सुनिए प्रकाश किरण।
1: जीवन में श्रेष्ठ क्या है, इस संबंध में महात्मा बुद्ध ने अपने कामासक्त छोटे भाई नंद को जो उपदेश दिया है वह इस प्रकार है।

संसार की समस्त धनों में श्रद्धा का धन श्रेष्ठ है। क्यों? श्रद्धा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान रूपी रस ही श्रेष्ठ है, क्योंकि यही रस सच्चे आनंद का अनुभव कराता है। आत्मा का सुख ही श्रेष्ठ है। विद्या के प्रति अनुराग सबसे बड़ी साधना है। बुद्ध ने मनुष्य का ध्यान आत्मोन्नति की ओर आकर्षित किया है। मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत होकर पापों की ओर प्रवृत्त हो जाता है।

मनुष्य को कल्याणकारी शांति के सुख को ग्रहण करना चाहिए। ये वह सुख है जो निश्चित है, भय ग्लानि और शोक से रहित है। यह सुख दूसरों पर आश्रित नहीं है। आत्मा का सुख ऐसा होता है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। इंद्रियों के विषयों से दुख उठाने का कोई प्रयोजन नहीं है। यदि हम विचार पूर्वक देखें तो ये सत्य है, जहाँ भय और शोक है या जो सुख किसी दूसरे पर आश्रित होता है, वह कल्याणकारी कभी हो ही नहीं।

वृद्धावस्था के समान मलिनता अर्थात कुरूपता कोई नहीं है। संसार में रोग के समान कोई दुख नहीं है, मृत्यु के समान भय भी नहीं है, परंतु प्राणी इन तीनों अवस्थाओं को भोगने के लिए दिवस है, क्योंकि सुंदर से सुंदर यौवन संपन्न प्राणी वृद्धावस्था में असुंदर और घृणित हो जाता है। निरोगता को सर्वप्रथम सुख माना ही गया है। मृत्यु से बनकर तो कोई भय हो ही नहीं सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। भय और शोक ये जीवन के मूल दुख हैं।

इनसे वियोग होना अवश्यंभावी है, क्योंकि जिस वस्तु का जन्म होता है उसका विनाश भी अवश्य होगा ही। सभी को यह शोक सहना पड़ता है। शोक से उन्मत्त होकर अनेक राजर्षि एवं अन्य जन विवश होकर पथभ्रष्ट हो जाते हैं। मनुष्य की

0: माया मोह के कारण सत्य को जानकर भी अज्ञान हो जाती है, वह आसक्त होता चला जाता है, यहीं से दुख का प्रारंभ होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रकाश किरण, आलेख और स्वर था मधुर शास्त्री का। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लिए सुनिए श्री रामचरितमानस का गायन, स्वर अनुराधा पौडवाल और श्रीकांत पारगांवकर का। संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।

प्रीति की सुंदर रीति का अनुपम उदाहरण है दूध और जल का मिलन। दूध में मिलकर जल भी दूध के भाव बिकने लगता है, किंतु कपट रूपी खटाई के पड़ते ही पानी दूध से एक बारगी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है, प्रेम रूपी स्वाद जाता रहता है। सती के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव से आतंकित होकर शिव जी से छिपाव किया और मिथ्या वचन कहे कि उन्होंने श्री राम की कोई परीक्षा नहीं ली, किंतु सर्वज्ञ शंकर ने सब कुछ जान लिया और सती के कपटपूर्ण व्यवहार के लिए उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया। उधर सती को अपनी करनी याद करके अत्यंत ग्लानि हुई। उन्होंने शिव का रुख पहचान लिया कि स्वामी ने उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया है। अपने पाप की प्रतीति होने पर सती से कुछ कहते नहीं बना, किंतु उनका हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आमे के समान जलने लगा। इधर शिव जी ने अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार वट वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठकर अखंड समाधि लगा ली।

0: पुसून नगद आमदनी कमावक लाय सकोत। मांतर कास्तकार भाई बहन मन पैसा कमातो गोट तो पासे आए आगे छेरी पीला मन के निको पोस्तो रुआट के जानो। कास्तकार भाई बहन मन छेरी गोटोक जीवट पशु आए मांतर छेरी चो पीला मन जुगे कौरो हुआत। ये मन चो गरम सहत और ताकत कम रहे से और एवे घाम दिने ये मन चो नगद दखा राखा करुक पड़े से। जुगे गरम बाढ़ ले छेरी पीला मन चो देह ने गरम आरु नाड़ी दर बाढ़े से जे चो लागुन छेरी पीला मन निको खाऊ पीऊक नहीं सकोत और देह मन चो देह ने ताकत कम हो से। संगे संगे दूसरा कई प्रकार चो बीमारी मन जो टूक लाए सके और जीव बले जाऊक लाए सके। किसान भाई बहन मन असन होले किसान के नुकसान होए दे और ये नुकसान ले बास्तोर काजे छेरी पीला मन के निको दखराखा करतो राय अले कसन दखराखा करतो राय अले ये गोट के बले जानू। काश्तकार भाई बहन मन जसन मनुख मन आप लो रतो काजे निको घर बनासोत असने छेरी पोस्तोर काजे बले घर लागे दे जेके हमी छेरी कोठा बलू से। मांतर छेरी पीला मन के सोजे कोठा भीतरे ढापुन संगाई नहीं होए असन ने हुन मन काजे अजिक पैंग नाय ठान ने चारो कुति बावस नहाले झाटी चो 10 ले 12 फीट ऊंचा बाड़ी बनातो राय और ये बाड़ी मन ने बोरा मन के बांधुन देतो राय और समय समय ने ये बोरा मन ने पानी छींचते रहतो राय जे चो लागुन छेरी पीला मन चो रतो ठान शीतर रहे दे और पई नाय ठान रले छेरी पीला मन हाला बुला बले निको कर दे। कास्तकार भाई बहन मन ये छेरी पीला मन के निको लेहरा पानी और उजर चो बले व्यवस्था करतो राय। कास्तकार भाई बहन मन खाना कुराक सभय जीव काजे मायमूर होय से। कई झन लोग मन आप लो मन ने असन विचार अनुवाद कि घाम बेरा सभय जीव के कम खाना खुराक लागू आए बलते मांतर ए गोट सत्य नु है पार्ले घाम बेरा आगर खाना खुराक चो जरूरत पड़े से। कसन बल्ले असन गरम बेरा छेरी पीला मन के आप लो देह के गरम ले बचातो काजे जुगे ऊर्जा खपत होय से। असन ने घाम बेरा छेरी पीला मन के निको खाना खुराक देतो राय तेबे ए मन के बल्बपूत बीती जिनिस मिरे दे। नान नानी छेरी पीला मन के 3 महीना तक बाहरे चरुक जाऊक नहीं देतो राय और घाम बेरा ये मन के कम से कम 3 हार गोरस पियातो राय और बड़े छेरी पीला मन के बबूल पीपल और दूसर छेरी खातो बीती हरा पाना के पेट भर खुआतो राय। छेरी पीला मन चो पीऊ तो पानी ने नोन मिसातो राय और ये मन चो पीऊ तो पानी काजे गोटुक टंकी बनाउन रहतो राय और ये थाने काय मंजा ठंडा पानी के रिकाउन देतो राय और जुगे गरम दिने इलेक्ट्रोलाइट नाव चो पाउडर के 1 ले 2 चम्मच मिसाउन देतो राय और छेरी कोठा भीतरे खनिज बीती ईटा टांगुन देव रहतो राय जे कि छेरी पीला मन चाटते रह दे असन कर ले छेरी पीला मन के खनिज नाव चो जिनिस मिरे दे। कास्तकार भाई बहन मन लोग हौत नहाले पशु सबई के बीमार से मार जौटू आए असन ने ये लोग चो बले और पोसलोर पशु चो बले ध्यान संगातो राय। छेरी पीला मन अजिक बले कमजोर दखा पड़ ले तुरते डॉक्टर के दखा तो राय और गरम बेरा जून महीना चा PRR खुरपका मुंहपका और गलघोटू नाव चो बीमारी ले बचातोर काजे छेरी पीला मन के टीका बल्ले सूजी लगातो राय असन कर ले छेरी पीला मन के जौट तोर बीमारी ले बचाओ सका से। किसान भाई बहन मन घाम दाए छेरी पीला मन के घाम ले बचातो राय संगे संगे कुकुर मन ले बले ए मन के बचातो राय। छेरी पीला मन के आप लो माए चो गोरस के दिन ने 3 हार निको खुआतो राय ठंडा पानी चो अच्छा प्रबंध करतो राय असन सांगलो रुआट के धरुन। कास्तकार भाई बहन मन तुम्हें छेरी पोसले छेरी मन नगद बाढ़ दे और नगद मोल ने बिक्री करुक सका से और घरे बले छेरी मांस खाऊक लाए सका से।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि सामी की बेड़ा खड़ा चुगोट, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। हुलहुली कार्यक्रम में सुनिए कासन पाड़। वादक कलाकार हैं गणपति कड़ियारी और साथी।

प्रीति की सुंदर रीति का अनुपम उदाहरण है दूध और जल का मिलन। दूध में मिलकर जल भी दूध के भाव बिकने लगता है, किंतु कपट रूपी खटाई के पड़ते ही पानी दूध से एक बारगी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है, प्रेम रूपी स्वाद जाता रहता है। सती के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव से आतंकित होकर शिव जी से छिपाव किया और मिथ्या वचन कहे कि उन्होंने श्री राम की कोई परीक्षा नहीं ली, किंतु सर्वज्ञ शंकर ने सब कुछ जान लिया और सती के कपटपूर्ण व्यवहार के लिए उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया। उधर सती को अपनी करनी याद करके अत्यंत ग्लानि हुई। उन्होंने शिव का रुख पहचान लिया कि स्वामी ने उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया है। अपने पाप की प्रतीति होने पर सती से कुछ कहते नहीं बना, किंतु उनका हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान जलने लगा। इधर शिव जी ने अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार वट वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठकर अखंड समाधि लगा ली।

हुलहुली कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कासन पाड़। वादक कलाकार थे गणपति कड़ियारी और साथी। हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज की सभाओं में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। सुबह 10:55 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनता से संवाद पर आधारित कार्यक्रम मन की बात। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का आंखों देखा हाल। आप सुनेंगे शाम 6:30 से शाम 6:45 तक, पुनः शाम 7 से रात 8:45 तक, फिर रात 9 से रात 9:30 तक और रात 10 से खेल की समाप्ति तक। नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुनिएगा रात 10। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनता से संवाद पर आधारित कार्यक्रम मन की बात का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद सुनेंगे सुबह 11:30 पर। जिले की चिट्ठी प्रसारित किया जाएगा शाम 6:05 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। हल्बी समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा सुबह 7:30 पर और गोंडी समाचार बुलेटिन का प्रसारण समय होगा शाम 6:30 का।

अब से कुछ देर बाद सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। आकर्षण होंगे हमारा बस्तर। इसमें सुनिएगा वार्ता नारी देह का अनोखा श्रृंगार गोदना। वार्ताकार होंगे हरिहर वैष्णव और होगी फिल्मी गीतों की मधुरिमा लोक मंजरी। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे विभिन्न बोलियों में लोकगीत सुबह 8:30 पर। बच्चों का कार्यक्रम बालवाड़ी आप सुनेंगे सुबह 9:00 एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे क्या कहना फिल्म के गीत सुबह 9:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम चाहत आप सुनेंगे सुबह 10:00। प्रस्तुति होगी प्रीति यादव की। संयोजन चंद्र ऋषि। दोपहर 12:00 रुस रुसा लोक गाथा में सुनिएगा आंधा राजा। गायिका होंगी सुब्री बाई। शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण समय होगा दोपहर 12:30 का। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन।

कला और कलाकार। ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा दोपहर 2:30 पर। शाम 5:05 पर सुनिएगा देशभक्ति गीत समूह सौर में।

आपको पुनः बता दें, सुबह 10:55 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनता से संवाद पर आधारित कार्यक्रम मन की बात। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे शाम 6:30 से शाम 6:45 तक, पुनः शाम 7 बजे से रात 8:45

तक और रात 9 बजे से रात 9:30 तक और रात 10 बजे से खेल की समाप्ति तक। ये थी हमारी केंद्र से आज की सभाओं में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: मन्त्रालयेन उक्तं यत् भारतीय रक्षाबलानां एकेन दलेन सह भारतीय नौसेनायाः द्वाभ्यां नौकाभ्यां सह श्रीमोदी उत्सवे भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी ह्यः सेशेल्स देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां विक्टोरिया नगरं सम्प्राप्तवान्। विमानस्थानके सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉ पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन तस्य भव्यं स्वागतं विहितम्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः भारतीय समवाय विशेषान् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार सन्धेः सीईटीए इत्यस्यान्तर्गतम् उदयोन्मुखावसरान् सुस्थिर व्यापार वृद्धौ परिवर्तयितुं यूके देशस्य समकक्षैः सह सम्पर्कं सुदृढं कर्तुं प्रार्थयत्। लंदन नगरे भारत यूके प्रगति व्यापार पूर्ण सम्मेलने सहभागिनां नेतृत्वावधौ मन्त्रिणा इदमुक्तम्। दिल्ल्याः मुख्यमंत्री रेखा गुप्तावर्या सावधानं कृतवती यत् यानि कोचिंग इति प्रशिक्षण केन्द्राणि अनिवार्य सुरक्षा मानदण्डानां पालनं न करिष्यन्ति तानि दिल्ल्यां कार्यं कर्तुं नानुमन्यन्ते। एकस्मिन् वीडियो संदेश श्रीमती गुप्ता अवदत् यत् दिल्ली सर्वकारः शीघ्रमेव कठोरं निरीक्षणं बृहत्तरं उत्तरदायित्वं छात्राणां सुरक्षां च सुनिश्चेतुं दृढं विनियामक विधिं प्रावर्तयिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रदेशेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। बिहार छत्तीसगढ़ कर्नाटक कोंकण गोवा ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना विदर्भ लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीपेषु अपि आगामी दिनद्वयोः कृते विभागेन संचेतना प्रसारिता अस्ति। ऋतु विभागेन ख्यापितं यत् श्वः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थितिं भविष्यति। फीफा विश्वकप क्रीडायां इंग्लैंड देशेन अद्य प्रातः अमेरिका देशस्य न्यूजर्सी क्रीडांगणे स्वस्य ग्रुप एल क्रीडायां पनामा देशं 2-0 इत्यंकैः पराजितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्माइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशेल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका

0: उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम में नौवे डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों से सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनके पास चीन के लिए आवश्यक प्रवेश पत्र और वीजा नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने तक भारत से यात्रा शुरू न करें। मंत्रालय ने कहा है कि वैध दस्तावेज के बगैर या आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने की उम्मीद में यात्रा शुरू करने से परेशान होने की संभावना बढ़ जाती है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जल्द से जल्द शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक ने पिछले वर्ष 11 मई को आधिकारिक प्रेस वार्ता में 6 शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। इन सैनिकों को वीरता पुरस्कार भी प्रदान किए गए, जिनकी घोषणा पिछले वर्ष 14 अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में की गई थी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भारत के किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान की योदायु किमोतो को पराजित किया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू लेयुंग के होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 3

टच का साथ है, चहकते हुए पंछियों की मधुर आवाज है, हाथ में चाय का प्याला और यादों में कोई खास है। गुजरेगा ये दिन मेरा खुशनुमा, क्योंकि इसकी पहली याद आप हैं। वाकई आप सभी की यादों को तरोताजा करने के लिए हम आ गए हैं कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर लेकर। तो स्वीकारें मेरा यानी आपके रेडियो दोस्त सुखेंदु मलिक का प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। आज आपके लिए है कार्यक्रम हमारा बस्तर और फिल्मी गीतों की मधुरिमा।

श्रोताओं, जिंदगी के सफर में न जाने कितनी बार हमारा आंचल खुशियों से भर जाता है तो कितनी बार दुखों से। खुशियां तो खुशियां ही होती है जो हमें जीने के लिए एक नई प्रेरणा दे जाती है, परंतु कभी कभी हमें दुखों का भी सामना करना पड़ता है। और जब दुख हमारे जीवन में आते हैं तो हमारी जिंदगी तनाव से भर उठती है। कई व्यक्ति इन तनावों को ज्यादा महत्व देकर अपना सिर दर्द बना लेते हैं, तो कई इन तनावों को नजरअंदाज करके हंसते रहते हैं, जो दूसरों को भी सुख देते हैं और स्वयं भी उस सुख का लुत्फ उठाते हैं। श्रोताओं, हमें अपने जीवन को तनाव मुक्त बनाना चाहिए। परेशानियां तो हर एक के जीवन में आती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम तनावग्रस्त हो जाएं। यदि हम प्रयत्न करें तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन की छोटी छोटी बातों और दृश्यों में अनोखा सौंदर्य पा सकते हैं और जीवन भर के लिए आनंद का कोष जमा कर सकते हैं। श्रोताओं, यदि आपको आपके मन में थोड़ा सा भी बोझ लगे या आपको ऐसा लगे कि आप तनाव से घिर रहे हैं, तो आप अपने आसपास के वातावरण की छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढकर अपने मन के बोझ को कम कर सकते हैं। श्रोताओं, यदि देखने वाली आंखें हों और संवेदना से भरा मन हो, तो पेड़ों की सूखी डालें भी सुंदर और हर्षदायक लग सकती है। यदि आप जीवन में रुचि नहीं लेते हैं और सदा तनावग्रस्त रहते हैं, तो आप चाहे कितने भी स्वस्थ हों, सुखी नहीं रह सकते। इसीलिए कहते हैं ना कि जीवन से प्रेम कीजिए और जीवन को सफल बनाइए।

0: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
1: पवन के ठंडे झोंके के साथ
0: हिलोरे लेगी
1: आकाश की वाणी।
0: आकाशवाणी
2: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
0: या फोन करें 222150 या 222400,
1: 222150 या 222400।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
6: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
5: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102, या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
7: श्रोताओं, अगले क्रम में हम आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम हमारा बस्तर की ओर। इसमें सुनिए वार्ता नारी देह का अनोखा श्रृंगार गोदना। वार्ताकार हैं हरिहर वैष्णव।
8: गोदना एक ऐसा कला रूप है जिसे लोक चित्र के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसका प्रचलन बस्तर के साथ साथ छत्तीसगढ़ एवं देश के अन्य इलाकों, विशेषतः जनजातीय अंचलों में और विश्व के अनेक देशों के जनजातियों के बीच होना पाया गया है। बस्तर के लोक चित्रों को उनकी प्रकृति के अनुरूप निम्न 5 वर्गों तथा उनके 6 उपवर्गों में बांटा जा सकता है। भित्तिचित्र, थलचित्र, देहचित्र, स्तंभचित्र और शैलचित्र। विस्तार में न जाते हुए मैं यहाँ केवल तीसरे वर्ग यानी देह चित्र की चर्चा करना चाहूंगा, जिसके अंतर्गत गोदना को रखा गया है और जो इस वार्ता का विषय भी है। देह चित्र, इस वर्ग के भी 2 उपवर्ग किए जा सकते हैं। पहला गोदना, मानव देह पर अंकित किए जाने वाले चित्र को गोदना कहा जाता है। दूसरा छापा, पशुधन की पीठ पर कटोरी या गिलास के ऊर्ध्व भाग की छाप को जो चावल के गीले आटे में भिगाकर दी जाती है, छापा कहा जाता है। गोदना गोदनी की कला में ओझा जाति की महिलाएं सिद्धहस्त होती हैं। प्रायः शीतकाल में इस जाति की महिलाएं अपने डेरों से निकलकर गांव-गांव घूमती हैं और महिला एवं पुरुषों के अंगों पर गोदना गोदती हैं। श्री बलबीर कच्छ के अनुसार आरापुर क्षेत्र में लमांग जाति के लोग गोदना गोदने का काम करते हैं। बस्तर के आदिवासी और गैर आदिवासी समाज में

का प्रचलन है। इसके पीछे धारणा है कि गोदड़ा ही ऐसा श्रृंगार है जो मृत्यु के बाद भी मनुष्य के साथ परलोक जाता है, यही मृत्यु लोक में उसकी कमाई कही जाती है। जिसके शरीर पर गोदना नहीं होता उससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं। गोदना की शुरुआत के संबंध में हल्बी के अन्यतम कवि श्री सोन सिंह पुजारी कहते हैं, मुगल काल में विशेषतः औरंगजेब के शासनकाल में जब मुगल सैनिक गांव गांव से आदिवासी और गैर आदिवासी युवतियों को उठाकर ले जाते तथा अपनी हवस का शिकार बनाते, तब आदिवासी मुखियाओं ने इस पर चिंता व्यक्त की और महिलाओं की देह पर प्रमुखतः गालों पर गोदना गुदवाना शुरू किया ताकि महिलाएं कुरूप दिखने लगे और सिपाही उनकी कुरूपता के कारण उनकी ओर आकर्षित न हो सके। किंतु इस तथ्य से अनभिज्ञ एक प्रख्यात महिला कथाकार ने बस्तर की पृष्ठभूमि पर रची अपनी एक कहानी में इसे गलत ढंग से व्याख्यायित करने का दुष्प्रयास किया था। उन्होंने लिखा था कि जिस स्त्री के शरीर में जितने अधिक गोदना होते हैं वह स्त्री उतने ही अधिक पुरुषों का सुख भोगती है। उनके इस कथन का बस्तर के लोगों ने तीखा विरोध किया था। बहरहाल एक समय में अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए चलन में लाए गए गोदने ने कालांतर में आदिवासी समाज के साथ साथ गैर आदिवासी समाज में भी श्रृंगार के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। महिलाएं अपने अंग विशेषतः बाहों में गोदना गुदवाती हैं, किंतु बाहों के अतिरिक्त गाल माथे एवं छाती पर भी गोदने गुदवाने का चलन रहा है। गालों पर गोदने गुदवाने का चलन मुख्यतः गोंड समाज में रहा है। इन गोदनों में प्रायः बिंदी तथा विभिन्न पशु पक्षी जीव जंतु के चित्र उकेरे जाते हैं। पारधी जाति के कुछ पुरुषों की बाहों में उनकी जातीय पहचान के रूप में धनुष उकेरे देखे गए हैं। बांस शिल्प से जुड़ी पारधी जाति के श्री आसाराम मंडावी अपनी बाह में गोदाए गए गोदने की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, यह गोदना है धनुष गोदना, ओझिन से बनवाया है। उसे धनुष बनाने को कहा किंतु उसने थोड़ा सा बिगाड़ दिया, नहीं बना पाई सही। आरंभ से ही धनुष का हमारे समाज में महत्व रहा है, आजीविका के लिए तो हम इसका उपयोग करते ही रहे हैं, साथ ही हमारे विवाह में भी धनुष महत्वपूर्ण होता है। पुरुष प्रायः बाहों में ही गोदने गोदवाते हैं। लोक में गोदना के विषय में धारणा है कि यह अन्य सभी श्रृंगारों से उच्च अधिक महत्वपूर्ण और विशिष्ट है, क्योंकि यही वह श्रृंगार है जो मृत्यु के बाद भी व्यक्ति के साथ जाता है, जबकि बाकी श्रृंगार यहीं के यहीं रह जाते हैं। न तो कोई इसे छीन झपट सकता और न ही इसकी चोरी की जा सकती है। कीर्तिशेष लाला जगदलपुरी कहते हैं, बस्तर की प्रायः सभी ग्रामीण महिलाएं गोदना गोदाती हैं, परंतु कोयतू समाज की स्त्रियों में गोदना गोदाने का प्रचलन सबसे अधिक है। गोदना गोदवाने का रिवाज इनके लोक विश्वास की देन है। यह प्रथा इनकी लोक संस्कृति की एक ऐसी मान्यता है जिसके अनुसार नारी की इहलौकिक और पारलौकिक सुख सुविधाएं निर्भर करती हैं। गोदना एक ऐसा अलंकार है जिसे कोई नहीं छीन सकता। बार बार उतारने रखने और पहनने की कोई झंझट नहीं। कोयतू समाज के पुरुष वर्ग में भी कोई कोई अपवाद स्वरूप माथे पर टीके की तरह गोदना गोदवा लेते हैं। इधर अन्य वनवासी समाजों के पुरुष वर्ग में गोदना नहीं चलता। सुखदेई कोराम का कहना है, पहले गोदना के बारे में लोग कहते थे कि गोदना यदि औरत की देह में नहीं बना तो मृत्यु उपरांत भगवान गरम सब्बल उसकी देह पर रगड़ेंगे। इसी डर से लोग गोदना गोदवाते रहे हैं। यही कारण है कि लोगों में गोदना गोदवाना जरूरी माना जाता रहा है। नाक ठोड़ी हाथ पांव आदि सभी अंगों यहाँ तक कि छाती पर भी गोदने गोदवाए जाते थे। अभी गोदना की उतनी मान्यता नहीं रह गई है। अब तो कोई नहीं गोदवाता गोदना, पहले तो सभी लोग गोदना गोदवाते थे। ओझिन लोग पांच सुइयों को एक ही में बांध कर उनसे गोदने बनाती थी। सरगी यानी साल के गोंद से जिसे धूप कहा जाता है काजल बनाकर उसी से गोदना गोदती थी, वह काला पड़ जाता है। क्या ये किसी खास मौसम में किसी खास महीने में गोदे जाते थे या कि कभी भी? इस विषय में वे कहती हैं, नहीं नहीं किसी भी समय में नहीं गोदते। गोदना गोदने का एक खास समय होता है। शीत ऋतु में ही गोदना गोदने का काम किया करती थी।

बुझने कार्तिक से माघ महीने तक गोदना गोदे जाते थे, बाद में नहीं गोदते थे। उजने गांव में रहती थी, एक उजने हमारे कोंडा गांव में भी रहा करती थी। पता नहीं कहां से आई थी वह यहां, उसके एक बेटा भी था, वही उजन यहां गोदना गोदा करती थी। उसके अलावा बाहर से भी आती थी, वे सूर्योदय के पहले ही आ जाया करती थी गोदना गोदने के लिए, और यही कोई 8 से 10 बजे तक गोदा करती थी। सवेरे के समय में गोदती थी, धूप तेज हो जाने पर नहीं गोदती थी। कोंडा गांव में जो ओझिन थी उसकी तो कब की मृत्यु हो गई। यहाँ

0: शिक्षा पर निर्भर करता है कि वह किस तरह के गोद में गोदवाना चाहता या चाहती है। देह पर अच्छा लगे, सुंदर दिखे, बस यही भाव होता है। क्या गोदना गोदवाने की कोई उम्र होती है या कि किसी भी उम्र में गोदना गोदवाए जा सकते हैं? सुखदेई कोराम बताती हैं, किसी भी उम्र में नहीं गोदवाए जाते गोदने, अधिक से अधिक 15-16 साल की उम्र तक ही गोदवाते हैं, लेकिन अभी गोदवाने लगे हैं, मशीन से गोदते हैं, बाजार में आते हैं गोदने वाले, मंडी मेला में भी गोदने वाले आते हैं, मशीन से फूल आदि बनाते हैं, जीव जंतु के गोदने भी बनाते हैं, नाम भी लिखते हैं। किंतु अब वो जिन्हें कहाँ चली गई हैं या कि उन्होंने अपना यह पुश्तैनी काम क्यों छोड़ दिया है पता नहीं। हमारे गांव में उजने नहीं आती अब। गोदने के बदले उजनों को सम्मान स्वरूप पैसे और दाल चावल दिए जाते थे। गोदना गोदने वाले ओझा समुदाय के श्री सहादेव ओझा कहते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसे स्वर्ग में पूछा जाता है कि उसने सारा जीवन तो जैसे भी जिया, किंतु जीवन समाप्त होने पर कमाई के रूप में वे यहाँ क्या लेकर आया। तब यदि उसके शरीर पर गोदना हो तो वह उसे ही अपनी कमाई बताता है। इस तरह गोदने का मरणोत्तर महत्व है। यही कारण है कि बस्तर में सभी तरह के लोग अपनी देह पर गोदने गोदवाते हैं। गोदना की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए श्री बलदाऊ राम साहू इसे दो रूपों में देखते हैं, पहला सौंदर्य बोध और दूसरा एक्यूप्रेशर के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य। वे इसकी उत्पत्ति एवं इसकी परंपरा के विकसित होने के संबंध में दो लोक कथाओं का भी जिक्र अपने इस आलेख में करते हैं। पहली लोक कथा को वे माड़िया लोक कथा कहते हैं। कथा इस प्रकार है, प्राचीन काल की बात है, एक समय यमराज को मृत्यु लोक में स्त्री पुरुषों को पहचानने में असुविधा होती थी। किसी दिन उनके पुत्र और पुत्रवधू कहीं जाने के लिए तैयार होकर यमराज से अनुमति लेने पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनकी पुत्रवधू ने अपनी देह पर बेल बूटे बना रखे हैं। यह देखकर यमराज ने सोचा कि क्यों न स्त्रियों की देह पर इस तरह के बेल बूटे बना दिए जाएं। यह सोचकर उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रवधू को पृथ्वी लोक की स्त्रियों की देह पर पहचान के लिए बेल बूटे बनाने के लिए भेजा, जिससे स्त्रियों को सहजता से पहचाना जा सके। यमराज के पुत्र और पुत्रवधू ने पृथ्वी लोक में आकर बेल बूटे बनाने का कार्य आरंभ कर दिया। इसी बेल बूटे ने कालांतर में गोदना का स्वरूप ले लिया। तब से स्त्रियां अपनी देह पर गोदना गुदवाती हैं। दूसरी लोक कथा इस प्रकार है, किसी समय एक दुष्ट राजा हुआ। वह अपने अय्याशी के लिए रोज एक नई नवेली स्त्री का संग करता था और उसके बाद वह उसकी देह पर एक काले रंग का चिन्ह बना देता था। इसके बाद वह फिर कभी उससे संग नहीं करता था। उस दुष्ट राजा के इस अत्याचार से बचने और अपनी शील की रक्षा के लिए महिलाओं ने अपनी देह पर काले रंग का चिन्ह बनवाना शुरू कर दिया, जिसने कालांतर में एक परंपरा का रूप ले लिया। इस तरह गोदना नारी देह का एक अलंकार बन गया। यह लोक कथा निराधार नहीं जान पड़ती। जब तक गोदना की परंपरा थी, युवतियां विवाह पूर्व मायके में ही गोदना गुदवाती थी।
1: हमारा बस्तर, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता, नारी देह का अनोखा श्रृंगार गोदना। वार्ताकार थे हरिहर वैष्णव।
2: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर गुरुवार और शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782-222-666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
3: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 18

0: 20% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: श्रोताओं, अब आपसे करते हैं पृथ्वी और पर्यावरण पर थोड़ी सी चर्चा। पृथ्वी पर रहने वाले तमाम जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को बचाने तथा दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए धरा की धानी चूनर को बनाए रखने और हर तरह के जीव जंतुओं को पृथ्वी पर उनके हिस्से का स्थान और अधिकार देने का हमें संकल्प करना चाहिए। पृथ्वी एक व्यापक शब्द है जिसमें जल, हरियाली, वन्य प्राणी, प्रदूषण और इससे जुड़े अन्य कारक भी हैं। धरती को बचाने का आशय है कि इसकी रक्षा के लिए पहल करना है। इसके लिए किसी एक दिन को माध्यम न बनाया जाए, बल्कि हमें हर दिन इसके बचाव के लिए कुछ न कुछ उपाय करते रहना चाहिए। श्रोताओं, पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना तो करें कि पॉलीथीन के उपयोग को नकारें, कागज का इस्तेमाल कम करें और रिसाइकल प्रक्रिया को बढ़ावा दें, क्योंकि जितनी ज्यादा खराब सामग्री रिसाइकल होगी उतना ही पृथ्वी का कचरा कम होगा और तभी हम कह पाएंगे

0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हल्बी समाचार बुलेटिन।
1: जुहार, यह आकाशवाणी जगदलपुर आए हल्बी ने समाचार बुलेटिन संगे मैं हितप्रीता ठाकुर। पहल आज जो मूर खबर मन, छत्तीसगढ़ संगे देश भर ने 1 जुलाई ले लागू हुई दी विकसित भारत जी राम जी योजना। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय थापना चो 5 बरख पूर्तो के छत्तीसगढ़ ने मनातुर हुई दी सहकारिता सप्ताह। ए बरख सामान्य ले कम वर्षा चो फिकिर के दखुन कृषि विभाग छत्तीसगढ़ चो काश्तकार मन के बतर दखुन कमानी करतो दिला सलाह। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान लागू आज ही राजभर ने 0 ले धरून 5 बरख तक चो पीला मन के पियातुर हुई दे पोलियो ओखद। अदाय खबर मन सरसरा। विकसित भारत गारंटी रोजगार आरु आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देश भर ने 1 जुलाई ले लागू हो दी। छत्तीसगढ़ ने योजना चो प्रचार प्रसार जहला काजी ग्राम सभा मन चौपाल मन पोस्टर बैनर मुनादी बल्ले हाका पाडून रथ प्रचार आरु डिजिटल वाट मन चो उपयोग करून करतोर हो से। हुताय सरपंच सचिव रोजगार सहायक स्व सहायता समूह मन चो मेहरार मन जनप्रतिनिधि आरु ठाने रलो सामाजिक संगठन बल्ले लोग मन के योजना चो जानकारी देतो काम ने भीड़ लासत। एचे संगे ग्राम आरु जनपद पंचायत मन संगे चे जिला स्तर ने प्रशिक्षण बसका आरु ग्राम सभा मन चो उदिम करतोर होय से। एलागुन गांवरिया मन के योजना चो भीने रीति नीति प्रावधान मन आरु लाभ चो जानकारी देतोर होय से। मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय बल्ला से कि 1 जुलाई ले लागू होते बीती वीबी जी राम जी योजना ग्रामीण आजीविका रोजगार आरु आत्मनिर्भर गांव मन चो बाटने गोटोक ऐतिहासिक मुरमुठा मुरियानी संसिद्ध होय दे। श्री साहेबल्ला की ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चो विकसित भारत चो संकल्प के नवा रोस ने नए दे आरु आत्मनिर्भर आरु समृद्ध ग्रामीण भारत बनातो काजे मूर्खुटा आसन होई दे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चो अध्यक्षता ने गेलो 23 जून के मंत्रालय ने होलो राज्य मंत्री परिषद चो बसका ने विकसित भारत रोजगार आरु आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण योजना छत्तीसगढ़ चो प्रारूप चो अनुमोदन करतोर होली। ये योजना लागून पात्र गांवरिया परिवार मन चो जुआन होलो बरसक रलो लोग मन के हर बरख प्रत्येक वित्तीय वर्ष ने 125 दिन चो रोजगार चो गारंटी देतोर होए दे। ए लागून जल संरक्षण प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन ग्रामीण आधारभूत संरचना निर्माण

आजीविका मूलक परिसंपत्ति मंचो विकास संगे गांवरिया ठान परगन मन ने रोजगार चो मोहका बनातुर होए दे। ए योजना लागून चालू वित्तीय बरक काजे राज्य बजट ने 4,000 करोड़ रुपया चो प्रावधान करतोर होली से। हुताय मंत्री परिषद अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना मूर करतो बले निर्णय धरली से। ये योजना लागून गांवरिया ठान परगन मन ने हथकरघा सिलई बुनई हस्तशिल्प केंद्र चो संगे संग दार तिल प्रसंस्करण इकाई मन राइस मिल डेयरी आरु सेवा केंद्र मन चो स्थापना करतोर बले होय दे। ए लागून कोल्ड स्टोरेज सोलर ड्रायर कृषि उपकरण मरम्मत अटल डिजिटल केंद्र विपणन केंद्र आरु आपूर्ति केंद्र बले गांवरिया ठान परगन मन ने स्थापना करतोर होय दे। हुताय गोटोक दूसर फैसला ने मंत्री परिषद ने छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति प्रारूप जो अनुमोदन करतोर बले होली। ए नीति लागून राज्य ने रलो कृषि अवशेष नगरीय ठोस अपशिष्ट पशुधन अपशिष्ट आरु दूसर जैविक संसाधन मंचो वैज्ञानिक प्रबंधन करून हुनमन के कंप्रेस्ड बायोगैस ईंधन ने पलटतोर होय दे। राज्य ने समान नागरिकता संहिता UCC लागू करतोर सज मूर होन गेली से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सांगला की UCC चो प्रारूप सच करतो काजे उच्चतम न्यायालय चो सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई चो अध्यक्षता ने बनालो कमेटी सफाई वर्ग चो मंजी जाऊन रिपोर्ट सच करे दे। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय चो थापना होलो 5 बरखपुर्तो के छत्तीसगढ़ ने काली 29 जून ले सहकारिता सप्ताह मनातर होए दे। 6 जुलाई तक चलतो बीती ये सप्ताह मुका प्रदेश भर ने सहकार

खास कार्यक्रम मन आरु जनभागीदारी अभियान चलातर होए दे ए मौका कास्तकार मन महिला स्व सहायता समूह मन गोरस उत्पादक मन मछली पोसिया रान बंचो धन जुहा तो लोग मन आरु ठाने रतो हस्त शिल्पकार मन चो भागीदारी सुनिश्चित करतर होए दे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गेलो 25 जून के नई दिल्ली ने केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण और रसायन उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा संगे भेंट करला। इम्होका जन स्वास्थ्य औषधि और उर्वरक बल्लेखत भात क्षेत्र संगे भिने भिने विभागीय विषय मन ने गोट बात होली। बसका मोका मुख्यमंत्री केंद्रीय निगरानी राखतोर होए से कालाबाजारी और जमाखोरी चो खिलाफ सरलग्गा कार्यवाही करतोर होए से संगे चे राज्य सरकार नैनो यूरिया और नैनो डीएपी चो उपयोग के बले बढ़ावा दे से ए चोले पहल 24 जून के मुख्यमंत्री नई दिल्ली ने आप लोग ठेबलो बेरा केंद्रीय गृह आरु सहकारिता मंत्री अमित शाह ले बले भेंट करला आरु छत्तीसगढ़ खास लागून बस्तर ठान परगन चो विकास काम मन आरु जन कल्याण योजना मन उपरे चर्चा करला। इम्हो का उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बले रला। मुख्यमंत्री सांगला के बस्तर ने सड़क शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल आरु संचार सुविधा चो विस्तार करतोर होए से संगे से सरकारी सेवा मन लोग मन लगे अमरातोर बले होए से हुनमन छत्तीसगढ़ ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान थापना चो प्रस्ताव बले मंडाला। मुख्यमंत्री बल्ला के बस्तर विकास और पर्यटन चो नवा केंद्र चो रूप ने पूरे ऐसे इमोका केंद्रीय मंत्री राज्य के हर संभव सहयोग चो आश्वासन दिला। होता है मुख्यमंत्री नई दिल्ली ने रलो छत्तीसगढ़ सदन ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी चो प्रारंभिक परीक्षा ने सफल होलो ट्राइबल यूथ हॉस्टल चो पढ़तो पीलामन संगे भेंट करून हुनमन के खूब

कर्मचारी मंचो बैंक खाता मन्ने पठान देतर होए दे। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े विभाग के निर्देश दिला कि साड़ी चो डिजाइन आगे चो महा राखतर हो जे चोले गुलाय राज ने एक रूपता बनुन रहे दे। हुताय साड़ी चो कपड़ा और दूसर विकल्प मंचो चयन स्थानीय बल्लो ने ठाने रतो हिसाब ने ठान दखुन खुदे कार्यकर्ता और सहायिका करुक सक दे। ए बरक अल नीनो चो प्रभाव लागून सामान्य ले कम वर्षा चो चिंता लागून कृषि विभाग छत्तीसगढ़ चो कास्तकार मन के बतर दखुन कमानी करतो सलाह दिली से। विभाग धान फसल कमानी पलटा दार किसिम आरु तेल किसिम मंचो कमानी करतो काजे बल्ली से। कृषि विभाग हिसाब ने एसु कम वर्षा होतो असन के दखुन लाहेर मूंग उड़ीद हरवा मूंगफली तिल राम तिल कोदो कुटकी और रागी जसन फसल कमानी काजे नगद हो सके दे। कृषि विशेषज्ञ मंचो हिसाब ने दार किसिम कमानी और तेल किसिम कमानी कम लागत ने नगद उपजन देतो संगे भूचो उर्वरा शक्ति मन के बले सुधरा तो काम नगद करे से। लेख कर तो गोट ये आए कि राज्य सरकार कम पानी बीती ठान परगन ने धान चो पलटा दार और तेल फसल मंचो कमानी करतो कास्तकार मन के 15,000 रूपया चो एकड़ हिसाब ने प्रोत्साहन राशि देतो निर्णय बले धरली से। ए फसल मंचो खरीदी प्रधानमंत्री आशा योजना लागून समर्थन मूल्य ने होए दे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान लागून आज राज ने शून्य ले धरून 5 बरस तक चो पिलामन के पोलियो चो ओखत पियातुर होए दे। हुता है छांडी होलो पिलामन के काली आरु परान दिन स्वास्थ्य कर्मचारी मन संगे मितानिन मन घरे घरे जाऊन ओखत पिया दे। दंतेवाड़ा जिला ने आज 30 जून तक 41,000 ले अधिक पिलामन के पोलियो रोधी ओखत पियातो लक्ष्य राखतुर होली से। अभियान चो पहल दिन आज दंतेवाड़ा जिला चो भीने भीने ठान परगन ने थापना करलो 329 ठान पोलियो बूथ मन ने पीला मन के पोलियो चो ओखत पियातुर होए दे। ए अभियान चो संचालन काजे 745 झान कर्मचारी मन चो ड्यूटी लगातुर होली से। हुताय निगरानी अरु पर्यवेक्षण काजे 37 झान पर्यवेक्षक मन के जिम्मेवारी सौंपतुर बले होली से। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग राज्य चो जमाए नगरीय निकाय मन के जतना तो आरु दखा रखा काजे 22 करोड़ रुपया ले अधिक चो आपात निधि जारी कर ली से। विभाग बाटले मूर होलो चालू वित्तीय बरक चो पहल तिमाही अप्रैल ले जून महीना काजे ये धन राशि जारी करतोर होली से। ए लागून 14 ठान नगर निगम मन के 13,76,00,000 रुपया जारी करतोर होली से। हुताय 56 ठान नगर पालिका मन काजे 5,18,00,000 रुपया स्वीकृत करतोर होली से। विभाग 124 ठान नगर पंचायत मन काजे बले 3,66,00,000 रुपया जारी कर ली से। राज्य चो सरकारी स्कूल मन ने ए तो शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल ले मूर होए दे। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव सांगला कि पीला मन के 1 अप्रैल ले चे पाठ्य पुस्तक गणवेश और साइकिल बांटतो काम करून देतोर होए दे। हुनमन सांगला कि सत्र के झपके मूर करतो उद्देश्य पाठ्यक्रम के समय ने पूरा करतो आरु पढ़तो पीला के परीक्षा पास फैल ने सुधार आंतो राय। स्कूल शिक्षा मंत्री सांगला कि 1 जुलाई ले सफाई शिक्षक मन और कर्मचारी मन का जे VSK एप ने पंजीयन और उपस्थिति अनिवार्य होए दे। जुलाई महीना चो तनखा एप ने दर्ज उपस्थिति के दखुन देतोर होए दे। छत्तीसगढ़ चो निजी बल्ले प्राइवेट विश्वविद्यालय मन ने प्रवेश धरतो पढ़तो लोग और माए बाप अभिभावक मन का जे निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग गाइडलाइन जारी कर ली से। आयोग बल्ली से की भर्ती पहल विश्वविद्यालय चो मान्यता राजपत्र ने प्रकाशन संबद्धता और पाठ्यक्रम के मंजूरी चो जांच जरूर करा। विद्यालय अपलो कैंपस ले बाहर या दूसर संस्था मन ले संबद्धता देउक नी सकत। PhD ने प्रवेश धरतो काजे छात्र UGC चो नियम मन और शोध निर्देश चो योग्यता चो बले पुष्टि करत। आयोग पढ़तो लोग मन ले अपील कर ली से कि भरमातो असन जहाला मन ले बाचा और भर्ती हो तो पहल पूरा जानकारी धरा। वरिष्ठ IPS अधिकारी बद्री नारायण मीणा के बस्तर रेंज चो नवा पुलिस महानिरीक्षक बनातुर होली से। ये मन बस्तर IG सुंदर राज पी चौठान ने रदे। इलागुन गृह विभाग आदेश जारी करून दिली से। श्री मीणा पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर ने IG चो पद ने तैनात रला। ए चो पहल हुनमन दुर्ग रेंज चो IG चो रूप ने आपलो सेवा दिलासत। इंद्रावती नदी कछार विकास प्राधिकरण चो नवा उपाध्यक्ष शरद अवस्थी बल्ला कि इंद्रावती नदी के बचान राखतो संरक्षण जल संकट चो निदान और बस्तर ने सिंचाई परियोजना मन के बल देतो काजे काम करतोर होए से। इंद्रावती नदी बचाओ अभियान चो सदस्य मन संगे बसका ने हुनमन बल्ला की मटनार और देउरगांव बैराज के समय ने बनातुर होए दे। बसका ने इंद्रावती नदी चो पानी बहुतो हल्का के नापतो काजे ओडिशा सीमा चो भेजा पदर ने गेज साइड चो थापना करतोर नदी ने बहुतो पानी ने बाधा होतो बारू आरु टीला मन के गुचातो काजे आरु गैर मानसून भले समया ने पानी नी मारतो समया ने छत्तीसगढ़ के हुंचो हिस्सा चो पानी दिया तो काजे पहल करतो काजे सहमति होली से। नीति आयोग केंद्रीय प्रभारी अधिकारी पी नरहरी आपलो 2 दिनिया प्रवास मोहका कोंडागांव जिला ने शासन चो भिन्न भिन्न महत्वाकांक्षी योजनावन और विकास काम मंचो निरीक्षण करला।

एमू का श्री नहरी कास्तकार मन का जे राज्य ले बाहर या एक्सपोजर विजिट आयोजित करतो का जे बल्ला जे चो ले कास्तकार आप लो उपज कर लो सज उत्पादन मन के घेन तो लोग मन लगे खुदे अमराव सक दे हुन मन चाइल्ड हेल्पलाइन अरु एचआरपी सेंटर चो भले निरीक्षण करला संगे ची पीला मन अरु उच्च जोखिम बीती पेटे हरिन मेहरार मन के देतो स्वास्थ्य सेवा मंचो जानकारी वाले धरला श्री नरहरी शामपुर ने रलो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चो निरीक्षण वाले करला। कोंडागांव जिला चो विधायक लता उसेंडी भीने भीने ग्राम पंचायत मन ने 19 ठान विकास काम मन चो भूमि पूजन करला। एक काम मन चो कुल लागत 1,66,00,000 रुपया ले अधिक आसे। ए मन ने सड़क स्कूल भवन सामुदायिक भवन और दूसर आधारभूत सुविधा मन संग चो मिसलो काम मन शामिल आसे। ए मौका ने विधायक बल्ला की एचो ले गांवरिया ठान परगन मन ने सुविधा मन बाड़े दे। दंतेवाड़ा जिला चो भांसी कमालूर रेल सेक्शन ने दोहरीकरण चो काम चले से अलागुन किरंदुल जातो बीती दुई ठान प्रमुख रेल मंचो चलतो समया 26 जून ले 2 जुलाई तक बंद रहे दे। होता है विशाखापट्टनम ले किरंदुल चो मंजी चलतो बीती नाइट एक्सप्रेस 2 जुलाई तक बंद रहे दे। मानतर फेर वापसी ने यही रेल 3 जुलाई तक किरंदुल ले विशाखापट्टनम नी आए दे। ए दिन बार मन ने दोनों रेल सोजे दंतेवाड़ा स्टेशन तक चले दे। दंतेवाड़ा जिला ने ए तो 1 जुलाई ले बूटा मंडातो अभियान चलातर होए दे। ये लागुन जिला पंचायत चो मुख्य कार्यपालन अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उवाट ले सज मंचो समीक्षा करला। बसका ने हुनमन निर्देश दिला कि शासकीय कार्यालय परिसर मन स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र मन पंचायत भवन मन खेल तो भाटा मन सड़क कटा और दूसर नगर ठान मन ने आगर ले आगर बूटा मंडा तो काम सुनिश्चित करतर होए दे। ए अभियान 7 जुलाई तक चले दे। सरासरी दाए मूर खबर मन एक हार फेर छत्तीसगढ़ संगे देश भर ने 1 जुलाई ले लागू होए दे विकसित भारत जी राम जी योजना। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय थापना चो 5 बरख पूर्तो की छत्तीसगढ़ ने मनातुर होई दे सहकारिता सप्ताह। ए बरख सामान्य ले कम वर्षा जो फिकिर के दखुन कृषि विभाग छत्तीसगढ़ चो कास्तकार मन के बतर दखुन कमानी करतो दिला सलाह। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान लागू ना जी राजभर ने शून्य ले धरुन 5 बरख तक चो पीला मन के पियातुर होई दे पोलियो चो ओखद। इचे संगे हल्बी समाचार बुलेटिन चो ये अंक इथाय सरे से जुहार।

0: अभी आप सुन रहे थे हल्बी समाचार बुलेटिन का, पर इससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
6: 8700001-4242।
0: पेश है मधुरिमा। कोई आवाज लगा रहा था, न जाने किसे बुला रहा था, हकीकत की उड़ान भरने के लिए सपनों के पंख लगा रहा था। गौर से सुना तो पर्वतों से मेरा ही स्वर टकरा रहा था, कई सपने कई अरमान लेकर मैं तेरी गली आ रहा था।

आंखों में बसकर जो दिल में समाया है, खुदा की ऐसी रचना मैंने ख्वाबों में पाया है। वो ख्वाब आज पूरे हो चुके हैं, आसमां झुक गया है, यूं सुर्ख रंग इश्क का छाया है। जो दिल में था नजर के सामने आया है, आंखों में भर लूं या भिगो लूं आंखें, सारी कायनात आज मेरे हिस्से में आया है।

बहारों के आने से फूलों का खिलना तय है, पतझड़ के आने से पत्तों का गिरना तय है, बूंदों के गिरने से धरती का सजना तय है। जब एक है सपने एक हुई राहें, तो तेरा मेरा मिलना इन्हीं राहों पे तय है।

मधुरिमा के इन्हीं गीतों के साथ ही आज के नमस्कार जगदलपुर से मुझे यानी आपके रेडियो दोस्त सुखेंदु मलिक को दें इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
2: Today we have a new national health policy.
3: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय

0: स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
1: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
2: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
3: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड़ इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
2: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
5: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
6: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
7: हमारे यहाँ डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
8: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम

0: अग्वेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमरीका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप ए में ग्रुप में दूसरे, जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गई। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है। हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास

0: खबर है इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं नंदोराम भारती और साथियों का गाया भद्री नाट गीत।

0: गाना सँगे पानी रानी पूर्णी मन्दे उपका बुढा होइ उपका बुढा होइ पानी दोइते रला टोकी मन सँगे रे हर्की बेला पानी रानी हनाइ देला डेङ तले बसला छे गोटक कुमर केउँ देशे घरकार कुमर अति सुन्दर बर बोली कोही देला सखी मानकु हे सखी गण जाइ पछारि आस केउँ देशर विदेशिया बसी अछि बन्द डेङ्गे कहिदियो सखी गण पछारि आस सुनि करि दासी गण
1: सुनि करे दासी गण
0: बिजला पटी सँगे गला
1: बिजला पटी सँगे गला।

0: सेठो की मन
1: पानी कुमार के पोछारी गोलाई
0: पानी कुमार के पोछारी गोलाई
1: विदेशी आ बोली बोलाई
0: विदेशी आ बोली बोलाई
1: पानी कुमार सांगी देला
0: पानी कुमार सांगी।

0: पानी कुमार पानी रानी,
1: पानी कुमार पानी रानी,
0: असल बबलात गोरी काय नानी,
1: अच्छा बबलात गोरी काय नानी,
0: राजा रानी राजा रानी,
1: राजा रानी राजा रानी,
0: सुनी करी पानी रानी,
1: सुनी करी पानी रानी,
0: लुक लुकानी केलु बोलला,
1: लुक लुकानी केलु बोलला,
0: आमी जितले आमी नेबु,
1: आमी जितले आमी नेबु,
0: तुमी जितले तुमी नेबास,
1: तुमी जितले तुमी नेबास,
0: आरा जीता आज केलु,
1: आरा

0: सभी बच्चों को स्मृता दीदी का ढेर सारा प्यार और बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: कैसे हैं बच्चों आप सब?
2: बहुत अच्छे।
0: बहुत अच्छे। अरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे तो हमेशा अच्छे लगते हैं और आप लोग बड़े खुश भी हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि हमारे प्यारे बच्चे क्यों इतने खुश हैं?
3: खुश क्यों?
4: आज हम कविता बोलने आए हैं।
0: अरे वाह, ये भी एक बात है भाई। बालवाड़ी के कार्यक्रम का आप हिस्सा बनो और आपके चेहरे पर खुशी ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है। तो जो रेडियो सेट पर बैठे श्रोता दोस्त आपके प्रोग्राम की पूरे हफ्ते तक इंतजार करते हैं ना, उन सभी के इंतजार को खत्म करते हैं और जल्दी जल्दी आप लोगों से सुनते हैं आप लोगों का कार्यक्रम। आप सब अपनी जिम्मेदारी समझते हो, बिल्कुल ठीक कहा। और पर्यावरण के प्रति जुड़ाव क्यों ना हो, क्योंकि हम फ्री में क्या लेते हैं? धूप लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, हरे भरे पेड़ पौधे की पत्तियों को यूज करते हैं, फूलों को यूज करते हैं, फल कंद मूल लेते हैं, जड़ी बूटियां लेते हैं, नदियों का पानी पीते हैं, है ना। ताजी सुंदर हवा से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो इतनी सारी चीजें हमें प्रकृति फ्री में देती है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि हम इस प्रकृति के साथ दोस्ती कर लें और इनकी इन चीजों के बदले में अपना थोड़ा सा समय, थोड़ी सी केयरिंग अपनी प्रकृति को दें। और इस उम्र में जो काम आप करते हो बच्चों, वो जीवन भर आपके दिमाग में और आपके साथ साथ चलती रहती है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यदि आपको नेचर के साथ जुड़े रहना है तो? हम अभी 5 जून को कौन सा दिवस मनाए थे?
5: पर्यावरण दिवस।
0: पर्यावरण दिवस, इसमें हमने क्या किया था? एक पेड़ माँ के नाम लगाया था ना
1: जी।
0: तो बताओ माँ के नाम हम पेड़ क्यों लगाते हैं? सबसे ज्यादा क्लोज बच्चे किसके रहते हैं?
5: माँ के।
0: अब प्रकृति हमारी क्या है?
1: माँ।
0: धरती हमारी क्या है?
1: माँ।
0: हमारा देश हमारे लिए क्या है?
1: माँ।
0: माँ, तो माँ बच्चों के सबसे करीब रहती है, इसलिए हम प्रकृति हो चाहे हमारी धरती माता हो या हमारा देश भारत हो, हम उसको माँ कहकर बुलाते हैं, है ना। और अपने माँ के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हम छोटी छोटी कोशिश कर सकते हैं और यही कोशिश हमारे पर्यावरण के प्रति लगाव को बताती है। तो आप क्या करेंगे बच्चों? प्लास्टिक की थैलियों का, प्लास्टिक की चीजों का कम से कम उपयोग करें। इस चर्चा के बाद अब आती है बारी आज के सामुदायिक गीत की। तो बच्चों हर बार हम आपको अलग अलग भाषाओं में सामुदायिक गीत सुनाते हैं, तो क्या इसका कारण बता सकते हैं कि हर बार गीत अलग भाषाओं में क्यों होता है? कोई बच्चा बताएगा?
5: क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे भाषा होते हैं।
0: बहुत अच्छी बात। इसके अलावा आप सभी अलग अलग घरों से आए हैं ना?
1: जी
2: जी।
0: ठीक है, आपका पहनावा, आपकी बोलचाल, आपका रहन सहन सब अलग है, फिर भी आप जब यहाँ बैठे हो तो मेरे साथ क्या कहला रहे हो? बालवाड़ी के बच्चे कहला रहे हो ना?
1: जी।
0: ऐसे ही हमारे देश में अलग अलग विविधताएं हैं, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग परंपराएं हैं, फिर भी उन संस्कृतियों, उन परंपराओं, उन विविधताओं को जब हम एक साथ एक माला में पिरोते हैं तो वो बनती है हमारे देश की अखंडता और एकता की माला। और इसी एकता की माला में इस बार हम आपको सुनवा रहे हैं कन्नड़ भाषा में सामुदायिक गीत। इस गीत के रचनाकार है B.R. गीता। तो आइए बच्चों, आप, हम और हमारे सारे श्रोता मिलकर सुनते हैं सामुदायिक गीत कन्नड़ में।
6: हाँ।

0: बच्चों अभी आप सुन रहे थे कन्नड़ भाषा में सामुदायिक गीत, रचनाकार थे बीआर गीता जी। और इसके बाद जिस घड़ी का इंतजार है मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं को और नन्हे मुन्ने मेरी फुलवारी के छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूलों को, वो घड़ी आ गई है यानी आपकी प्रस्तुतियों की बारी। तो सबसे पहले एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा फूल आ रहा है, वो अपना नाम बता दे जरा।
1: आद्विक पिल्ले।
0: आप क्या सुनाएंगे आद्विक?
1: कविता
0: सुनाइए।
1: धरती से सीखा है हमने सबका बोझ उठाना, और गगन से सीखा हमने ऊपर उठते जाना। सूरज की लाली से सीखा जग आलोकित करना, और चंदा की किरणों से सीखा सबकी पीड़ा हारना। पर्वत से सीखा है हमने रण संकल्प बनाना, और नदी से सीखा हमने आगे बढ़ते जाना।
0: बहुत ही प्यारी कविता नन्हे आद्विक की ओर से। और इतनी खूबसूरती सी प्रस्तुति के बाद अगली प्रस्तुति के लिए हम बुलाते हैं आपको। आप अपना नाम बताइए।
2: दिव्यांका।
0: आप क्या सुनाने वाली हैं दिव्यांका?
2: कविता।
0: सुनाइए।
2: हम धरती माँ को जो कुछ भी देते हैं, धरती उसे कई गुना करके हमें वापस देती है। हमें धरती में एक बीज डालने हैं और वह उसका वृक्ष बना कर उसे कई फल हमें देती है। ऐसे ही खेतों में अनाज के कुछ दाने डालने पर वह सबका पेट भरने के लिए फसलें लहलहा देती है। लेकिन आजकल हम बड़े बड़े मकान और दुकानें बनाने के लिए धरती से उसकी हरियाली छीनते जा रहे हैं, और उस अनुपात में उसे कुछ लौटा नहीं रहे। इसी विषय पर मैं ये कुछ लाइनें कहना चाहती हूँ। यह हरा रंग है प्रीत का और प्रेम की ही जीत का। मुट्ठी भर देकर धरती को अथाह पाने की रीत का। यही प्रेम जीवन का सार है, पर यह उधार है। ये उधार यही चुकाना होगा। पाते जाना ही प्रीत नहीं, देने का धर्म निभाना होगा। आइए मिलकर पेड़ लगाएं और धरती की हरियाली बचाएं।
0: नन्ही सी दिव्यांका ने इतनी अच्छी कविता सुनाई, और उससे पहले उन्होंने भूमिका में अपनी बातें भी रखी। ये संदेश है कि बच्चे प्रकृति से जुड़े हैं, पर्यावरण के प्रति सजग हैं। आइए एक ऐसी

0: प्रस्तुति के लिए हम अगली कलाकार को बुलाते हैं। पहले आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम सिद्धि नवले है।
0: आप क्या सुनाएंगे?
1: कहानी
0: सुनाइए।
1: कहानी का शीर्षक है चीकू और जादुई पेड़। एक सुंदर जंगल में चीकू नाम का एक नटखट बंदर रहता था। चीकू बहुत दयालु था, लेकिन वह हमेशा मीठे फलों की तलाश में रहता था। एक दिन जंगल के सबसे कोने में उसे एक अनोखा पेड़ दिखाई दिया, जिस पर सोने और चांदी के फल लटके हुए थे। उस पेड़ के पास बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, यह जादुई पेड़ है, केवल उसे ही फल देगा जो दूसरों के साथ बाँट कर खाएगा। चीकू ने तुरंत एक सोने का फल तोड़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसे खाने के लिए मुंह खोला, वह फल एक साधारण और कड़वे फल में बदल गया। चीकू हैरान रह गया। तभी वह एक छोटी सी गिलहरी आई, जो बहुत भूखी थी और कुछ दिनों से भूखी थी। चीकू को उस गिलहरी पर तरस आ गया और उसने वह कड़वा फल गिलहरी की तरफ बढ़ा दिया। गिलहरी ने जिसे ही उस फल को लिया, वह जादुई फल फिर से सोने और चमकदार फल में बदल गया। गिलहरी ने खुशी खुशी उसे खा लिया। चीकू को यह बात समझ आ गई कि जादुई पेड़ की शर्त क्या है। उसने ढेर सारे फल तोड़े और जंगल की सभी भूखी जानवरों, हिरण, खरगोश और पक्षियों के साथ

0: भूख लगना प्रकृति है, लेकिन मिल बांटकर खाना हमारी संस्कृति है। तो आइए एक और अच्छी सी प्रस्तुति के लिए हम बुलाते हैं आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम अभिज्ञान शर्मा है।
0: आप क्या सुनाने वाले हैं?
1: जीके की बातें। क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा जानवर है जो बिना पानी के रह सकता है? हाँ, ऊंट। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? कबूतर। दुनिया का सबसे लंबा जानवर कौन सा है? जिराफ। कौन सा फल खाने से तुरंत ऊर्जा मिलती है? केला। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान। इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। कौन सा जानवर कभी पीछे नहीं चल सकता? कंगारू। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। ऐसा कौन सा पेड़ है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है? पीपल का पेड़।
0: बढ़िया, तो इस कार्यक्रम से आपने बहुत सारी नई नई चीज़ें भी सीख ली। बच्चों सीखा ना? अभिज्ञान शर्मा आपको सामान्य ज्ञान से जुड़ी बातें बता रहे थे और अगली प्रस्तुति के लिए हम आपको बुलाते हैं। आप अपना नाम बताइए।
2: यशस्वी ठाकुर।
0: क्या सुनाएंगी यशस्वी?
2: पहली
0: पूछेंगी। तो बच्चों दिमागी कसरत के लिए तैयार हो जाओ।
2: ऐसा कौन सा चीज है जो गर्म होने के बाद जम जाता है?
0: बताओ कौन सी चीज है जो गर्म होके जम जाती है?
2: अंडा।
0: सही जवाब।
2: हाँ। एक झाड़ी में 30 डंगाल, आधा सफेद आधा काली।
0: बताओ एक पेड़ पर 30 डंगाल, आधा सफेद आधा काली, बताओ क्या है? आप ही बता दो।
2: महीने के दिन और रात।
0: ओ बढ़िया, बहुत अच्छा। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया।
2: एक अंधा व्यक्ति क्या देख सकता है?
0: बता दो जवाब।
2: अंधेरा।
0: हाँ सही जवाब। मैंने कहा था ना हमारे श्रोता दोस्तों को कि हमारे बच्चे होशियार हैं भाई, बड़े अच्छे से इन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिया, वो भी तड़ातड़ तड़ातड़। तो चलिए अगली प्रस्तुति के लिए हम बुलाएंगे आपको। आप अपना नाम बताइए।
3: मेरा नाम नव्या त्रिपाठी है।
0: आप क्या सुनाएंगी नव्या?
3: पिता दिवस पर निबंध।
0: अच्छा सुनाइए।
3: पिता हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं। वह परिवार के आधार स्तंभ होते हैं और अपने बच्चों के शुद्ध भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। पिता हमें जीवन में सही मार्ग दिखाते हैं तथा कठिन परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शन कराते हैं। पिता दिवस हर वर्ष जून महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। इस दिन बच्चे अपने पिता के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वे अपने पिता को

0: वे हमें अच्छे संस्कार, अनुशासन और जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण महत्व भी सिखाते हैं। उनके अनुभव और सलाह हमारे जीवन को सफल बनाने में हमारी सहायता करता है। हमें अपने पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उनकी बातों का पालन करना चाहिए। पिता का प्रेम और त्याग अनमोल होता है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। अंत में पिता दिवस हमें अपने पिता के प्रति अवसर प्रदान करता है। हमें केवल इस दिन ही नहीं बल्कि हर दिन अपने पिता का सम्मान और आदर करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।
1: बहुत अच्छी बातें अपने इन शब्दों में नन्ही नव्या ने रखा कि पिता हमारे लिए क्या है। माँ अगर धरती है तो पिता आकाश है, है ना? और धरती आकाश के बिना हमारा अस्तित्व नहीं। ऐसे ही घर में माता पिता के बिना, हमारे बड़ों के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। हमें हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी पिता दिवस पर। और अगली प्रस्तुति के लिए आप तैयार हैं तो जल्दी से आप अपना नाम बताइए।
2: आद्या पिल्ले।
1: आप क्या सुनाएंगे?
2: कविता।
1: सुनाइए।
2: उठो धरा के अमर सपूतों, पुन नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति, नई नई उमंग, नई तरंग, नई आस है सांस, नई युग युग के मुरझे सुमन में नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुन नया निर्माण करो।
1: हम सभी इस धरती के बच्चे हैं और नव निर्माण के लिए हमको हरियाली को बराबर बनाए रखना है ना? इसकी पानी, इसकी हवा, इसकी धूप, इसकी छाया, सबको हमको संतुलन बनाकर लेकर चलना है। ठीक, अगली प्रस्तुति के लिए आपको बुलाते हैं। आप अपना नाम बताइए।
3: मेरा नाम शौर्य रंगनाथ है।
1: आप क्या सुनाने वाले हैं?
3: कहानी।
1: अच्छा, कहानी सुनाने वाले हैं, सुनाइए।
3: चिराग एक छोटे से गांव में रहने वाला ईमानदार और मेहनती लड़का था। वह हर काम सच्चाई से करता था। एक दिन उसे रास्ते में एक पर्स मिला। उसने पर्स खोला, उसमें बहुत सारे पैसे थे और एक कार्ड भी था। चिराग ने सोचा, यह किसी का होगा, मैं इसे उसके मालिक तक जरूर पहुंचाऊंगा। कार्ड पर एक नाम और पता लिखा था। चिराग उस पते पर पहुंचा और पर्स लौटाया। पर्स मालिक बहुत खुश हुआ और बोला, बेटा तुमने मेरी पर्स बड़ी मदद की है। पर्स मालिक ने चिराग को इनाम देने चाह, लेकिन चिराग ने कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए, आपने मुझे केवल धन्यवाद कह दिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। चिराग की ईमानदारी चर्चा पूरे गांव में फैल गई। सबने उसकी तारीफ की और उसे एक सच्चा और अच्छा बच्चा कहा। चिराग ने सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा मन को सुकून देती है और सम्मान भी दिलाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ईमानदारी सबसे बड़ी नीत है। सच्चाई का रास्ता हमेशा हमें सम्मान और सफलता की ओर ले जाता है।
1: भाई, शौर्य ने हमें कहानी तो सुना दी, लेकिन अपनी कहानी का शीर्षक नहीं बताया। तो शौर्य, आपकी कहानी का शीर्षक क्या था? आपने तो बताया ही नहीं।
3: ईमानदारी की जीत।
1: तो आपको पता चल गया बच्चों कि हमेशा ईमानदारी की जीत होती है। जो ईमानदारी के रास्तों पर चलता है वो हमेशा सक्सेस ही देखता है। ठीक है, ईमानदारी के रास्ते में बहुत कठिनाइयां हैं, लेकिन फिर भी जीत हमेशा ईमानदारी की होती है। चलिए, अब अगली प्रस्तुति के लिए हम बुलाते हैं। आप अपना नाम बताइए।
4: देवयांशी ठाकुर।
1: आप क्या सुनाएंगी?
4: कहानी।
1: सुनाइए।
4: इस कहानी का शीर्षक है हमारा पर्यावरण। शहर की सुख सुविधाओं में रहने वाली मीशु ने जब अपनी मम्मी पापा को बात करते हुए सुना कि गांव में नानी की तबीयत खराब है और उन्हें देखने के लिए हमें अगले दिन गांव के लिए निकलना होगा, यह सुनते ही जैसे उसकी गर्मी की छुट्टियों की खुशी जाती रही। यहां शहर की भयंकर गर्मी

0: से लड़ने के लिए उसके घर में एसी रखा हुआ था और टाइम पास करने के लिए हाथ में मोबाइल था जो 24 घंटे चलने वाले वाईफाई से कनेक्टेड था। वह दिन भर मोबाइल में अपने पसंद के वीडियो देखती और जोमैटो से अपने पसंद के पिज्जा और पास्ता ऑर्डर करके गर्मी की छुट्टियों का मजा ले रही थी। लेकिन गांव, वहां तो एसी दूर की बात है, 24 घंटे बिजली भी नहीं होती थी। फिर वो पूरा दिन क्या करेगी, ये सोचकर ही वह मायूस हो जाती। मम्मी के बहुत समझाने पर वह सिर्फ 5 दिन के लिए नानी के घर जाने के लिए राजी हुई। अगले दिन मम्मी, पापा और मीशू तैयार होकर गांव के लिए चल पड़े और कुछ ही घंटों में पहुंच गए नानी के गांव। नानी की तबीयत खराब थी तो मीशू ने सोचा था कि वे बिस्तर पर बेहाल सी पड़ी होंगी, पर उन्हें अपने खेतों की देखभाल करता देख वे तीनों बहुत खुश हुए। मीशू को आया हुआ देख नानी की आंखों में खुशी की चमक उठी। मीशू ने चहक कर पूछा, नानी आप तो बीमार थी ना, इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई? खूब सारी दवाई खाई होंगी ना? नानी ने कहा कि पास के जंगल की जड़ी बूटियों का कमाल है कि मैं 2 दिन में ही ठीक हो गई। नानी ने ठंडी ठंडी लस्सी से सबका स्वागत किया, फिर सारे बैठकर बातें करने लगे। मम्मी को आया हुआ देखकर पड़ोस की कई सारी मामी चाची मम्मी से मिलने आ गई और सभी बहुत ही अपनेपन से मिले, जैसे वे रोज ही मिलती रही हों। शहर और गांव के बीच की दूरी जैसे खत्म ही हो गई हो। मीशू को यह माहौल बहुत अच्छा लगने लगा। इस खुशी में जब उसने ऊपर देखा तो बिजली नहीं थी और पंखा भी नहीं चल रहा था, लेकिन बाहर के घने पेड़ों से चल रही ठंडी हवा ने तो गर्मी को भी मात दे दी थी। मीशू ने अपना मोबाइल फोन निकाल कर देखा तो उसमें नेटवर्क ही नहीं था। वो बहुत ही उदास होकर बाहर देखने लग गई। बाहर उसे कुछ खेलते हुए बच्चे नजर आए तो वह भी उनके साथ खेलने लगी। खेलते समय हवा के चलने से आसपास पेड़ों से आम, जाम और जामुन जैसे फल गिरने लगे, जिन्हें खाकर वे सारे बच्चों ने बहुत मजे किए। पूरा दिन ऐसे ही खेलते हुए गुजर गया और रात को मीशू नानी के साथ खुले आकाश के नीचे तारे देखते हुए लेटी थी। उसे प्रकृति को इतने नजदीक से देखना, अनुभव करना बहुत अच्छा लग रहा था और नानी की कहानियां सुनते सुनते वह कब सो गई पता ही नहीं चला। देखते ही देखते 5 दिन गुजर गए और मीशू के वापस जाने का दिन आ गया था। वह मीशू जो गाँव आना ही नहीं चाह रही थी, आज उसको गाँव से जाना बहुत बुरा लग रहा था। नानी ने मीशू को देखकर ही उसका मन पढ़ लिया और अंदर से एक पैकेट निकालकर मीशू को दिया और बताया कि इसमें सीड बॉल्स हैं, तुम अपने घर और आसपास की जमीन में इन्हें डाल देना और जब बारिश होने लगेगी तब इन सीड बॉल्स में से छोटे छोटे पौधे अंकुरित होने लगेंगे और जल्द ही वे फल फूल वाले बड़े वृक्ष में बदलने लगेंगे। प्रकृति और मनुष्य का रिश्ता बहुत ही गहरा है। शहरीकरण के चलते हम प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं और यही कई सारी बीमारियों और समस्याओं का कारण है। हमें अपनी प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए, छोटा ही सही। नानी की बातें मीशू के समझ में आ गई और वह नानी का दिया उपहार लेकर चल पड़ी अपने शहर में एक छोटा सा गांव बसाने।
1: बहुत ही सुंदर और प्यारी सी कहानी प्रकृति से जुड़ी हुई थी और एक बार फिर हम प्रकृति से जुड़ाव इन बच्चों के माध्यम से, इनकी प्रस्तुतियों के माध्यम से महसूस कर पा रहे हैं। अगली प्रस्तुति सुनाए उससे पहले घड़ी की टिक टिक कह रही है कि भाई समय हो चला है और अब आप विदा ले लीजिए। तो बच्चों, जाने से पहले यदि आपको हमने इतने अच्छे कार्यक्रम के बदले में रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया तो फिर क्या दिया? तो दीदी का रिटर्न गिफ्ट ये है कि आप एक प्यारा सा गीत सुनिए, वो भी अपनी पसंद का। सुनना चाहोगे बच्चों?
2: जी।
1: तो आइए आप और हम मिलकर अपने बचपन को फिर से जीते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: इस गीत के बाद आज का ये बालवाड़ी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले रविवार ठीक 9 बजे आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए फिर एक बार स्मृता दीदी का ढेर सारा प्यार, और बच्चों जय हिंद,
1: जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम बालवाड़ी, मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

जी हाँ श्रोताओं, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको सुनवा रहे हैं 19 मई सन 2000 को रिलीज हुई फिल्म क्या कहना की गीत, और बताएंगे इस फिल्म से जुड़ी कुछ बातें। तो आइए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में ये गीत।

इस फिल्म के निर्देशक हैं कुंदन शाह, निर्माता कुमार तौरानी और रमेश तौरानी। इस फिल्म के मधुर गीतों की रचना की है मजरू सुल्तानपुरी ने और इन गीतों को संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने। तो आइए सुने उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में ये गीत।

क्या कहना फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आए सैफ अली खान, प्रीति जिंटा, चंद्रचूड़ सिंह, अनुपम खेर, फरीदा जलाल, राजीव वर्मा, देवेन वर्मा, मामिक सिंह, रीता भादुड़ी, नवनीत निशान और रीमा लागू। तो लिए सुनिए इस फिल्म का एक और गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

क्या कहना। फिल्म के गीतों को गाया है कुमार सानू, हरिहरन, अलका याग्निक, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम ने। तो कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं कुमार सानू, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में ये गीत।

एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे क्या कहना फिल्म के गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में कल से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों को संबोधित करेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। अभियान के तहत 35,98,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर वी आर भगत ने बताया कि आज जो बच्चे पोलियो की खुराक नहीं ले पाएंगे उन बच्चों को अगले 2 दिनों तक यानी 29 और 30 जून को घर घर जाकर खुराक दी जाएगी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पेंशनरों के हित में बड़ा फैसला सुनाते हुए 6वें और 7वें वेतन आयोग से जुड़े 59 महीने के बकाया एरियर के भुगतान का रास्ता साफ कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार की रिट अपील खारिज करते हुए एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि 2 राज्यों के बीच वित्तीय समन्वय या सहमति का अभाव पेंशनरों के वैध अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिनों के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में कल 29 जून से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। 6 जुलाई तक चलने वाले इस सप्ताह के दौरान प्रदेश भर में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। रायपुर में आगामी 3 और 4 जुलाई को राज्य स्तरीय सहकारी चिंतन शिविर, सहकार मेला और संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सहकार मेले में सहकारिता क्षेत्र की उपलब्धियों और सफल मॉडलों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। 6 जुलाई को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा अन्न भंडारण योजना के तहत प्रदेश के 9 पैक्सों में गोदाम निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और दुनिया के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना

0: प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पद्मश्री डॉक्टर बुद्री ताती ने कल रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज के उत्थान, लोक संस्कृति के संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में डॉक्टर ताती के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा के छोटे से गांव से निकलकर डॉक्टर ताती ने चार दशक से अधिक समय तक बस्तर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। सरगुजा जिले के रामगढ़ में कल 29 जून से दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। महोत्सव के पहले दिन 29 जून को छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति पर आधारित विभिन्न लोक नृत्य और लोकगीत प्रस्तुत किए जाएंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं आगामी 7 दिनों तक पूरे प्रदेश में वर्षा की गतिविधि में वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी से कथित 250 टन लोहा चोरी के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर 1 जुलाई को न्याय की मशाल यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी गई है। तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रायपुर में 2 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से सिक्योरिटी गार्ड के 20 पदों पर भर्ती की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में कल से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और दुनिया के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम चाहत। प्रस्तुति है प्रीति यादव की, संयोजन चंद्र ऋषि ठाकुर का।
2: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं बातों के साथ आगाज करते हैं हम आज के फोन इन चाहत कार्यक्रम का, और देखते हैं कि आज हमें सबसे पहले किस श्रोता साथी ने फोन किया है।
3: हेलो
4: हेलो, फोन इन चाहत।
3: जी मैडम नमस्कार।
4: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: हाँ मैं लोकेश राम कुंजाम बोल रहा हूँ मैडम।
4: लोकेश राम कुंजाम, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
3: हाँ मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ मैडम।
4: उड़ीसा से?
3: हाँ मैडम।
4: क्या करते हैं लोकेश जी आप?
3: मैं तो खेती किसानी करता हूँ मैडम।
4: अच्छा, खेती किस चीज की खेती कर रहे हैं अभी आप?
3: अभी तो फिलहाल धान का खेती कर रहे हैं मैडम। अभी फिलहाल बारिश नहीं हुआ है मैडम हमारे तरफ।
4: अच्छा, तो आप और लोकेश कुमार जी बताइए, आपने शिक्षा कहाँ तक हासिल की है?
3: ज्यादा तो पढ़ाई नहीं हुआ मेरा मैडम
4: जी,
3: 8वीं पढ़ के छोड़ा हूँ मैडम।
4: तो आपने आगे पढ़ाई नहीं?
3: आगे प्रॉब्लम था मैडम, इसलिए घर का परिस्थिति गड़बड़ था, इसलिए छोड़ना पड़ा।
4: अच्छा, तो अभी आप जीविका चलाने के लिए खेती किसानी करते हैं?
3: हाँ मैडम।
4: अच्छा, और आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं?
3: अच्छा लगता है मैडम।
4: क्या क्या मतलब कौन से कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं?
3: सुबह में जैसे नमस्कार जगदलपुर, और शाम को युवाणी, और 12 बजे जो आता है बिंदिया, और होनी चाहत, सभी प्रोग्राम ठीक है मैडम।
4: अच्छा बताइए, किस फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं?
3: दिलवाले मिलेगा।
4: कौन सी फिल्म?
3: दिलवाले।
4: दिलवाले जी हाँ।
3: इस फिल्म का कोई भी गाना ठीक है।

0: मैं कोदवा साझा छत्तीसगढ़ से राम स्वरूप गुप्ता।
1: राम स्वरूप जी, आपका कॉल लग गया, कैसा लग रहा है आपको?
0: नहीं दीदी, यहाँ तो सुनते ना तो प्रोग्राम, और लोक रंजन अपना भी सुनते रहते, अच्छा लगता है, प्यारा प्रोग्राम लगता है जगदलपुर का तो।
1: अच्छा, काफी समय के बाद आपने कॉल किया और आपका कॉल लग गया, तो कैसा लग रहा
0: है? हाँ दीदी, हाँ नहीं तो खुशी होते दी, बहुत खुशी होते, आप लोगों जुड़ते हैं, आप लोग बात करते, एक परिवार बन जाता है, हिस्सा बन जाता है, अच्छा लगता है हम लोगों को।
1: जी जी, और बताइए आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं?
0: नहीं बहुत प्यारा दिन कार्यक्रम लगता है वहाँ का, सुनते रहता हूँ अक्सर, फोन इन्फॉर्मेशन सुनते रहता हूँ, लोक राशि सुनते रहता हूँ।
1: जी हाँ,
0: उसमें भी कभी कभी छत्तीसगढ़ी गीत पसंद कर लेता हूँ, प्रादेशिक भाषा भी सुन लेता हूँ वहाँ का।
1: और बताइए आप क्या करते हैं राम स्वरूप जी?
0: मैं तीर्थ यात्रा काम करता हूँ दीदी, सवारी इकट्ठे करके तीर्थ यात्रा घुमाने के लिए आता हूँ टूर ट्रेवल्स में।
1: अच्छा, काफी अच्छा काम है आपका और काफी सफर करते हैं, यात्रा करते हैं आप, तो
0: हाँ
1: यात्रा
0: दीदी।
1: के बीच आपको काफी कुछ अनुभव भी होते होंगे, है ना?
0: हाँ, अनुभव भी मिल जाता है दीदी, इसमें दर्शन भी मिल जाता है, घूमने के लिए भी मिल जाता है, कुछ पुण्य प्रताप भी मिल जाता है, कुछ कमाई भी हो जाता है हमारा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो कितने साल हो गए आपको ऐसे तीर्थ यात्रा
0: ये
1: में जाते हुए?
0: करीब मेरे को 15 साल ऊपर हो गए दीदी, मेरे काम का, तो पहले बस में कनेक्टर था, दूर रोड में कनेक्टिंग कर रहा था मैं,
1: अच्छा,
0: उसी बीच में काम भी चालू किया, आप कनेक्टिंग छोड़िए, सिर्फ यही काम करता हूँ 12th का। इसमें दीदी हम लोग पहले इकट्ठा करते, 2 महीने पहले ढूंढना पड़ता है गाँव गाँव जाके, हर घर जाके देख के, करने के बाद उसमें फिर बस करते हैं हम लोग स्टेशन, जहाँ ना बस मिल जाए, है ना, उसके बाद हम लोग उसमें कभी 2 टाइम खाना बनता है, समय कभी 1 टाइम बनता है खाना, 1 टाइम बनता है उसमें, 1 टाइम नाश्ता बना देते हैं, कभी हलवा बन जाए, कभी पूरी सब्जी बन जाए, कभी ब्रेड पकौड़ा पकौड़ा बन जाए,
1: जी हाँ,
0: तो कभी पोहा बन जाता है।
1: जितनी भी तीर्थ यात्राएं आपने लोगों को करवाई हैं, इसमें से कोई खास कोई सी तीर्थ यात्रा आपको याद है जहाँ कुछ खास अनुभव हुआ हो आपको?
0: खास अनुभव यही दीदी, जब से मैं शुरुआत किया हूँ मेरा वही जगन्नाथ जी स्टार्टिंग किया हूँ, अच्छा इसी टाइम से मैं अभी तक किसी आगे हाथ में फैलाया हूँ अभी तक, अब बाकी देर आने जो भी मिलता है उसी में संतोष हो जाता है, मेरे को बहुत प्यारा लगता है।
1: काफी पुण्य और सेवा कार्य का काम कर रहे हैं आप, है ना?
0: हाँ दीदी
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा। और हमारे रेडियो सुनने वाले श्रोता साथियों को आपको एक संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहते हैं आप?
0: हाँ दीदी, यही है बोलता हूँ कि सभी बढ़िया आकाशवाणी जगदलपुर से जुड़ा रहे, हर प्रोग्राम सुने, हर यानी अच्छे से सुनते रहे, और उसमें फरमाइश भी करते रहे, वहाँ का उत्साहित से अपना नाम उसमें भेजते रहे, आप लोगों से जुड़ते रहे।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने, है ना?
0: हाँ दीदी
1: बिल्कुल, काफी अच्छी बात है। राम स्वरूप गुप्ता जी, आप हमें बताइए किस फिल्म का गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
0: अनुराग फिल्म का सुना दो, सुंदरी पवन पवन पुरवैया।
1: जी जी जी बिल्कुल, काफी अच्छा गीत सुनना चाहा है आपने राम स्वरूप जी, और आपकी पसंद का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। कॉल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन इन चाहत।
1: वंदे मातरम, नमस्कार।
0: वंदे मातरम, आप अपना नाम बताइए।
1: हम बोल रहे हैं नकटी संध्या से, आरपी दानी। आज मेरे को गीत सुनना था।
0: जी जी दानी जी, आप क्या करते हैं हमें बताइए, हमारे श्रोताओं को भी।
1: मैं कुछ नहीं, बिजनेस मैन हूँ। अच्छा, बिजनेस करता था, अभी फिलहाल तो अभी धंधा बंद हो गया, अभी कोई काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पुराना स्रोत और खाली गीत संगीत वगैरह इसी में रुचि रखता हूँ।
0: अच्छा, तो रेडियो सुनते हैं आप हमारे आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रमों के बारे में कुछ?
1: एक शायरी अर्ज करना चाहता हूँ।
0: जी,
1: उनका ख्याल आए तो आते चले जाए, दीवाना जिंदगी को बनाते चले जाए। हमने उनके राह में दिशा थे फूल, वो थे कि हमारे राह में काते भी जाते चले गए। गीत है फिल्म मेरा नाम जोकर।
0: मेरा नाम जोकर,
1: हाँ,
0: इस फिल्म का गीत आप बोले हैं।
1: जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे जिनके राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहे जो तुमका उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, ये गीत है।
0: अच्छा, ये गीत तो काफी अच्छा है दानी जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पसंद का गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे।
1: आपका उपकार नहीं मानेंगे, धन्यवाद।
0: जी, कॉल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: आकाशवाणी जगदलपुर से फोन इन चाहत कार्यक्रम, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं यहाँ इलानगर केड़गांव से भाऊ साहब नौतर बात कर रहा हूँ मैडम।
0: भाऊ साहब कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हाँ इलानगर केड़गांव अहमदनगर से।
0: ये कहाँ, कौन सा राज्य है ये?
1: महाराष्ट्र।
0: ठीक ठीक, बताइए आप कैसे हैं?
1: बहुत मजे में, तुम कैसे मैडम?
0: हम बढ़िया हैं, आप बताइए। आप आकाशवाणी जगदलपुर में फोन इन चाहत कार्यक्रम में आपने कॉल किया है, किस गीत को सुनना चाह रहे हैं आप, कौन सी फिल्म का गीत?
1: फिल्म का नाम है अनाड़ी। फूलों सा तेरा तेरा क्लेश नुकसान है, ये गीत सुना जाता है।
0: तो आप इस फिल्म का ये गीत सुनना चाहते हैं, हम आपको आपके गीत जरूर सुनवाएंगे।

किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांज बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक।

0: जी मैं किसानी काम करता हूँ।
1: अच्छा,
0: किसानी मेरे पास और जागे साथ साथ है। दो बालक मेरे पास, एक बालक भोपाल में रहता और एक रहता तेनुश्राम सरकारी वेयर हाउस गली की, और भोपाल में बड़ा बालक, इसलिए मैंने किराने की दुकान खुलवा दी है और घर पर मैं किसानी करवा लेता हूँ, मतलब मजदूर लगा के।
1: अच्छा, कौन सी फसल लगाते हैं आप खेती किसानी में, कौन सी फसल ले रहे हैं?
0: जी अभी बिल्कुल धान की तैयारी चल रही है, खेत में पानी चल रहा है, उतनी बारिश तो नहीं हो रही है
1: जी,
0: तो रोपा भी डले हुए धान के और मोटर चल रही, मतलब गड़ाइया भरा रही है जी। समय समय पर किसानी काम करवा लेता हूँ। दूसरा मेरे व्यवसाय और है।
1: अच्छा, और कौन सा व्यवसाय करते हैं?
0: जी मैं एक सब्जी का व्यापार करता हूँ, थोक खरीद कर लाता हूँ।
1: अच्छा,
0: हमारे यहाँ पर सागर है, सागर पास में बड़ी देवरी है, गाड़ाबारा है, नरसिंहपुर है, करेली, थोक खरीद के लाता हूँ, मंडी में लगाता हूँ।
1: अच्छा, मतलब आप व्यवसाय भी कर रहे हैं, काफी कई तरह के काम कर रहे हैं आप ना?
0: जी जी जी
1: जी, कभी इंसान को कभी खाली नहीं रहना चाहिए, उसको हमें
0: बिल्कुल नहीं खाली तो रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में मनुष्य के एक बार जीवन मिलता है, तो काम भी करो, लेकिन इतना करो कि जितना अपना शरीर बोझ सह सके।
1: मनुष्य जीवन बहुत कीमती है और ये जीवन जब हमें मिला है तो इसमें हमें पुरुषार्थ कर लेना चाहिए, है ना?
0: और आपके कार्यक्रम भी हमारे लिए सुनना बहुत जरूरी, क्योंकि जब आप लोग इतनी मेहनत से कार्यक्रम बनाती हैं और अगर हम ना सुने तो उसको कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप कार्यक्रम भी समय समय पर टाइम निकाल, जैसे एक ही कलाकार 11 बजे
1: जी हाँ।
0: और श्रोता सुमन, आज मेरी थोड़ी नींद लग गई थी पलंग पर सोए सोए, तो मैंने 1:40 में नींद खुली
1: जी,
0: तो 20 मिनट का मैंने आप कार्यक्रम सुन लिया था।
1: अच्छा
0: जी,
1: बिल्कुल, हम जो आकाशवाणी जगदलपुर से जो हमारे जो भी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं
0: जी,
1: तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारे
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैंने और भी डिस्ट्रिक्ट सुनी है, जबलपुर है, भोपाल है, सागर है, छतरपुर है, आपके यहाँ पर कम से कम एक पत्रों पर 40-50 मतलब हमारे मित्र शामिल हो जाते हैं।
1: और तुलसीराम जी, आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे हमें?
0: जी ठीक है, बंजारा फिल्म का सुना दीजिए, भी एक नंबर गीत है। ये जीवन जितनी बार मिले,
1: बिल्कुल काफी अच्छा गीत आपने चुना है तुलसीराम साहू जी
0: जी,
1: और कॉल करने के लिए धन्यवाद। और आपकी पसंद का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: अखबार और रेडियो सुनता था, उसमें समाचार की मुझे बहुत रुचि रहती थी। मैं विदेशों का समाचार में भी रुचि, जैसे देखा जाए तो यानी जो पढ़ने का शौक है, जो वांचन बोलते हैं, उसका भी मुझे बहुत शौक है। और प्रकृति से जुड़ा हूँ, पर्यावरण की हो सके इतनी मदद करता हूँ।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अभी पिछले 5 जून को हमने पर्यावरण दिवस भी मनाया है ना।
0: बिल्कुल
1: आप
0: बिल्कुल।
1: कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों से, पर्यावरण को बचाने के लिए क्या किया जाए?
0: जी जी जी, पर्यावरण के बारे में मैं ये कहूँ कि हमने पर्यावरण को, प्रकृति को बहुत नुकसान पहुँचा है, इसमें मैं भी शामिल हूँ। तो अब हम अभी जगह ऐसा मान के संभालने की जिम्मेदारी हम सब नागरिक की है, हमारी खुद से शुरुआत करें और हो सके इतना पॉलीथिन थैली का उपयोग बिल्कुल न कर

0: को बचाए रखने के लिए अपनी तरह से भरपूर प्रयास करें और हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में अपना योगदान दें, है ना। और आप किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे हमें बताएं?
1: गाना सुनना है मुझे नूरी फिल्म का आ जा रे नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में।

0: आपको। हेलो, हाँ फोन इन चाहत, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मधुर आवाज की मलिका मैडम प्रीति जी को सप्रेम नमस्कार करता हूँ। संतोष कुमार फ्रॉम उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा, संतोष कुमार कहाँ से? मध्य प्रदेश। तो संतोष कुमार जी, आपका कॉल यहाँ पर लग गया, आपको बहुत बहुत बधाई। और कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
1: जी, आप जैसे वरिष्ठ मतलब खास करके आप जैसे उद्घोषक से बात करके मन इतना आनंदित होता है मैडम। जब आप कार्यक्रम श्रोता सुमन नमस्कार जगदलपुर ऐसे कार्यक्रम को जब प्रस्तुत करती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून का पल होता है।
0: बहुत अच्छी बात बताई आपने हमें संतोष कुमार जी। और क्या करते हैं, कुछ बताएं अपने बारे में।
1: जी मैम, मैं एक कृषक हूँ, साथ में आकाशवाणी पर वार्ता लिखता हूँ मैडम जी।
0: अच्छा, कृषक हैं आप?
1: जी मैम।
0: अभी कैसा माहौल है खेती किसानी का, क्या कुछ कर रहे हैं आप, कौन सी फसल ले रहे हैं?
1: मैडम, यहाँ पे जो हमारा जो आदिवासी बहुल क्षेत्र उमरिया होता है, ये खास करके मकाई और जो खास करके कोदू कुटकी और उड़द की फसलों के लिए ज्यादा मशहूर होता है मैडम जी।
0: फसल कैसी होती है वहाँ पर, अच्छी होती है?
1: बिल्कुल मैम, इस समय प्री मानसून की बारिश हो रही है और यहाँ पे अभी धान की खास करके जो धान की जो पैदावार है इसके लिए मतलब व्यक्ति अभी थरहा कर रहे हैं, मतलब धान की थरहा दिए हुए हैं और जो खेत बचे हुए हैं उनको जुताई करवा रहे हैं मैडम जी समय।
0: अच्छा, मतलब पूर्व तैयारी चल रही है पूरी, है ना?
1: हाँ, मौसम की पूर्व की जो मतलब जुताई करके रहने दे दिए हैं और जैसे ही बारिश अभी आने वाली है, दो चार दिन में बारिश या यूं कह के मध्य प्रदेश पहुँचेगा फिर छत्तीसगढ़ पहुँचेगा, तो उसी प्रकार से मतलब जुताई बुवाई का काम यहाँ पे जोर शोर से चल रहा है मैडम जी।
0: अच्छा, बिल्कुल, काफी अच्छी बात बताई आपने हमें संतोष कुमार जी। और आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रमों को आप सुनते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, कुछ बताएं?
1: एक सुकून, आनंद और खुशियों का क्षण लेकर के आता है आकाशवाणी जगदलपुर और हमारा पसंदीदा कार्यक्रम होता है श्रोता सुमन, जिसमें आप हमारे पत्रों को भी शामिल करती हैं। और नमस्कार जगदलपुर इतना आनंदित कर देने वाला होता है जो ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को लेकर आता है, बहुत ही अच्छा होता है। एक ही कलाकार जब आप लेकर आती है तो बहुत ही प्यारा होता है क्योंकि इसमें गीतकार संगीतकार निर्देशक गायक के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है।
0: जी हाँ, और इसके लिए हम लोग काफी मेहनत भी करते हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो कार्यक्रम है वो हमारे श्रोता साथियों को पसंद आए और इसलिए हम मेहनत भी करते हैं, है ना? और हमारी मेहनत तब सफल होती है जब आप जैसे श्रोता उन कार्यक्रमों को सुनते हैं, सराहना करते हैं, समीक्षा करते हैं।
1: जी बिल्कुल मैम, इसलिए जो कार्यक्रम होता है ना साप्ताहिक वाले जो कार्यक्रम आते हैं, दो दिन होते हैं, जो नमस्कार जगदलपुर के अंतर्गत प्रसारित की जाती है चिट्ठी पत्रिका जो कार्यक्रम आता है, तो इसमें अपने लोग हम लोग सुझाव भी देते हैं, उसमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जब कभी आप जैसे मतलब उद्घोषक होते हैं, खास करके जो पुराने मजे हुए उद्घोषक होते हैं, तो श्रोताओं को प्रेरणा भी मिलता है क्योंकि जो आप शब्दों का चयन करते हैं, उद्घोषक की जब मनमोहक अंदाज होती है, शैली होती है, और आज जिस प्रकार से आप इस कार्यक्रम को उत्साह उमंग के साथ प्रेरणा के साथ हम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो बहुत ही मन और घर के जो लोग होते हैं खासकर महिला हमारी जो होती है खासकर मम्मी हो गए दीदी हो गए, तो इनको आनंद की अनुभूति हो पाती है।
0: अच्छा, काफी अच्छी बात बताई आपने हमें संतोष जी। और बताइए किस फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: मैम, इस समय बारिश आने वाली है, एक बहुत ही प्यारा सा गाना है रोटी कपड़ा और मकान मूवी का।
0: बिल्कुल, बताइए कौन सा गीत?
1: अरे हाय हाय ये मजबूरी, ये गाना अगर आपके पास हो तो जरूर चलाइएगा।
0: ये गाना हमारे पास उपलब्ध है और आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। कॉल करने के लिए आपको धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताएं।
0: अमरजीत बात कर रहा हूँ
1: अमरजीत,
0: जी। जी
1: कहाँ से बोल रहे हैं?
0: मैं बात कर रहा हूँ आपसे खंडिया गेट कॉलोनी जिला चाकू वाले रामपुर उत्तर प्रदेश से।
1: अच्छा अमरजीत जी, आप क्या करते हैं, कुछ बताएं अपने बारे में।
0: ये मैडम मेरा हैंड वर्क का काम रहता है, सूट का कढ़ाई रहती है, मैम हाथ द्वारा सिलते हैं, जो चीकी होती है मोती होता है इसको सुई द्वारा सिलते हैं।
1: और आप अपनी जीविका चलाने के लिए यही काम करते हैं?
0: जी जी जी, जो काम रहता है सूटों का रहता है, साड़ियों का रहता है, लहंगों का रहता है।
1: और कुछ बताएं?
0: और सब बढ़िया मैम, आपसे याद कर रहे थे, प्रोग्राम में कॉल आ रहे थे, कॉल भी लग गई और काफी अच्छा लग रहा है। और मौसम की बात की जाए तो इधर काफी धूप निकल रही है, हमारी तरफ बारिश भी नहीं हुआ है मैम।
1: बारिश नहीं हो रही है वहाँ पे?
0: जी जी नहीं हो रही है।
1: जी हाँ, सभी को इंतजार है कि बारिश हो और फिर उसके बाद जो फसल है वो भी अच्छे से हो जाए, है ना?
0: जी जी, क्योंकि बारिश पड़ जाएगी तो मौसम ठंडा हो जाएगा मैडम।
1: बिल्कुल। और कुछ बताएं, आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है?
0: मौसम तो खास करके मैडम मेरे को जो लगता है कि सर्दियों का मौसम ही अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल, लेकिन हर मौसम की अपनी एक खासियत है ना?
0: जी,
1: और सबकी अपनी पसंद है, तो आपको सर्दियों का मौसम पसंद है ना?
0: जी।
1: और बताइए, हमारे आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रमों को आप सुनते हैं तो कुछ कहना चाहते हैं आकाशवाणी जगदलपुर के लिए?
0: जी मैडम, मैं गीत सुनना चाहूँगा, फिल्म का नाम रहेगा शादी, और इस मूवी में मुझे गीत सुनना है, गीत केवल इस तरह से हैं, आज तुम्हें सनम मिलकर ये वादा करें।

0: हम उन्हें बता दें कि वो 4 सप्ताह के बाद इस कार्यक्रम में कॉल करेंगे। फोन करने के लिए हमारा नंबर है 2221602221060 और हमारा दूसरा नंबर है 2226662226 एसटीडी कोड है 07782।
1: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम चाहत। प्रस्तुति थी प्रीति यादव की, संयोजन था चंद्र ऋषि ठाकुर का। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनता से संवाद पर आधारित कार्यक्रम मन की बात हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बुलबुल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
3: चले
4: ले आ गया ना किडबैग।
5: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के

साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं, और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है, और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड, सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे, वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो

साहब मिला है 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने यह सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता

हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनकी रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक से अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए

समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का यह प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है।

इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये

0: अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। दिन के 11:32 हुए हैं। प्रस्तुत है मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता के नाम संबोधन का छत्तीसगढ़ी अनुवाद।
3: मोर देश के मयारुक रहवैया हो, जोहार। मन की बात मा एक घाव फेर आप सबो मन ले जुरिया के मुला अब्बड़ आनंद होवत हे। 2026 के आधा बछर पहावत हे। ये 6 महीना मा हमन मन की बात मा देशवासी मन के अनेक उपलब्धि मन के चर्चा करे हन। जून मा घलो देश ह कुछ ऐसने उपलब्धि प्राप्त करे हे जेन हर देशवासी ल गर्व ले भर देथे। ये सफलता मन देश के सुरक्षा औ आत्मनिर्भरता ले जुड़े हैं। हालिच मा मुला कोलकाता मा नौसेना ले जुड़े

एक ठन कार्यक्रम में सम्मिलित होए के मौका मिलिस। उहां INS दूनागिरी, INS संशोधक अउ INS अग्रय ल भारतीय नौसेना के बेड़ा में सम्मिलित करे गईस। ये जहाज मन के डिजाइन अउ उत्पादन तको सबो कुछ स्वदेशी हे। संगवारी हो, जून के महीना में विमानन क्षेत्र में घलो देश ह एक बड़का सफलता पाइस। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ह अपन पहली उड़ान पूरा करे है और इसने 40 ठन विमान भारत में बनाए जात हैं। एखर ले MSME और अंतरिक्ष क्षेत्र ला नवा ताकत मिलत है, रोजगार के अवसर बढ़त है और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प घलो मजबूत होवत है। इही महीना DRDO ह स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के घलो सफल परीक्षण करे है। इला DRDO के प्रयोगशाला और भारतीय उद्योग हिस्सेदार मन मिल के बनाए हैं। माने आज समुद्र ले लेके आगास तक हमार भारत ज्यादा सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनत है। संगवारी हो, जून मा एक ठन औ आयोजन होइस जेमे जम्मो दुनिया भारत के प्रयास ले जुड़ीस और ये कार्यक्रम रहीस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये पैत दुनिया के 2500 ले ज्यादा ठियामा योग के अनेक विविध कार्यक्रम होइस। हमार देश मा करोड़ों लोगन मन ठिया ठिया मा योग कार्यक्रम मन मा हिस्सा लेन। ये महीना अहमदाबाद मा आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप के घलो बड़ चर्चा होइस। एमे भारत ह कुल 114 पदक जीते है, एमाले 102 स्वर्ण पदक घलो सम्मिलित है। भारत ये प्रतियोगिता के पदक तालिका मा पहली स्थान मा रहिस। मैं सबो विजेता खिलाड़ी मनला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ। संगवारी हो, कोनो भी राष्ट्र के आत्मा ओखर मन के मन होते और जब वो देश के लोगन मन कोनो संकल्प लेते तक कोनो भी शक्ति वो मनला अपन लक्ष्य ले नहीं डिगा पाए। राष्ट्र निर्माण मा जनभागीदारी के ये ताकत भारत के बहुते बड़का पूंजी है और ये जनभागीदारी के हम बार बार अनुभव करत हन। संगवारी हो, पश्चिम एशिया में बने युद्ध के स्थिति ला देखत मैं देशवासी मन ले कुछ आग्रह करे रहे। मैं कहे रहे हूँ कि जिहां तक संभव हो कुछ बखत खातिर गोल्ड सोना बिसाए ले बाँचें। लोगन मन ले कहे रहे।

मोर अपील के वो मन न सिर्फ समर्थन करिन भलुक हर कोती ले ओमे अपन सहयोग करत हैं। मोला कईयों परिवार मन संदेशा भेज के अपन अनुभव साझा करे हैं। कतकोन परिवार मन ये तय करे हैं कि घर के बिहाव मा ये पैत सोना नहीं बिसाही, जरूरत पड़ी तब पुराना सोना ला रिसाइकिल करके नवा गहना बनवा लेही। कतकोन लोगन मन सोशल मीडिया में ये घलो लिखे हैं कि कैसे वो मन ये पैत विदेश यात्रा ला टाल दे हैं। संगवारी हो, कार के सामूहिक उपयोग ला लेके घलो लोगन मन अनेक अनुभव साझा करे हैं। जिन लोगन मन हर दिन एके दिशा मा अपन अपन वाहन ले जाते हैं, वो मन अब एक साथ जाए लगे हैं। लोगन मन हर संभव बस और मेट्रो के उपयोग करत हैं। एखर ले पेट्रोल और डीजल के बचत होवत है। यही रकम देश के आने आने हिस्सा मा प्राकृतिक खाद के खपत बढ़े के घलो खबर आवत है। संगवारी हो, मोला ये बात के खुशी है, ये वैश्विक आपदा के हम भारतीय मिल के मुकाबला करत हन। मोला विश्वास है जन भागीदारी के ये शक्ति हमन ला मजबूती देही, हमन ला सफल बनाही। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, हमार देश मा जन्मदिन बर बिहाव पारिवारिक कार्यक्रम होए के संगे संग जम्मो समाज के उत्सव घलो होते। हर परिवार चाहते कि ओखर खुशी मन आने मन संग घलो साझा होवे। लोगन मन पहुना मन ला उपहार घलो देते। संगवारी हो, महाराष्ट्र के नांदेड़ मा एक परिवार ह अपन खुशी बांटे बर ऐसन काम करीस जेन चर्चा के विषय बन गए है। यहाँ नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव मा पेठ कर परिवार रहते। ये परिवार ह सोचिस कि अगर खुशी बांटना है ता ऐसन जिनिस दिए जाए जेन मुश्किल बखत मा कोनो परिवार के सहारा बने। अपन घर मा बिहाव के मौका मा ये परिवार ह गांव के लगभग 3,500 लोगन मन बर दुर्घटना बीमा के व्यवस्था करिस। हर मनखे ला 1,00,000 रुपया के बीमा कवर दिए गईस। ये पहल के पाछू के भावना बहुते स्पर्श करने वाला है। परिवार ह देखे रहिस कि दुर्घटना के बाद परिवार मन ला आर्थिक कठिनाई के सामना करना पड़ते। ऐसे बखत मा एक ठन नानुक सहायता घलो बहुते बड़का संबल बन जाते। संगवारी हो, सरकार देश के करोड़ों परिवार तक सुरक्षा के कवच पहुंचावत है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत खाली 20 रुपया के सालाना प्रीमियम, माने खाली एक बछर के 20 रुपया के प्रीमियम, ओखर ऊपर 2,00,000 रुपया तक के दुर्घटना बीमा मिलते। अब तक ये योजना ले 58 करोड़ ले ज्यादा लोगन मन जुड़ चुके हैं। एमा करीबन 28 करोड़ हमार दाई बहनी बेटी मन हैं, माई लोगिन मन हैं। ये योजना ले पीड़ित परिवार ला अब तक जिन हिसाब मिले हैं 3,700 करोड़ रुपया ले ज्यादा के सहायता मिल चुके हैं। संगवारी हो, यही रकम ले प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना घलो उत्केच महत्तम के है। ये योजना मनखे के दुखद मौत होए मा ओखर परिवार ल 2,00,000 रुपया के बीमा कवर देते। एखर सालाना प्रीमियम खाली 436 रुपया है, माने एक दिन के बड़ मुश्किल 1.5 रुपया। ये योजना ले अब तक 27 करोड़ ले ज्यादा मनखे मन जुड़े हैं। एखर अंतर्गत देश के करीबन 11,00,000 परिवार ल करीबन 22,000 करोड़ रुपया के सहायता मिल चुके हैं। ये आंकड़ा बहुते बड़ा है। ये आंकड़ा मन के पीछे लाखों परिवार मन के अपन अपन कहानी है। कहूँ कोनो दाई ल लइका मन के पढ़ाई चालू रखे मा सहायता मिलीस, कहूँ कोनो पत्नी ला घर के जिम्मेवारी संभाले मा सहारा मिलीस। संगवारी हो, कईयो घाव बहुते बड़का सुरक्षा के शुरुआत बहुते छोटे राशि

थे, और जब डर मन मा हावी हो जाते तब मनखे सच ला देखना बंद कर देते। अंधविश्वास में बूढ़े लोगन मन फिर बिना तर्क के बिना सच जाने ऐसन फैसला ले लगते जेखर बड़ा नुकसान होते। उन्हें समाज में ऐसे लोगन घलो होते जिन विज्ञान अनुभव और तर्क के आधार में वो धारणा मन ला चुनौती देते। अंधविश्वास ले विश्वास तक के ये यात्रा आसान नहीं हो। आज मैं ऐसनेच एक सफल यात्रा के बारे में आप मन ला खचित बताना चाहत हूँ। संगवारी हो, असम मा एक ठन चिरई पाए जाते। वो चिरई के नाव है हर गिला। हर गिला एक दुर्लभ चिरई है। ये प्रकृति ला स्वच्छ रखे मा महत्तम के भूमिका निभाते। फिर असम के कुछ क्षेत्र मन मा लंबा बखत तक इला अशुभ माने जात रहिस। लोगन मन इला अपन तीर तखार मा देखना पसंद नहीं करत रहिन। कईयो घाव वो पेड़ मन ला घलो काट दिए जात रहिस जेमे हरगिला के घोसला बने होत रहिस। सोचाओ, एक ऐसन चिरई जिन पर्यावरण के सफाई मा सहायता करते उही हरगिला लोगन मन के डर के शिकार बन गए रहिस। इही दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन हा ये सब देखिन। वो लोगन के मन मा बैठे गलत धारणा ला बदले के संकल्प लेन। वो माई लोगिन मन ले गोट करिन। वो लोगन मन ला विज्ञान के आधार मा समझाइन। धीरे धीरे माई लोगिन मन ये अभियान ले जुड़े लगिन। फिर एक बड़का बदलाव शुरू हुईस। जेन चिरई ला कभू अशुभ मान के भगाए जात रहिस उही गांव के चिन्हारी बने लगिस। हजारों ग्रामीण माई लोगिन मन हर गिला ला बचाए बर आघू आइन। आज वो मन ला हर गिला आर्मी के नाव ले जाने जाते। ये माई लोगिन मन समाज के संग संघर्ष घलो करिन। समाज ला समझाए बर दिन रात काम करिन और अंधविश्वास ला पाछू छोड़ करके रहिन। वो मन दिखाइन कि जब सही जानकारी पहुँचाए जाते तो कईयों बछर जुन्ना सोच घलो बदल सकत है। संगवारी हो, मैं अक्सर कहता हूँ कि जेन खेलते वो खिलते। आज देश में ऐसन युवा मन के संख्या बहुत तेजी ले बढ़ा थे जेन मन खिलत घलो हैं और खिलत घलो हैं। पाछू के तुलना में अब कहूँ ज़्यादा युवा मन खेल ला कैरियर के रूप में अपनावत हैं। मुला नागालैंड के दो ऐसने प्रयास मन के बारे में जानकारी मिले है जेन बहुते दिलचस्प है। पहली प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाव सुन के आप मन ला खचित लगत हो ही। ये बहुते नानुक लैका मन के कोनो साधारण लीग हो ही। फिर ऐसा नहीं है। ये 5 ले 10-12 बछर के उम्र के नान नान लैका फूल असन लैका मन के एक असाधारण लीग है। और ये लैका मन के फुटबॉल खिलाड़ी मन के एक ऐसन लीग है जेन उनकर गतिला और प्रतिभा खातिर वो मन ला प्रेरित घलो करते और उनकर पहचान घलो बनाते। एकर शुरुआत नागालैंड के ज्यादा ले ज्यादा लैका मन ले फुटबॉल ले जोड़े के संग होए रहिस। 5 ले 12 बछर तक के लैका और नोनी मन एमे हिस्सा ले सकत हैं। ये लीग अब अपन 3 बछर पूरा कर चुके हैं। ये लीग के लैका मन के मन में बहुते अच्छा प्रभाव पड़े है। संगवारी हो, नागालैंड में एक ठन औ बने प्रयास हुआ थे। ओखर नाव है नागालैंड वुमन फुटसल लीग। हो सकत है आप मन पर ये फुटसल एक नवा नाव हो ही। मैं आप मन ला बतावत हूँ कि फुटसल ला इंडोर फुटबॉल घलो कहे जाते। एमे एक टीम में खाली 5 खिलाड़ी होते। खेल के मैदान घलो फुटबॉल के मैदान ले बहुत छोटे होते। यही कारण खिलाड़ी मन ला तेज फैसला करना होते। वो मन ला अपन तकनीक और कौशल के बेहतर उपयोग करना पड़ते। नागालैंड के महिला फुटसल लीग हमर बेटी मन ला अपन प्रतिभा दिखाए के बने अवसर देवत है। मैं ऐसन पहल खातिर नागालैंड के लोगन मन के सराहना करत हूँ।

ऐसने प्रयास देश के आने हिस्सा मन ल घलो प्रेरणा देते। संगवारी हो, ये तकनीकी के युग है, हर दिन नवा शोध होवत है, नवा नवा एआई नवाचार आघू आवत है। ये दौर में एक सवाल बहुते महत्वपूर्ण है, लोगन मन के रचनात्मकता ला कैसे बचाए रखे जाए। नवा तकनीक के संग आगू बढ़त हम अपन जड़ ले कैसे जुड़े रहन, ये सवाल के समाधान खोजे है नालंदा विश्वविद्यालय। हजारों बछर जुन्ना हमर नालंदा विश्वविद्यालय अब नवा अवतार के रूप में भारत के भाग्य गढ़त है। 2 बछर पाछू मोला नालंदा विश्वविद्यालय के नवा परिसर के लोकार्पण के अवसर मिले रहिस। नालंदा विश्वविद्यालय शास्त्रार्थ के हमर जुन्ना परंपरा ल फेर जीवंत करे है। शास्त्रार्थ खाली अपन बात रखे के माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन के एक अनुशासित प्रक्रिया है। एमे तर्क के संग तथ्य के संग अपन बात कहना बहुते जरूरी होते और ओमे आप मन के महारत होना चाहिए। आने मन के विचार ल धैर्य ले सुने और समझे के सीख घलो ये शास्त्रार्थ के प्रक्रिया ले मिलते। मुला खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय इला अपन दीक्षांत समारोह के हिस्सा बनाइस। एमे भाग लेवैया करीबन आधा विद्यार्थी मन आने देश ले आए रहिन। एक जुन्ना परंपरा ला आज के बखत ले जोड़े के ये प्रयास बहुते सराहनीय है। मैं एखर बर नालंदा विश्वविद्यालय ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ। मैं देश के आने विश्वविद्यालय मन ले घलो आग्रह करूँ कि वो मन ऐसने पहल में विचार करें। संगवारी हो, जड़ मन ले जुड़े रही के युवा मन ला नवा तकनीकी बर तैयार करे के एक ठन औ बने प्रयास होवत है। दिल्ली में स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कृत्रिम विद्वता और डाटा विज्ञान में बीटेक कार्यक्रम शुरू करैया है। ये आधुनिक तकनीक ला भारत के पारंपरिक ज्ञान ले जोड़े के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एखर ले भारतीय भाखा बनबर नवा एआई टूल तैयार करे मा सहायता मिली। हमर जुन्ना ग्रंथ और पांडुलिपि मन ला डिजिटल रूप में संरक्षित करे के काम ला घलो नवा गति मिली। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ला ये प्रयास खातिर गाढ़ा गाढ़ा शुभकामना देवत हूँ। संगवारी हो, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के आने आने हिस्सा तक पहुँचत है। हमर गीत संगीत और अध्यात्म ल दुनिया भर के लोगन मन जानत हैं और अपनावत हैं। भारत ले हजारों किलोमीटर दूर कैरेबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाव के एक देश है। वहाँ भारतीय मन के संख्या करीबन 100 है, शायद एखर ले घलो कम हो ही। एखर बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म ले जुड़े एक बहुते अच्छा प्रयास वहाँ होवत है। वहाँ स्पेनिश बोले वाला कुछ लोगन मन एक टीम बनाए हैं। ये टीम के नाव हैं ब्रह्म कमल डोमेनिकाना। टीम के सदस्य मन मिल के वैदिक साहित्य के अध्ययन करत हैं। वो मन वैदिक मंत्र मन के उच्चारण घलो सीखत हैं। वो मन ला एखर कोनो औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिले है, फिर वो मन ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन के वैदिक मंत्र मन के सही उच्चारण सीखे हैं। आज वो मन कईयों मंत्र के बहुते अच्छा जाप कर लेते हैं। इमे पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मयम सम्मिलित है। भारत ले अतका दूर रही के हमर परंपरा मन ला सीखे के उनखर ये प्रयास बहुते प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमेनिकाना वहाँ के सबो सदस्य मन ला उनखर प्रयास खातिर शुभकामना देवत हूँ। मैं ऐसने सबो लोगन के हृदय ले सराहना करत हूँ जिन भारतीय संस्कृति ला दुनिया भर में लोकप्रिय बनाए खातिर सरलग प्रयास करत हैं। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, मेघालय के चिन्हारी बादल मन ले है, सुंदर दृश्य मन ले है।

जेन मेघालय जाथे ओला उहां के लोगन मन के अपनापन घलो लंबा बखत तक सुरता रहिथे। फिर मेघालय के एक ठन और विशेषता है जेखर मैं आज मन की बात में आप मन ले चर्चा करना चाहत हूँ। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ वाला रूट। ये रूट ब्रिज मन के कहनी बहुते रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिन या कुछ बछर में नहीं बने, इला तैयार होए मा कईयों दशक लगते। रबर के पेड़ के जड़ मन ला धीरे धीरे दिशा दे जाते। ये जड़ मन ला जलधारा मन के पार ले जाए जाते। बखत के संग उही जड़ एक मजबूत ब्रिज के रूप ले लेते। ये ब्रिज मन के एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज हैं। बखत बीते के संग ये औ मजबूत हो जाते। एमे मेघालय के लोगन मन के सृजनशीलता दिखाई देते। इनखर पाछू कईयों बछर के धैर्य और प्रकृति के प्रति गहिर सम्मान है। ये ब्रिज बताते कि मनखे प्रकृति के संग मिलके कतको अद्भुत जिनिस बना सकत हैं। ये हमारे देश के, ये धरती के धरोहर हैं। अब भारत हा मेघालय के रूट ब्रिज मनला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क मा शामिल कराए बर आवेदन करे है। संगवारी हो, ऋतु परिवर्तन के कारण ये रूट ब्रिज मन के आघू कईयों चुनौती घलो आते। ऐसन बखत मा मेघालय के लोगन मन ये प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के जिम्मेदारी घलो बने असर निभाए हैं। पहली ये पता लगाना घलो आसान नहीं रहिस कि ऐसन ब्रिज मन के संख्या कतका है। स्थानीय लोगन मन खुदे एकर गिनती शुरू करिन। एकर बाद समुदाय मन ये ब्रिज मन के देखभाल के जिम्मेदारी घलो संभालिन। आज स्थानीय लोगन मन 120 ले ज्यादा रूट ब्रिज मन के देखरेख करत हैं। कुछ टीम मन हर बछर ये पुल मन के स्थिति के जांच करते। कुछ लोगन मन ह तीर तखार के क्षेत्र ला मजबूत बनाए खातिर नर्सरी घलो तैयार करे हैं। ये रकम के उनखर संरक्षण खातिर एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गए है। आप मन देखे हो ये बछर हेलीवार जिला पद्म पुरस्कार ले सम्मानित करे गए है। वो मन अपन जिंदगी के 50 ले ज्यादा बछर ये रूट ब्रिज मन के देखभाल में लगाए हैं। उनखर समर्पण हम सबो मन बर प्रेरणादायक है। संगवारी हो, आप मन कभू ये रूट ब्रिज के यात्रा करे हो ता ओखर फोटो सोशल मीडिया मा खचित साझा करो। आप मन के फोटो आने लोगन मन ला घलो मेघालय के ये अनोखा धरोहर के बारे मा जाने खातिर प्रेरित करही। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, हम सबो मन चाहथन कि हमार गांव साफ सुथरा होवे, हमार शहर सुंदर दिखे। फिर शायदे कभू रुक के ये सोचे जाते कि हमार तीर तखार मा जेन कचरा जमे होते ओला कौन साफ करते। ज्यादातर लोगन मन तो यही मान के चलते कि ये कोनो औ के जिम्मेदारी है और वो सफाई कर ही। फिर हमार बीच कुछ ऐसन लोगन घलो होते जेन अपन सोच ले हमन ला बहुत प्रेरित करते। मोला मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला के ब्यावरा के कुछ बहनी मन के बारे में जाने के मौका मिलिस। वो मन अपन तीर तखार मा बगरे प्लास्टिक कचरा ला हटाए के संकल्प लेन। ये नहीं सोचिन कि कोनो आ के बदलाव लही। वो मन खुदे शहर भर ले प्लास्टिक कचरा और खाली बोतल इकट्ठा करना शुरू करिन। धीरे धीरे ये प्रयास आगू बढ़त गईस और फिर वो प्लास्टिक ला इको ब्रिक्स में बदले जाए लगिस। आज उही इको ब्रिक्स के उपयोग सार्वजनिक स्थान मन ला सुंदर बनाए में करे जात है। राजगढ़ मा पाछू कुछ महीना मा सैकड़ों किलो प्लास्टिक ला रिसाइकिल करके ओखर बेहतर उपयोग करे गे है। माने जेन प्लास्टिक पहली शहर मा प्रदूषण फैलावत रहीस, आज उही ये बहनी मन के प्रयास ले शहर के सुंदरता बढ़ाए मा योगदान देवत है। मैं व्यावरा के सबो बहनी और ये अभियान ले जुड़े संगवारी मन ला बधाई देवत हूँ। मोर देश के

0: बैरुक रवैया हो। मोला कईयों लोगन मन पाती लिख के एक खास विषय में गोट करे के सुझाव भेजे हैं। ये विषय गणेश उत्सव ले जुड़े है। वैसे त गणेश उत्सव में अभी बने बखत बाकी है, फिर लोगन मन ह ये आग्रह करे हैं कि ये विषय में अभिचे बात होना चाहिए। असल में गणेश जी के मूर्ति बनाए के काम बहुत पहली शुरू हो जाते। मूर्ति बनाए वाला मूर्ति के व्यापार ले जुड़े लोगन मन अभी ले सक्रिय हो जाते हैं। यही पाए के मोर आप सबो मन ले एक आग्रह है, आप मन प्रयास करो कि आपके घर सोसाइटी या तीर तखार के ठिया मा गणपति बप्पा के जेन मूर्ति स्थापित हो वो हमर देश के माटी ले बने हो। वो हमर अपन कुम्हार और स्थानीय कलाकार मन के हाथ तैयार हुए हो। जेन लोगन मन गणेश जी के मूर्ति बनाते वो मन ले घलो मोर आग्रह है कि वो मन माटी के मूर्ति ल प्राथमिकता देवें, और जेन लोगन मन मूर्ति बिसाते वो मन घलो ये खचित देखें कि गणपति बप्पा के मूर्ति का के बने हैं और कौन देश में तैयार हुए है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ले बने मूर्ति खचित झन बिसाएं। संगवारी हो, माटी के मूर्ति पूजा के बाद सहज रूप में पानी में विलीन हो जाते। एखर ले हमार नदिया तरिया और पर्यावरण के रक्षा होते, हमार आस्था घलो बने रही थे और प्रकृति के प्रति हमार दायित्व घलो पूरा होते। जब हम स्थानीय कारीगर मन ले मूर्ति बिसाथन, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प ला मजबूत करथन। मोला विश्वास है कि ये पैत गणेश उत्सव मा और ऐसने हर उत्सव मा हम ऐसने सब्बो बात ऊपर खचित गंभीरता ले सोचबो और देश हित मा कदम घलो उठाबो। संगवारी हो, हमार देश के सबले बड़का शक्ति हमार देश के लोगन मन है। देश के आने आने हिस्सा मा होवत नानुक बड़का प्रयास हमन ला बहुत कुछ सिखोते। ये प्रयास बताते कि जब मन में संकल्प हो और समाज के साथ मिले तक कोनो भी बड़का बदलाव लाए जा सकते। आप मन अपन तीर तखार में होवत ऐसन प्रयास मन के बारे में मुला खचित लिखत रहो, अपन विचार और अपन सुझाव भेजत रहो। हो सकते आपके तीर तखार के कोनो नानुक पहल जम्मो देश भर प्रेरणा बन जाए। अवैया महीना हम फेर मिलबो, देशवासी मन के कुछ नवा प्रयास मन के चर्चा करबो। तब तक आप मन अपन और अपन परिवार के ध्यान रखाओ। और हाँ, जल संचय तक करने करना है, बरसात के पानी के एक एक बूंद ला हमला बचाना है। कैच द रैन, ये अभियान थोरको ढीला नहीं होन देना है। तब मोर विशेष आग्रह है वर्षा के बूंद बूंद पानी हम मिल के बचावन। गाड़ा गाड़ा धन्यवाद, जोहार।
1: मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश की जनता के नाम संबोधन का छत्तीसगढ़ी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप आज रात 8 बजे सुन सकते हैं। मीडियम वेव 305.2
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दिन के 12:15 हुए हैं।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: हेलो
6: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
5: फिर से
7: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
8: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
5: सर इतने कहाँ से?
7: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
5: सर, 2 लाख
8: क्या हुआ पापा?
5: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
7: अरे
5: काट दिया।
8: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
5: फ्रॉड?
8: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
5: तो पैसे गवाओगे।
9: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
8: पुलिस?
5: मिस सीमा
8: जी,
5: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
8: क्यों? लेकिन मैं
5: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
8: डिजिटल अरेस्ट?
5: 1 लाख दो, बच जाओगे।
8: इतने पैसे?
5: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
8: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
10: हेलो मम्मा।
9: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। लोक गाथाओं के कार्यक्रम रुसरुसा में प्रस्तुत है लोक गाथा आंधा राजा का 6वां भाग। गायिका है सुब्रीबाई।

पात पुरगु गाँवच लोग तो वात। ई तुमा पे जो तो धरत एवे ए तुमा पे जो तो धरत एवे जे ठेंगा तुमा धरत प्रभु कोड़की टंगिया धरत। ई कोदा भाटा ने जाओ तो एवे ई कोदा भाटा ने जाओ तो एवे जे जमा लोग गेला प्रभु पारा चलो गेला। ई राजा लोगो तो तियार होवत ई राजा लोगो तो तियार होला जे कोदा भाटन गेला प्रभु कोदा भाटन गेला। ई जो मालो को तो जून गेला ई जो मालो गो तो जून गेला जे पारद जा तोराए प्रभु पारद जा तोरवाए। ई खूबे दिन तो होली बोले ए खूबे दिन तो होली बोले जे जा तो जिया दखा दलोर नाई जा तो जिया दखा दलोर।

तोवात प्रभु बुढ़ा महादेव तोवात। चली लमरु न जासत हेबे चली लमरु न जासत हेबे जे जंगल पाड़ी बाटे प्रभु जंगल पाड़ी बाटे। जावत जावत जासत हेबे जावत जावत जासत हेबे जे रान बन बाटे प्रभु जंगल झाड़ी बाटे।

जाए, प्रभु हरि बोलू न जाए। ईरान बाटे तो जास तेबे, एरान बाटे तो जास तेबे, ए चोली ल मरु न जासत, प्रभु धाड़ी लो मुन जासत। ई जावत जाओ तो जास तेबे, ई जावत जाओ तो जास तेबे, जे बिजली बन बाटे, प्रभु

गेला हिमा देव राजा तो गुपुन गेला जे कस न हमुन जासत प्रभु कस न हमुन जासत। मैं कहाँ जाए तो बोलत एवे ई कहाँ जाए तो बोलत एवे जे बूढ़ा महादेव तो बात प्रभु बूढ़ा महादेव तो बात। ई लोट लोटा तो पानी भिजत ई लोट लोटा तो पानी भिजत तो बूढ़ा महादेव तो बात प्रभु बूढ़ा महादेव तो बात। बेसरा धरू न रहत एवे ई बेसरा धरू न रहत एवे जे महादेव राजा तो बात प्रभु महादेव राजा तो बात। ऐसी तो काजे तो छाड़ू न दिला ऐसी तो काजे तो छाड़ू न दिला जे बेसरा छाड़ू न देवत प्रभु बेसरा छाड़ू न देवत। ईटे मोटे मो तो गागे बेसरा ईटे मोटे मो तो गागे बेसरा जे बेसरा गागु न जाए प्रभु बेसरा गागु न जाए। ई जो न बाटे तो वासे ये वे ई जो

जाए ये भेजे बेसरा बोले जाए प्रभु बेसरा बोले जाए। टेवा टेवा तो गगते जाए टेवा टेवा तो गगते जाए जे बेसरा बोले जाए प्रभु बेसरा बोले जाए। बेसी मुंडा ने गेली एवे ए बेसी मुंडा ने गेली ए भेजे बेसरा बोले गेली प्रभु बेसरा बोले गेली। टेवा टेवा तो गागे एवे टेवा टेवा तो गागे एवे जे बेसरा गागुना जाए प्रभु बेसरा गागुना।

आजा गेली प्रभु काने ओ आजा गेली। एनी करुणायाले तो गेली एवे, एनी करुणायाले तो गेली एवे, जे बेसरा के दो खुना गेली प्रभु बेसरा के दो खुना गेली। इ हरि हरि जय राम राम, ए हरि हरि जय राम राम, मैं राम बोलू न जाए प्रभु हरि बोलू न जाए। इटपके बेसरा थपली एवे, ए टपके बेसरा थपली एवे, जे बाली गमरा धरली प्रभु बाली गमरा धरली। ई घरे बोले तो नीली एवे, ये घरे बोले तो नीली एवे, जे बाली गमरा नीली प्रभु बाली गमरा नीली। इने उन बोले तो ढाकुन दिली, एने उन बोले तो ढाकुन दिली, जे बाली गमरा तो वाय प्रभु बाली गमरा तो वाय।

सीत गाजे तो छाडू रलो, ए सीत गाजे तो छाडू रलो, जे बेसरा छाडू रे प्रभु बेसरा छाडू रे। इसी तो छाडू न गेली एबे, इसी तो छाडू न गेली एबे, जे बेसरा डगराते भूले प्रभु बेसरा डगराते भूले। ई महादेव तो डगराए एबे, ई महादेव तो खोजे एबे, जे मचो बेसरा प्रभु एबे मचो बेसरा बोले। ई मचो बेसरा कहाँ गेली, ई मचो बेसरा कहाँ गेली, मैं कहाँ खोजे बोले प्रभु कहाँ खोजे बोले। ई जा तो जिया दो नाई मीरे, ई जा तो जिया दो नाई मीरे, जे थकुन जाले जाओ प्रभु थकुन जाले जाओ। ई कोनी लगे तो नाई एबे, ए कोनी लगे तो नाई एबे, दे चेड़े सुरुंद नाई प्रभु चेड़े सुरुंद नाई। ई डगरन बोले तो थकुन गेला, ए डगरन बोले तो थकुन गेला, जे काही नाही मीरे प्रभु काही नाही मीरे। ई गाँव चलो गो तो जाते गेला, ई गाँव चलो गो तो जाते गेला, जे रायत लोग तो वात प्रभु

வாய் உறவு புலமாதேவோ தோவாய். இடாண்டே டாண்டே தோ கோஜேயே, இடாண்டே டாண்டே தோ கோஜேயே, ஜே பாரா நாஹி போலே புறவு ঘরো নাহি বলে, হি কোন বাটে মে খোজে বলে, হি কোন বাটে মে খোজে বলে, যে বুড়া মহাদেব বলে প্রভু বুড়া মহাদেব বলে, ই ডাণে ডাণে তো বুলে এবে, ই খরে খরে তো বুলা এবে, যে জঙ্গল বাড়ি বাটে প্রভু জঙ্গল।

प्रभु बूढ़ा महादेव जाओ। ई महादेव के दो के बेसरा, ई महादेव के दो के बेसरा, जे टीरिंग गागे प्रभु, टीरिंग गागे।

वातो सूना प्रभु मचो वातो सूना। इकाया बोलू न बोलत एवे इकाया बोलू न बोलत एवे जे टूरी टेंडकियात प्रभु टूरी टेंडकियात। इनानी बोले तुम टूरी टेंडकी इनानी बोले तुम टूरी टेंडकी मैं गोटो पूछू न जाएंदे नानी बातो पूछू न जाएंदे। इनानी बोले तुम टूरी टेंडकी इनानी बोले तुम टूरी टेंडकी जे झूठो नाही गोट्यावा नानी झूठो नाही गोट्यावा। इमोचो बेसरा तो बोले नानी इमोचो बेसरा तो बोले नानी जे ये ताए बोले आसे प्रभु ये ताए बोले आसे। हिमोचो बेसरा तो दिया नानी हिमोचो बेसरा तो दिया नानी जे बुढ़ा महादेव बोलत प्रभु महादेव राजा बोलत। हि तू चो बेसरा ये ता बोले हि तू चो बेसरा ये ता बोले जे नियाए बोलू ना बोलत प्रभु नियाए बोलू ना बोलत। ई सोना सोना तुम्ही टूरी टेंडकी ई सोना सोना तुम्ही टूरी टेंडकी मैं बातो पूछू न जाए प्रभु गोटो पूछू न जाए। ई मोचो बेसरा गगे से बोले ई मोचो बेसरा गगे से बोले जे बेसरा गागु न जाए प्रभु बेसरा गागु न जाए। ई बाटो देवना ने गेलो ये बे ई

ही लगे जाऊ न बसत एबे हिला पी जाऊ न उबत एबे जे राजा लोग तो बात प्रभु राजा लोग तो बात खिंडी कवल तो ओलत एबे खिंडी कवलो तो ओलत एबे जे महादेव राजा तो बात प्रभु महादेव राजा तो बात ही बाली गौरा तो दखे एबे ही बाली गौरा तो दखे एबे जे महादेव राजा के आए प्रभु महादेव राजा के आए ईदो कुना भाती तो गेली मने ईदो कुना भाती तो गेली मने जे सुना बोलू न बोले प्रभु सुना बोलू न बोले।

पोलंग थाने तो बोस तये बे ई पोलंग थाने तो बोस तये बे जे महादेव राजा तो वात प्रभु बूढ़ा महादेव तो वात।

पाए प्रभु बाली गाँव रातोवा। ये सुनो नानी तुई बाली गाँवरा, ये सुनो नानी तुई बाली गाँवरा, जे मचो बेसरा देसो प्रभु मचो बेसरा देसो। असनी बोलू न बोलत एवे, असने बोलू न बोलत एवे, जे महादेव राजा तो वात प्रभु बुढ़ा महादेव तो वात। ई टूरी टेंडा की जानत एवे, ई टूरी टेंडा की जानत एवे, जे जानू न जाले जावत प्रभु

प्रभु महादेव सुनु न जावो। इटूरी टेढ़ा की सुनत एबे, इटूरी टेढ़ा की सुनत एबे, जे महादेव राजा सुने प्रभु महादेव राजा सुने। इमे घर बोले छांडे बोले, ई घर के बोले कोसन छांडे, जे महाला बोले आसे प्रभु।

ई असने बोलू न बोले ये भेजे बाली गौरा तो आए प्रभु बाली गौरा तो आए।

0: लोक गाथाओं के कार्यक्रम रुसरुसा में अभी आप लोक गाथा आंधा राजा का छठवां भाग सुन रहे थे। गायिका थी सुबरी बाई। श्रोताओं, इस लोक गाथा का अगला भाग आने वाले शुक्रवार को प्रसारित किया जाएगा।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शहरी महिलाओं का साप्ताहिक कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को डॉक्टर मधु जैन का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन में। और बहनों, आज की हमारी चर्चा की शुरुआत हम इन पंक्तियों से करते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। महफिलों में मुस्कुराना मेरा मिजाज बन गया, महफिलों में मुस्कुराना मेरा मिजाज बन गया, रात की तन्हाइयों में चुपके आंसू बहाना एक रिवाज बन गया। दिल के जख्मों को कभी चेहरे से होने न दिया जाहिर, दिल के जख्मों को चेहरे से कभी होने न दिया जाहिर, और जिंदगी में यही मेरे जीने का अंदाज बन गया। बहनों, समझदार को इशारा काफी है और आप सभी तो मेरा इशारा बखूबी समझती भी हैं, और इन्हीं में छुपा हुआ है आज की हमारी चर्चा का विषय। आइए आपके इंतजार को खत्म करते हैं और बताते हैं कि आज हम किस विषय पर आपसे बात करेंगे। और आज का विषय है उम्र दराज महिलाओं का अकेलापन। पर बहनों, यहां पर हम ये कहेंगे कि यदि हम इसे अपनी ताकत बना लें तो हमारी उपलब्धियों की सूची बढ़ जाती है। और बहनों, आप अकेलेपन को कभी भी कमजोरी मत समझिए, ये तो खुद को तराशने का अवसर बनती है। क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में जब हम अपनी जिम्मेदारियों के बोझ से निवृत्त होते हैं तो सभी को एकाकी या अकेलेपन का डर तो सताता है, और कई बार तो महिलाएं अवसादग्रस्त भी हो जाती हैं। किंतु स्व मूल्य को कमतर न आगे, क्योंकि यह स्त्री का सुलभ स्वभाव है और हमारी परवरिश में ये शामिल भी है। तो बहनों, हम आज से यही कहेंगे कि यही तो खूबसूरत वक्त है जो आपको भीड़ से अलग बनने का, एक नई पहचान देने का अवसर देता है। और अकेलेपन से डरने की बजाय उसे अवसर में बदले, खुद को जानने और खुद से बातें करने का एक ऐसा अवसर जहां आप खुद को तराश सकते हैं। क्योंकि बहनों, यकीन मानिए, तन्हाई की इन खामोशियों में भी एक शोर होता है, और जो इंसान अकेले में सीखता है वही सबसे बड़ा सिकंदर होता है। पूरी उम्र बीतती है हमारी दूसरों के निर्देशों पर चलते, तो कभी घर की खुशी के

फिर चुप रहना। ये हम सभी स्त्रियों की कहानी है, पर सबके साथ रहते हुए भी अंदर से अकेलापन, कई बार इसे हमें स्वयं ही परिभाषित करना होता है और इस परिस्थिति से बाहर आना भी हमें पड़ता है, क्योंकि आपसे ज्यादा आपको और कोई नहीं जानता और आपके लिए ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप उसे किस तरह खुश रखती हैं, यानी आपकी वो शख्सियत जिसके साथ आपने पूरी जिंदगी बिताई है और वो है स्वयं आप। तो अकेलेपन से डर कैसा बहनों? और कई बार तो ऐसा भी होता है ना, हम आपको ले जाते हैं और हम आपको कुछ गुनगुनाने का, कुछ सुनने का, कुछ थिरकने का अवसर भी देते हैं। और जो बात हम आपको दिख रहे हैं आज संगीत की सुरली तान से समझाते हैं, समझिए कि जो सामने होकर ये भी दिल के इतने करीब होने के बाद भी इस व्यक्ति को हम समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, वो एक अजीब सी कसमकश सामने आती है।

को गीत संगीत की दुनिया की ओर भी ले चलेंगे, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है और जितना चंचल है उतना ही कोमल भी, क्योंकि इसे हम सुरों की तरह साध सकते हैं। इसलिए बहनों, हमें अपने आप को हमेशा सकारात्मक और ऊर्जा से परिपूर्ण रखना चाहिए। पिछली बातों के दुख अवसाद इन्हें पीछे छोड़कर वर्तमान में खुद को जीना सिखाएं। हर वो काम करें जो आपको खुशी देता है, और कुछ ऐसा भी करें जो दूसरों के लिए भी काम आए। और जब आप ऐसा करते हैं, खुद जीकर दूसरों को भी जीना सिखाते हैं, तो आपको स्वयं एक सुखद अनुभूति होती है और संतुष्टि भी। और हमेशा खुद को अपना सबसे ईमानदार साथी समझें और अपने आप को महत्व भी दें, क्योंकि जब तक आप स्वयं को महत्व देना नहीं सीखते हैं, तब तक दूसरा इसे महत्व देना नहीं सीखेगा। बहनों, खुद का तात्पर्य, कहने का तात्पर्य ये है कि खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी भी सबसे पहले आपकी ही है, और जब तक आप इसे नहीं कहेंगी तब तक ये नहीं होगा। और बहनों, हमें स्वयं को खुश रखना है तो हमें ना कहने की कला भी सीखनी चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में स्वयं को दुखी करते हैं और नुकसान हमारा होता है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। और बहनों, हम चारों ओर देखें तो इतनी खूबसूरत प्रकृति है, बेहतर रिश्ते और अच्छे दोस्त हैं जिनके साथ हम खुश रह सकते हैं। और हमें हर रिश्ते को परिभाषित करने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में हमने सारी जिंदगी सारा कुछ देख लिया है, अनुभव जीवन का। और बहनों, जब मौसम भीगा हो, खुशनुमा हो, तो प्यार का रंग भी चढ़ता है और मन के इंद्रधनुषी रंगों को सपने भी सजोता है, उनको बुनता भी है और उनको जीता भी है। तो भला आप क्यों अपने आप को रोकती हैं इस खुशनुमा मौसम में खुश होने का अवसर। आइए सुनते हैं फिल्म सितमगर का ये गीत, आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

भाई बहनों, रिश्तों को संजोने की कला भी हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि आज के भौतिकवादी इस समय में जहां रिश्ते भी स्वार्थ की डोर से बनते हैं, वहीं निष्ठावान व्यक्ति और उनकी प्रीत की डोर को थामे रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक निष्ठावान मित्र रिश्ता बहुमूल्य हीरे की तरह होता है और उनका साथ, प्रेरणा और विश्वास आपको कभी भी अकेला महसूस होने नहीं देते। और बहनों, सबसे बड़ी बात तो ये लोग आपके जीवन को सदा जीवंत बनाए रखते हैं। और बहनों, निष्ठावान रिश्तों की जीवंतता को बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। लोग क्या कहेंगे, इस डर को अपने दिमाग से निकाल करके और उन रिश्तों को भी एक मजा दीजिए। एक निष्ठावान मित्र रिश्ता बहुमूल्य हीरे की तरह होता है और उनका साथ, प्रेरणा और विश्वास आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देते। ये लोग आपको सदा जीवंत बनाए रखते हैं। और बहनों, लोग क्या कहेंगे, इस वाक्य को भूल करके आपको अपने जीवन में ऐसे निष्ठावान रिश्तों की जीवंतता को बनाए रखना है, और ये जिम्मेदारी भी आपकी ही है। आइए हम आपको सुनवाते हैं अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म ये वादा रहा से। किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वरों में संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और गीत लिखा है गुलशन बावरा ने।

बहनों, एक बात आप गांठ बांध लें, क्योंकि सबको सुधारने की कोशिश में आप स्वयं को ना बिगाड़ लें। बिगाड़ने से हमारा तात्पर्य है कि आप अपने आप को इमोशनली या मेंटली या फिर फिजिकली ना अपने आप का अपना स्वास्थ्य खराब कर लें, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो या शारीरिक स्वास्थ्य है। क्योंकि जब आपकी मन स्थिति बिगड़ती है तो आपका शरीर भी आपका साथ नहीं देता है। तो जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उनसे दूर होना सीखिए। और ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आप सिर्फ अपने एक्शंस या आप जो करती हैं उसके लिए जिम्मेदार है, दूसरे क्या करते हैं इसके लिए जिम्मेदारी आपकी नहीं है। तो दूसरों से अपने आप की तुलना करना बंद करिए और अपने लिए सेल्फ एप्रिसिएशन यानी स्वयं को भी आप एप्रिशिएट करना सीखिए, इसे आप बधाई देना सीखिए कि आपने जीवन में बहुत अच्छा किया है। और बहनों, सेल्फ एप्रिसिएशन को जब आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं तभी तो आपका व्यक्तित्व भी निखरता है, और जब व्यक्तित्व निखरता है तभी प्रकृति की खूबसूरती का सही आनंद आप ले पाती हैं। और बिल्कुल आपने सही समझा हमारा इशारा कि आप जब अपने जीवन में बाहर लेकर आएंगी तो दूसरों के जीवन में भी बाहर महकेगी कुछ इस तरह से, जैसे हमने लिया है एल्बम जीवन मुक्त से किशोर कुमार के स्वर में। बहुत ही प्यारा सा गीत लिखा है गीतकार योगेश ने और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

बहनों, प्रेम तो दुनिया की वो शाश्वत अनुभूति है जो हर रिश्ते में पलता है। रिश्ते अनेक हैं, किंतु उनमें पलने वाला प्यार एक है, उसकी भावना एक है, जो कई रिश्तों को, कई एहसासों को जन्म देता है और सिखाता है जीवन में मर्यादा, कर्मठता और नैतिक मूल्यों का आधार भी। और बहनों, जब तक हम अपनी संस्कृति को, अपने व्यक्तित्व को, अपनी परंपराओं को अपने व्यक्तित्व में शामिल नहीं करेंगे, हम अपने आप को एक पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में विकसित नहीं कर पाएंगे। आज विज्ञान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, किंतु धर्म और अध्यात्म का एक अलग महत्व है। और अंततः व्यक्ति को जब शांति की अनुभूति करनी होती है तो वह धर्म की शरण में ही जाता है, तब उसे योग और मेडिटेशन ही दिखाई देते हैं। इसीलिए हमारा भारतवर्ष जो है और भारतीय दर्शन जो है वो पूरे विश्व में विश्व गुरु की तरह स्थान रखता है। और बहनों, जब हम ऐसी संस्कृति का परंपरा हैं, ऐसी संस्कृति का अभिन्न अंग हैं, उसकी अनूठी परंपरा का हिस्सा हैं, तो हमारे व्यक्तित्व को और तराशने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इसलिए उम्र के इस पड़ाव में भी कभी भी अपने आप को अकेला ना समझे। और यदि आपको अकेलापन लगता है तो आप अपने आप से प्रश्न जरूर करिए और उसका उत्तर भी स्वयं ढूंढिए कि आपको किस साथी की जरूरत है। वो साथी जो आपको प्यार करे, या वो साथी जो आपके साथ जीवन बिताए, या वो दोस्त जो आपके साथ रह करके काम करे, या वो लोग, वो रिश्ते जो आपको खुशी देते हैं। प्रश्न बहुत से हैं, समस्याएं बहुत सी हैं जीवन में, किंतु सबका समाधान एक ही है, आपका सकारात्मक दृष्टिकोण और कड़ी मेहनत। ये दो चीजें अगर आपके जीवन में हैं, आप अपने दिनचर्या को संयमित बनाएं, दैनिक चर्या को एक अनुशासन में ढालें और उन सभी कामों को करें जो आपको खुशी देते हैं, वनस्पत उन कामों को करने की जो दूसरों को खुशी देते थे, और जिम्मेदारियों को डालने की कोशिश कीजिए। घर परिवार की जिम्मेदारी यदि आपने 25 वर्षों से उठाई है तो अब आप बेटे बहू पे या अन्य सदस्यों पे उसकी जिम्मेदारी डालिए। वो लोग भी अपना परिवार बखूबी संभालना जानते हैं। और आप छोटा सा ब्रेक लीजिए और अपने आप के लिए बहुत सारे कामों को ढूंढिए जो आपके लिए इंतजार कर रही है, उस खिड़की की ओर इशारा कर रही है, उस उजालों के किरण की ओर जहां आपको बहुत कुछ करना है, जो सारी उम्र आप कर नहीं पाई थी जिम्मेदारियों के चलते। तो बहनों, आइए आज हम इसी बात को, जैसे कि बहुत दूर होके भी आप हमारे एहसासों के करीब होते हैं, इस माइक्रोफोन के जरिए सुनते हैं फिल्म नामुमकिन का ये गीत।

बहनों, जब आप खुश हो, सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। स्वस्थ मन स्वस्थ तन का द्योतक है, इसीलिए भारतीय संस्कृति में योग, ध्यान और व्यायाम को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और आज के पूरे इस कार्यक्रम में हमने आपको सिखाया है और हमने ये जाना है कि प्रेम दुनिया की वो शाश्वत अनुभूति है जो हर रिश्ते में पलता है। और रिश्ते अनेक हैं, किंतु उनमें पलने वाला प्यार एक है जो कई रिश्तों एहसासों को जन्म देता है और सिखाता है जीवन में मर्यादा, कर्मठता और नैतिक मूल्यों का आधार भी। और इसी संदेश के साथ आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें आपकी बहुमूल्य राय से जरूर अवगत कराएं। हमारा पता है घर आंगन कार्यक्रम द्वारा उपनिदेशक आकाशवाणी जगदलपुर 3494001 जिला बस्तर छत्तीसगढ़। और बहनों, आप SMS या मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें अपने संदेश प्रेषित कर सकती हैं या फीडबैक सुझाव दे सकती हैं। हमारा मोबाइल नंबर नोट करें 94255 90590। और अब कार्यक्रम से डॉक्टर मधु जैन को दे अनुमति। नमस्कार।

0: अभी शहरी महिलाओं के कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण किया गया। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दिन का 1 बजने को है। अब हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने

0: से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशेल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात

0: कटनी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब सुनिए कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चुगोट।
1: दादर भाइयों, मेवल पोरिकपोड इते गोआमुंग कुबे लाप तोंदमो एतने नोडेल एके मेवा पेल आमुंग कुबे लाव चीरन जिनिसुलाय चेंगे चेंगे एके आम उंडान तिंदान सीजुल बेले हाय इते गो मेवा पेल उनोडेल एके आम मेन तो नोयकुट बेले तूलोमो इतनी एके चंद्रान पाप कुलुक च्यान कुलुक मुत्तक मुर्ता चिलुक आरु नोरान लोगुक बेले मेवा पेल खूबे अच्छा लाए।

0: ଇଦିନ ଚେଙ୍ଗେ ଚେଙ୍ଗେ ଏକେ ବାନିଂ ବାନିଂ ତୁ ଲାଉ ଚିରାନ୍ ଜିନିଷୁଲ ବେଲେ ବାନା କରତମ ଆରୁ ୱିଡ଼ିକିଲି ଏକେ ନିକଲେ ନିକ ଲାଭ କାମା କରତମ ଇ ତୋ ହିସାବତି ମେୱେଲ ପରିକୁଲି ଆଗେର ଲେ ଆଗେର ଆମ ଲାଭ ପାତୁ ଅର୍ତ୍ତମ ଇଦୁକ ଲେକ ସାହାଯ୍ୟରାନ ଆଏ କି ପଦ ବକଡ଼େଲିନ ଆରୁ ଡାଡ଼ା ବକଡ଼େଲିନ ଏଲେ ଗେଲେ ବେଲେ ଇଡ଼ା ନ ଆଏ ପଦ ବକଡ଼େଲିନ ଏଲେ ଗେଲେ ଇଡ଼ ଡେକେ ବାସ ଖମଚି ଇରାନ ଆଏ ଆରୁ ଇଦିନ ଚେଙ୍ଗେ ଚେଙ୍ଗେ ଏକେ ସାଫ ସଫାଇ ବେଲେ ଦିଆନ ଚିରାନ ଆଏ ମେୱା କାଟାନ ଡାକ ବେଲେ ପେଲ ପିଦୁରାନେରା କିଣ୍ଡିକ ସାଫ ସଫାଇ ଲେଗାଡ ମେୱା ପେଲ ପିଦୁରାନ ଆଏ ଇ ତୋ ସାଫ ସଫାଇ ପାଟତି ମେୱା ପେଲ ପିଦ ଡେଲେ କେ କୁବେ ନେଙ୍ଗେତ ମିନ୍ଦାନ ଆଏ ଇଦିନ ୱିଡ଼ିକିଲି ଏକେ ନିକଲେ ନିକ ଆମ ଲାଭ କାମା କରତମ ଦାଦେର ବାଇ ହୋ ମେୱା ପେଲ ଚିରାନ ମେୱେଲ ପିଦିରୁଲ ବେଲେ ଜାନୁର ଇ ପେଲ ଚିରାନ ମେୱେଲ ପିଦିରୁଲାଏ ଯମୁନା ପାରି ବିଟଲ ମାରୱାଡ଼ି ସୁର୍ତି ଇ ଜାମା ପେଲ ଚିରାନ ମେୱେଲାଏ
1: अभी कृषि समय की बेड़ाखाट चौगोट का पुनः प्रसारण किया गया। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं।
2: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: मीडियम वेब पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:10 हुए हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। दूरियों से भी रिश्ते जब दिल से निभाए जाते हैं, कागज के छोटे छोटे खत भी फूल बन मुस्काते हैं। इन्हीं अपनत्व भरे फरमाइशी खतों के साथ हम हाजिर हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम श्रोता सुमन को लेकर। कार्यक्रम से जुड़े सभी श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त मनिंदर सिंह देवगुन का प्यार भरा नमस्कार।

0: और अलका याग्निक की। शब्द रचना इंदिवर की थी और तर्ज बनाई थी राजेश रोशन ने। इस गीत की फरमाइश आप सबने की थी छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। आप हैं जूना पानी सनावद मध्य प्रदेश से कालू सिंह बडोले, सीताराम बडोले, हीरालाल बडोले, तेर सिंह डावर, साहिल हरिओम, विशाल, सुमन, रमा और कंचन। गांधीनगर गुजरात से इस गीत को सुनना चाहा था सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़ और विशाल के साथ निशा राठौड़ ने। आप हैं साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से गुरमीत सिंह मित्ता, चितलवाड़ी अकोला से अमोल इंगले, अर्चना, सर्वेश, अधीरा और उनके साथ ही। आप शेरकोट जिला बिजनौर के श्रोता मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर। मोर टक्का माफी जिला खंडवा मध्य प्रदेश के श्रोता हैं जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य मानस और मन पटेल। ये श्रोता हैं फकीरा रेडियो श्रोता संघ जिला बीड़चे से रंजीत कुमार, नामदेव धोरात, रितेश, आकाश, रश्मि, रंजना और गबरू पहलवान थोरात। दयानंद नगर नांदेड से हैं प्रकाश जैन, तिरुपति नगर से लातूर के श्रोता हैं संगीता जैन, सूरज और पीआर जैन। रोहांसी के श्रोता डगेश्वर राम साहू, धनश्याम साहू, नूतन और गौरव साहू। बुरसुंदा से चंद्रप्रकाश, चिराग सेन, संतोषी, नेहा भगवती और राजेंद्र सेन। संबलपुर कांकेर के श्रोता भागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी, ईशिका और तेजल यादव। महाराष्ट्र बीड़ शहर के श्रोता हैं प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और रामनिवास अग्रवाल। बुरगहन छत्तीसगढ़ के श्रोता राम दुलारी प्रजापति, राम शरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशि कांता प्रजापति, फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन और गजेंद्र कुमार चंदन। आप सभी ग्राम सौंगा मगरलोड धमतरी से हैं। लक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और मेहराज जहां। भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर, सोनाडी से सुब्रत चौधरी और बीबी अनिशा, रायपुर से नीलू मेघ, डॉक्टर वंदना और बिट्टू कुमार। मोहाली पंजाब से इस गीत की फरमाइश बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा ने भी की थी। और गीदम रोड जगदलपुर से टी राजू राव, टी सुनील राव, शिवानी राव, कृष्णा तुलसी राव, भाग्य लक्ष्मी राव, आनंद राव, मनीषा, श्रवण कुमार, नानू, श्रुति, कव्या, राशिका और राधिका। शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्र्यंबिका, लीना अंशुमला, आशुतोष अंगारे, आप सभी हैं बंगला मटिया बालोद से, भर्रेटोला डोंडी बालोद से, नमित कुमार गौतम, पीहू नीतू, प्रियंका और मुरली की गौतम। रायगढ़ के श्रोता रोहित, अंश और ऋषभ लक्ष्मी। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद बोरगांवकर और सुभाष बोरगांवकर। ये श्रोता हैं शाहूनगर यवंतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, साथ में हैं रोशनी और बेबी प्रियांशी। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, राधिका, तुषार तामुरिया, डॉली, मास्टर अल कबीर, बेबी पूजा तामुरिया और प्रभा देवी तामुरिया। और गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता।
1: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
0: श्रोता सुमन कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश करताओं के नाम हैं जरूर वरुड़ महाराष्ट्र से बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानेरे और कार्तिक के साथ युवराज। आप हैं उत्तर बस्तर कांकेर भानुप्रतापपुर से प्रकाश तीरसुनिया, विकास, नैतिक, मुकुल, दिव्यांश, धैर्य और आराध्या। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर।

गांव जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, बिमला देवी, शंभुदयाल खटक, भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेन्द्र कुमार वर्मा, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन, ऊपरकोट मोहल्ला चौखनरी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निकाहत परवीन अब्बासी, शहनवाज फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी, यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से, विनोद खड़से, गुमला झारखंड से एसएम जावेद, शाह गुप्ता अंजुम, जेल रोड रायगढ़ से हैं नरेंद्र कुमार तिवारी, बागबहरा भदरसी से हैं पन्ना लाल सेन, तारा सेन, कौशल और खुशबू सेन, गोरबा बिलाईगढ़ से देवलाल कशकामिनी और यशकर्ष, कुल्हारीकोट पांडुका से नरोत्तम कश्यप, नीतू कश्यप, मोहनीश कश्यप और अनुराग कश्यप, कस्बा नोहर राजस्थान से नरेंद्र सुधार, मनोज सुधार और हिमांशु सुधार, इच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, रीचा गायत्री, भीषण दास मानिकपुरी, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय और यहीं से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति के साथ नवनीत राय, भाटापारा से हैं विष्णु साहू, पूरब वीरा, योगेश्वरी कुमकुम और हर्ष साहू, उत्तराखंड जसपुर से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर, सुभाष चक्रधारी, श्रीमती कविता चक्रधारी के साथ मुस्कान और अनुष्का चक्रधारी, आप सभी कोंडागांव भंडार सिवनी के श्रोता हैं। लेवई से हैं गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। ये श्रोता हैं बाजार भिलाई के श्रोता सुशील जैन, कल्पना, सौरभ, शुभम और शौर्य जैन, ततरेंगी से मनोज कुमार साहू, सूरज कुमार और सागर कुमार साहू, हथखेरा भाटापारा से पंचू यादव, दादू यादव, कमलेश साहू, हारेंद्र और सुशील बेलसुपुरिया, ये हैं बावली से, परसाटोला अंबागढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसिया, सुलोचनी मसिया, खुमेंद्र मसिया, तुषारणी मसिया और यहीं से हैं रिजवान खान, आयशा, सबियानस और रेहान, कृष्णानगर टीवी सेमिनरी हिल्स नागपुर से नाना डोंगर दीवे, रमाताई डोंगर दीवे, सीमाताई डोंगर दीवे, रीमाताई डोंगर दीवे, दीक्षाताई और राहुल डोंगर दीवे, आप हैं झामरून से दुर्गा प्रसाद जोशी, गंगाधर, गजानन, सज्जय, आशीष, पृथ्वीराज, कुमारी साध्वी के साथ गणेश हारगांवकर, घंटाघर चौक खंडवा के हमारे श्रोता हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष्ण श्रीवास्तव, हीरावा फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, की सुतासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले, ये श्रोता ग्राम बेलर गांव सिहावा से हैं मिथिलेश देवांगन, मधु, हिमांशु और अंकित देवांगन, बेमेत्रा से सुरेश सारथी और पूर्णिमा सारथी, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा, एयरपोर्ट रोड वंदनगर इंदौर से आप हैं कुमारी वंदना मराठा, कुमारी देविका चौधरी, गणेश दादा, कार्तिक भाव, परी संजना, मालती, स्वाति प्रयाग और ललिता नारायण खर्चे। हिंगोली से हैं टेलर रामचंद्र डोंडी बा इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिंकू इंगोले, रमाबाई, सुरेंद्र मयूरी, सुरभि, मंजूषा गौतम, नामदेव राव शिंदे पाटिल, मास्टर विलास शिंदे पाटिल और सुनील जबड़ी, श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे और वैशाली बाठे, धाजी नादुरा महाराज से हैं, पोटिया गला दुर्ग से हैं संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक के साथ सीमा साहू, चंडीगढ़ से हैं शेफाली, अरुण कुमार, शेफी और हिमांशु सेठी, बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा, आप सबकी चाहत पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संग्राम का गाना, गीतकार हैं समीर, नदीम श्रवण की धुन पर इस गीत को अपनी आवाज दी है कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति ने।

चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू और रविंद्र सेन, आप हैं मालेगांव से दत्ता घायल, सुनीता बाई घायल, सानिका घायल और गजानन घायल, बाडाबारा से हैं दान सिंह रावत, पद्मिनी रावत, शुभम, सौरभ और नीरज रावत, पेंशनबाड़ा रायपुर से सोमनाथ यादव, वंदना यादव, सूर्यप्रकाश, शीला, कनक, गुनगुन, बेबी, अदिति और तन्मय यादव, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा और

पंचम गुप्ता, फरसगांव के श्रोता हैं फागेश्वर मंडावी और हेमराज भारद्वाज, लोहंडीगुड़ा बस्तर से हैं चंदन नाग, हरीश नाग, मोतीराम मौर्य, दुखुराम मौर्य और रामधर बघेल, आप दरभा बस्तर से हैं रामधर कश्यप, सोनू राम ठाकुर और भीमा सोढ़ी, गांधी चौक रोपड़ पंजाब के श्रोता हरदेव मिक्का, बलदेव बलविंदर वीर्क और जयदेव वीर के साथ मिक्का वीर्क, पारुंड विश्रामपुरी से हैं प्यारी दास मानिकपुरी, शिव कुमारी, खिलेश, नमिता और डिम्पी मानिकपुरी, गांव सुपाही साही से हैं देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश तांती,

अब आपके श्रोता हैं सुधाकर राजे राधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव और कुमारी संचित वायाल। मोताला से हैं प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख। रिसोर्ड के श्रोता हैं कुमारी सानवी और सर्वत देशमुख। पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल, प्रिंस यशस्वी और वीरेंद्र साहू। छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 से कमलेश साहू, जितेंद्र और पायल साहू। प्रेमलाल, भूपेंद्र, दुष्यंत, राघवेंद्र और तेजल साहू आप सभी नेहरू वार्ड भाटापारा से हैं। मोहन पाराकल तरा से हैं अभिनव साहू, अभिषेक और उमा देवी। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। बिलासपुर के श्रोता छन्नूलाल श्रीवास, अनिता, पुष्पा श्रीवास, अंजू, योगिता श्रीवास, रामायण श्रीवास, रजन साहू और हेमंत नामदेव। ये श्रोता हैं दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी। कंडला बंदर कच्छ से हैं जगदीश जोहरी, पूजा जोहरी और जेनिश। गांधीग्राम से हैं प्रवीण सोनी। देवरी भाटापारा से हैं केआर साहू, आकाश, कमलेश और मुरली क्षत्रिय। जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी, महिमा और नीतू वैद। बालोतरा राजस्थान से कृष्ण कुमार डाबी, भूपत कुमार, राधा देवी, विक्रम, अर्चना और साक्षी डाबी। राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी और संतोष सिंह। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश कुमार वर्मा, करुणा देवी वर्मा, प्रियंका गौरव बंछोड़ और भागवत वर्मा। विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त, चेतन नाहडा, दिलीप सिंह पवार और दीक्षा और कुश मुड़त, ये सभी बोरखेड़ा पीड़ामल उज्जैन से हैं। अनूपपुर के हमारे श्रोता जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी और कृष्णा केवट हैं। सावरगांव से रघुनाथ नारे, पुष्पाताई नारे, श्रीधर और मीनल नारे। भटिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक और शोभा नायक हैं। आर्य नगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूर, सनील, अजीत, आयुष और नंदिनी जंघेल। पोषण बंछोड़, चंद्रकिरण और प्रीति के साथ छाया बंछोड़ आप सभी हैं पहरा हिरवार के श्रोता। रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, खुशी गोस्वामी। और यमुनानगर बुलंदशहर से हैं धीरेन्द्र सोलंकी, सुनीता मौर्य और मून सोलंकी। अब आप सबके अनुरोध पर सुनिए रविंद्र जैन का लिखा और संगीतबद्ध किया फिल्म फकीरा का। ये गाना स्वर लता मंगेशकर का है।

वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर शिवांशु, जीशु, वी चैतन्य, दुर्गेश कुमार, अक्षय कुमार और अभिषेक नायडू आप सभी हैं धनोरा बस्तर के श्रोता। अघनपुर धर्मपुरा बस्तर से हैं डी वनिता नायडू, डी कृष्ण राव नायडू, डी ईश्वर राव नायडू, डी रोजा, मास्टर शिविर, डी सोमशेखर राव नायडू। भटिंडा रोड डब्वाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित और उनके साथ ही। यमुनानगर बुलंदश आप हैं कस्बा गुरनौर से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फरियोर, ताहिरा। मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या, नीलेश और नियति कुमार। सोपान ताड़े, विजया ताड़े, अमोल और सरिता ताड़े आप सभी नांदूरा महाराष्ट्र हैं। जीगांव नांदूरा से वसंतराव भोजने, सुनंदा भोजने, राजू, सोनू और निवृत्ति आड़ोकार। अलिका डब्वाली से हैं बसंत सिंह छन, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप और उनके साथ ही। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार झाझोरिया, गीता रानी झाझोरिया, गगनदीप झाझोरिया और बीबी आरजू झाझोरिया। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। बोरागाछी से हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। भाव साहेब नक्थर, जय कुमार चंदन, अजय, अक्षय चंदन और रुचिता चंदन आप सभी हैं संभाजी नगर के श्रोता। बेरड़ी से हुकुम कर्मकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु कर्मकर। रोहानसी पलारी से श्यामलाल साहू, युवराज, बिंदु और वर्षा साहू। उमरगांव नगरी से दीपक कुमार साहू, अश्विनी भाई, उमाशंकर और ठामेश्वरी साहू। नसवाला चौक मलकापुर से हैं संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश, निवृत्ति, क्षीरसागर, संजय कुमार चौहान। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बीबी काव्य और भाई सच्चा पाठक। कुंडलवाड़ी नांदेड़ से हैं गंगाधर सावनकर, विजया, लक्ष्मी, राजेश, राकेश और रक्षित सावनकर। बुलंद शहर के श्रोता हैं पंकज सिंह, चंचल, रशिका, आकृति और वंश राज। डोंगरगांव से हैं राजपाल गजबी है, राधिका, बेबी अनिश्क और तन्मय गजबी है। चुड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खदीजा बेगम।

मोहम्मद अशफाक और अल्ताफ जालना महारा से विजय पाटिल, पद्माबाई ज्ञानेश्वरी और तेजस्विनी, रानीगांव नगरी से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा शुभम से जल इंद्राणी और रोहन भरोसाहू, नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले, यह श्रोता हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर, सरिता गवहाणकर, सिद्धांत प्रिंशिकांत गवहाणकर के साथ प्रणीता गवहाणकर, बहादुरा नागपुर से शैलेश, वैशाली, श्वेता, सुमित और कुमारी ध्वनी गवहाणकर हैं। चारमीनार चौक गंडी बनेरिया से दरियानमल, अनिता मोटवानी, राजेश, मुकेश मोटवानी, गांधीबाग नागपुर से अशोक कुमार सावलानी, झूलेलाल चौक तिलदा से हैं हरीश, कमल, सेतपाल, भूमिका और सुशीला, भाटापारा से हैं सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती वाणी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, धनेश तिवारी, सावन नायक, कुमारी अंकिता जोशी और बेबी वेदी जोशी, सहारनपुर से हैं श्रीमती राधा नामदेव, कामठी नागपुर से अमृता राव, आशीष कुमार, कैलाश प्रसाद और श्रीमती किरण शर्मा, भंवरपुर बसना से हैं राधेश्याम देवांगन और चंपा देवांगन, ये श्रोता है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, वेद मिड्डा, अलका मिड्डा, सूचल और गिफ्ट मिड्डा हनुमानगढ़ राजस्थान से आपने हमें पत्र भेजा है। इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह, संगीता, सुनीता पिंकेश, साक्षी और मनन तानिया, खपरीकला से संतोष कुमार सोनी, सुनीता, अखिलेश, नेहल पीहू, छोटी दानिश, दीक्षा, संजय और पूजा रामा पूर्वी आप हैं। ग्राम छिदही पुजारीपारा कोंडागांव से सेतु राम चक्रधारी, मंगतीन, आशीष और अस्तिका चक्रधारी, लोरमी चचेड़ी से हैं कमलकांत मरावी, प्रमीला, नेहा, पुष्प

मुड़ा रायगढ़ से हैं। हाटोद बाजार लाहौर से कमल नाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल और राजकुमारी पटेल। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप के साथ अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल।

इसी के साथ श्रोता सुमन में आज बस इतना ही। अपने फरमाइशी पत्र हमें भेजते रहिए, क्योंकि आपका स्नेह ही हमारे हर कार्यक्रम की सबसे बड़ी ताकत है। अब मुझे यानी आपके रेडियो दोस्त मरिंदर सिंह देवगुण को दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी आपके पसंदीदा गीतों के साथ, आपकी फरमाइशी पत्रों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।

0: श्रोता सुमन, अभी आपकी सेवा में फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये प्रोग्राम प्रसारित किया गया। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 2 बजने को हैं। अब दोपहर समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from

0: Seas to the Skies, with focus on indigenous defense production, highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft manufactured in the country. In his Man Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation-level talks in Victoria. Government asked Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in their final Group A match in London today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Man Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India.
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई. C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं. इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है. आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है.
0: Mr. Modi exuded pride that India has achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Doonagiri, INS Sanshodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. Mr. Modi noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies.
1: कोलकाता में INS Doonagiri, INS Sanshodhak और INS Agra को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया. इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है. इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है. इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है.
0: The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें. लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें. लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी. किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था. मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं.
0: Mr. Modi also cited the example of the Petkar family in Nanded, Maharashtra, who arranged accident insurance for approximately 3,500 villagers. Each individual was provided with an insurance cover of 1 lakh rupees. The Prime Minister shared that the government is extending this protective shield to crores of families across the country.
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है. उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है. ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है. इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है.
0: In this episode of Man Ki Baat, Prime Minister Modi also touched upon the subject of superstition. He noted that superstition has been deeply ingrained in human society.

0: 4 millennia. Mr. Modi shared how the rare Hargela bird found in Assam was considered inauspicious in certain parts of the state. The Prime Minister stated that it was during that time that biologist Purnima Devi Barman resolved to change the misconceptions deeply rooted in people's minds.
1: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है. ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था. फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ. हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई. आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है. इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे.
0: Touching upon the topic of sports, Prime Minister Modi expressed happiness that the number of young people in the country who are both playing sports is rapidly growing. In today's Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also spoke about preserving people's creativity in the age of technology and AI. He said Nalanda University has found a solution to this and is now shaping India's destiny in a new avatar.
1: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है. दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है. मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया.
0: Mr. Modi highlighted other significant efforts are underway to prepare the youth for new technology while keeping them rooted in their heritage. The Central Sanskrit University in Delhi is launching a B.Tech program in artificial intelligence and data science. Prime Minister Modi expressed happiness that Indian culture is reaching various corners of the globe today. He spoke of an initiative in the Dominican Republic, which has an Indian population of around 100.
1: कैरेबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है. वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है. भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है. वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है. इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना. टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं. भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है.
0: द प्राइम मिनिस्टर मेंशनड मेघालयस रूट ब्रिजेस, सेइंग दीस रूट ब्रिजेस टेक डेकेड्स टू टेक शेप. ही शेयर दैट इंडिया हैज नाउ अप्लाइड टू हैव मेघालयस रूट ब्रिजेस इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क. On the subject of cleanliness, Mr. Modi gave the example of some women from Byavara in Rajgarh district of Madhya Pradesh. The women resolved to remove plastic waste scattered around the area. Mr. Modi also urged people to ensure that the idol of Ganpati Bappa for Ganesh Utsav is made from the soil of this country and crafted by the hands of local potters and

0: आमचं लगे तो रोजे दिन चोसन आम्ही नया नया गोठमन धरून बात अमर तेरू
1: और रोजे दिन आम्ही कला और कलाकार कार्यक्रम भीतरे नुआ नुआ कलाकार भाई बहन मंचो गोट केवल सांगू से आए का सर तो उसने मैं बोलते रहे कि मंगतू भाई कलाकार मंच गोट हो से तो गोटो गोट मुके सुरता आईली कि जैसन कविता के भी ढोकरा नहीं हो बोल सो जो नाम लिखू से उसने कलाकार बोले हमेशा जीवता रह सो हुन मने संसार ले गेलो पाचे बोले एथाने लोग हुन मन के याद करे सो हुन मंचो लिख लो चीज के हुन मंचो अभिनय कर लो चीज के हुन मन जीवता दख सो
0: जीवता दख सो और आमचो संग मतलब कला और आध्यात्मिक चो संबंध
1: आध्यात्मिक सत्य बोले ने तो हाँ बोल बोल
0: उन उन बोले से कला और आध्यात्मिकता चो रिश्ता तो अत्यंत गहरा है
1: ने
0: तो उन उन बोले मतलब कला संगे संगे उन आध्यात्मिक गुरु बोल सोत उनके उन बल सिखा सोत कहीं योग हो नाले नाचा हो नाले गाना हो
1: सत्य बल्ली
0: नाले कहीं बजा थे बीती बल्ली हो
1: काय हो ऐसे मंगतु भाई जैसन आमी बल्लो ने पूजा पाठ करूं से नहीं भगवान के सुमरू से तो भगवान बोले सोत कि मैं नहीं जोन कलाकार मन जोन जो जो संगीत आसे भजन आसे ने जितरो बल जस गीत आसे उनमन जो संगीत ने जो मगन हुन जासोत हुता मैं हुन भगत मन संगे रहे से बल तो गोटे आए कि आमी जितरो उपास प्यास भूखे रन करूं से हुन चले अगर आमी भगवान चो सुमरना कर लो ने है कि नहीं हुता आम के भगवान मिर दे आई काजे आगे दखते रहा आगे चो लोग मन कितरो बढ़िया हुता बोलो ने ये जो रामायण होली है कि नहीं असने और बोल कई कसन धर्म चो जो नासे हुता काय सुंदर मन पुराण मन के दख ने पुराण पढ़ लो बोल काय सुंदर आम के आम चो पूरे भगवान प्रगट होला सा नाम चो लागे से
0: आई बोलन की आप लोग पूजा पाठ ने ध्यान मगन उन बात ही करतु भी ने
1: तो ये है कि कला जो ना है हुन आध्यात्म के पावतो काजे आध्यात्म जो बाट ने जातो काजे खूबे सरल आम के ये बाट दगाए से कला तो ये हिसाब ने कहा है कि जोन बल कलाकार भाई बहन मनासोत हुन मन के अभी दखू से जैसे गाँव तो लोग मनासो तो गाँव तो लोग मन चो कंठ ने बोलू से सरस्वती माता चो वास हो बोल सो मतलब हुता बस सोत सरस्वती माता तो बोल तो घटे आए दादी दी में कि कलाकार के भी मरुक नहीं सके और कला आमचो अलग यहाँ से बोलो ने आमी कला चो माध्यम ले भगवान के पाउक सकू
0: कला चो माध्यम ले भगवान के पाउक सकू और मतलब आदमी पूरा उन्हीं काम ने लीन रहे से तेवे उनके जान सो तुंचो कला के नहीं ये काम ने पूरा उन बार लीन होलो से और ये कला के दकाय से लोग मन उनके दखुन बाती बोल जान सो नहीं ये अच्छा कलाकार है ये अच्छा गाऊआ है नाले अच्छा नाचुआ है नाले अच्छा भजन कीर्तन बोल करुआ है तो ये बीती गोटा है
1: हाँ तो आध्यात्मिकता बोलो ने पूजा पाठ जो बाट के आमी भगवान के पाव तो कहा जाए जैसन धरु से उसने आमी कला जो माध्यम लेवल आमी भगवान के पाव सकू
0: पाव सकू
1: और असने हम चलो गए आज ही कलाकार भाई सोत नहीं
0: हाँ
1: धनेश्वर स्वयं तो
0: ये तो आसे हाँ, नहीं हाँ, हाँ, तो गोट बला से
1: नहीं नहीं मैं बोलते रहे कि नहीं ये धनेश्वर स्वयं जो नमर ला से आमी हम जो गोट के सांगू दे आगे जहां लग सुन लन होती
0: जहां लग सुनाऊं दे
1: आले आले तेबे जहां लग सुनू पाछे सांगा ये मन गोट के
2: जीएसटी चो दर के कम कर लो ने सोझे मनुख जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से बल्कि जनावर मन चो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे जीएसटी ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से नुआ कीमत ले सामान बना तो लोग और घेन तो लोग दोनों के लाभ मिरे दे ये नुआ जीएसटी दर 22 सितंबर 2025 ले लागू होए दे।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी

0: प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
1: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: इत बदले मत्तांक अच्छा मानेडा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्तांक जानवर किन इलाज तगवेंट राहत दरकना उम्मीद मिंदे यू पूना मोलते ग्रा

0: उदयाचो
1: आवरे मन ओडिशा ने मर्दला बजात ने महारत हासिल आसे ओडिशा संगीत ने नृत्य ताल मर्दला और ये एकल वादी यंत्र स्वरूप ने स्थापित करला से
0: हाँ हाँ
1: ने ये छो लोकप्रियता बड़ा तो जे मन छो खूबे बड़े योगदान आसे
0: हाँ हाँ
1: तो ये मन छो प्रारंभिक जीवन आए ये मन छो जन्म होली से 18 मई 1953 ने
0: अच्छा
1: तो ये उड़ीसा राज्य छो पुरी जिला ने
0: जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ बसला से
1: और ये मंचो उन जन्म वालो गांव है नाहतारा गांव
0: अच्छा
1: ने उन गेली और ये मन 10 वर्ष ले उम्र ले ये मर्दला बजाते बीती ये बीतीन के सीखला और ये मन के कुबे ये मंचो योगदान होली और ये मन के मान सम्मान बल मिली ने
0: कसन बोलो ने कलाकार मंचो कहाँ बल तो मान सम्मान होए से चीनी हाँ
1: ये मंचो पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र जो सीखतो काम प्रशिक्षण और अनुसंधान बल खोलला ये मंचो गोटक संस्था खोलला तो ये मंचो है वादवाणी गुरुकुल ने स्थापित करला ये मंचो नाम है
0: अच्छा
1: और ये मन उत्कल संगीत विश्वविद्यालय ने बोले जुड़न रला और मर्दला जो शिक्षक जो रूप ने बोले
0: काम करला
1: और योगदान दिला तो ये मन के पुरस्कार बोले सर्वप्रथम आए 1999 में पद्मश्री पुरस्कार मिली
0: पद्मश्री ले मन के सम्मानित करला
1: सम्मानित करला और उनके संग संग 2013 ने बोले मिली से संगीत अकादमी नाटक पुरस्कार
0: अच्छा अच्छा
1: तो ये मन तो कलाकार तो ये सम्मान वाली मिली और उसने उन आप लोग काम के आगे बढ़ाला और उन नाम कमाला
0: तो क्या है दादी दीदी मन तुम तो जानास कि आमचो जो भारत देश है ये थाने कई कसन महान महान कलाकार मन होला से जिन जो मन जो ना आप लोग कला चो माध्यम ले आप लोग देश भीतर बोले और देश से बाहर दूसर देश ने बोले नाम कमाला
1: देश भी देश ने बोले नाम कमाला और केंद्र सरकार ने बोले राज्य सरकार ने बोले और उन स्थानीय स्तर ने बोले मन के
0: इनाम मिली से सम्मान मिली से नहीं तो ये मन के तो हम सुन लू और हमरा बल दिलू धनेश्वर स्वयं कलाकार भाई चो गोट के असने हम चला के गीत मन बोले ऐसे तो एक बोले सुन लो नहीं होती बोलते रहे
1: आले के बोल सुनो
0: आले तभी सुनो हाँ हाँ तो सुनो ये गीत के आले

0: झुनकी दीदी, ये गीत के तो सुन लू ने
1: हाँ।
0: ये गीत कुरिया मन के तो जान लीस भी जान।
1: हाँ ये मन आज बल्लो ने योगिनी सिन्हा योगिता सिन्हा ने योगिता सिन्हा और मंचो संगवारी मन तो गीत के तो हम सुनाऊ से समय हिसाब ने और समय हम चला गया और बलिया से तो गोटो गीत और बल्लो ने होती बोलते रहे
0: गीत के बोल सुनो पांच गीत कुरिया मन नाम
1: अरे सुनूंगी गीत के।

0: दीदी, ये गीत मन तो सुन लू ने,
1: हाँ
0: और ये गीत कुरिया मन क्यों ना उचित अली
1: ये मनात दयो महा लागे से। हाँ हाँ दयो दयो दयो और हुन मन से संगवारी मन ने
0: हाँ
1: तो वे बोलते रहे मंगतु भाई
0: हाँ
1: गीत गोविंद संग संग का आया है कि आम के समय हिसाब ने आम चो जोन पिला मन आसत नहीं
0: हाँ
1: ये मन के ज्ञान ध्यान चो गोट बोल सांगु को लागे से।
0: हाँ
1: जैसे ने भी तुझ जानीस कि 16 जून ले स्कूल खुल ली से ने और स्कूल खुल्लो ने नानी नानी पिला मन चौथा भर्ती बल हो से कोनी पहली कक्षा ने कोनी बाल मंदिर ने कोन छठ भी ने जासत को नौ भी ने जासत और को नागे लेवल पढ़सत बोले तो जितरो बोल पिला मन आसत जो नाम चो कार्यक्रम के सुने सत हुन मन का जे बोलुक चाहे से कि पढ़ई बोलो ने शिक्षा गोटोक असन नाम के माध्यम आसे जे चले आमी आपलो जीवना ने जोन बोले चीज पाओक चाहूं से हुन आम के मिरुक सके
0: मिरुक सके
1: पढ़तो लिखतो जो हिसाब है जो शिक्षा धरतो हिसाब है हुन सोचे नौकरी काज नहीं हुए शिक्षा ले आम के आप लोग जीवन के कसन जीवतो रहे और कौन गोट नंगत है कौन गोट अड्रा है एक एक पहचान कर तो काजी आम के शिक्षित हो तो जरूरी है
0: जरूरी है। ये शिक्षा का है पीला मन को निकोनी बोल छानून देसो तो आजकल नहीं
1: हाँ हाँ
0: तो उन बल जमाए पीला मन स्कूल जातो रहे कितनी परेशानी वालन बल ने
1: हाँ छाड़ तो रूम है पढ़ाई के आजकल तो कहा है कि सरकार बाटे बल कहे कसन योजना मन चल रही से जोन थाने फोकाने आम के पुस्तक मिले से फोकाने स्कूल ड्रेस मिले से हर होता मिडिल स्कूल लगले तो बल्लो ने पहले धरू आठवीं लगले आम के पेज भरा भात बल मिले से
0: मध्यान्ह
1: भोजन मिले से तो बोल तो गोटे दादी दीवन कि आप जोन पिला मन आप लोग घर मन तुम मन जो घर मन आसो जोन पढ़ई चोमर आसो जे मन तो 14 बरख लगले सरकार जो जिम्मेदारी आई कि हुन पिला के फोकाने पढ़ाए दे
0: फोकान पढ़ाए दे और कहीं कहीं काया है हम जो पिला मन नहीं उन कुली बढ़ जासो
1: हाँ उन पर लड़ा होता है सत्य बल्लिस और ये जो जो ना जवाबदारी आए हुन मन जो आए बाबा से होए से कि हर एक चीज जो गोटो कुमार होए से नानी बेरा जो नामी जिधर जाए हम जो उम्र कम रहे से उधर जाए हम के पढ़तो रहे और जिधर जाए हम जुआन होलो बोलन उधर जाए कमातो रहे नहीं तो सपाई काजे भगवान हम के गोटो कुमार बनाऊ दिला से तो पढ़ाई चो उम्र नहीं हम के पढ़तो रहे
0: तो आप आमचो जीवना बोलन कहना है कि हम घर बनाऊ से घर बनाऊ से आमचो नींव मजबूत रह दे तभी तो हम आगे ए,

8.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 3 बजे हैं। अब हमारी ये सभा संपन्न होती है। एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अब विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। शाम 5 बजे हम सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.8 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5 बज रहे हैं। सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा की शुरुआत हम कर रहे हैं कार्यक्रमों की जानकारी के साथ। इसमें हम आपको पहले बता दें, आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। श्रोताओं, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का आंखों देखा हाल आज आप सुन सकते हैं शाम 6:30 से 6:45 तक, 7 बजे से रात्रि 8:45 तक और रात्रि 9 बजे से 9:30

10 बजे से रात्रि 11 बजे तक और मैच की समाप्ति तक। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मीडियम वेव केंद्र पर रिले करेंगे। 9:30 पर आप सुन सकते हैं नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। एफएम केंद्र पर आप सुन सकते हैं 5:05 पर देशभक्ति गीत। युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवाणी 5:10 पर। 6:30 पर गोंडी समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा। एफएम केंद्र पर आप सुन सकते हैं बस्तर के स्वर शाम 7 और आमजोगांव 7:21 पर। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि रात्रि 8 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनता से संवाद पर आधारित कार्यक्रम मन की बात का हल्बी अनुवाद आप सुन सकते हैं रात्रि 8:00। 8:30 पर पीला मन का जयकोट। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा स्वामी दयानंद सरस्वती पर। प्रस्तुति होगी पीलूराम बघेल की। 9 आप पुनः सुन सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनता से संवाद पर आधारित कार्यक्रम मन की बात का गुंडी अनुवाद। समय रहेगा रात्रि 9 का। दौना आप सुन सकते हैं रात्रि 9:30 पर मधुराम और साथियों के द्वारा। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज के हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। अब हम आपको बता दें कल के कार्यक्रमों के बारे में। हमारी प्रातःकालीन सभा में भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना हम प्रस्तुत करेंगे सुबह 6:05 पर। 6:20 पर चिंतन प्रसारित किया जाएगा। 6:35 पर माफ कीजिएगा 6:25 पर आप सुन सकते हैं श्री रामचरितमानस का गायन। गायक स्वर आशा भोसले का और कविता कृष्णमूर्ति का। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का होगा। 6:35 पर आप सुन सकते हैं कृष्ण सामाई की पीड़ा खाड़ा चुकोर। इसे आप पुनः सुन सकते हैं दिन के 1:05 पर। होल होली हम प्रसारित करेंगे 6:40 पर। इसमें कल सुनेगा कासनपाड़। कलाकार होंगे गणपति कड़ियारी और साथी। नमस्कार जगदलपुर हम लेकर आएंगे 7:05 पर। इसमें सुनेगा स्वतंत्र वार्ता, कविता पाठ और फिल्मी गीतों की मधुरिमा। लोक मंजरी में आप सुन सकते हैं हल्बी कविता, गोंडी कहानी और भत्री कविता। प्रस्तुति होगी बलबीर सिंह कच्छ की। समय रहेगा 9 का। श्रोताओं, गुलशन हम प्रसारित करेंगे कल सुबह 10 आप सुन सकते हैं पद्मश्री से हाल ही में सम्मानित दंतेवाड़ा की डॉक्टर बुधवारी ताती से विशेष भेंट वार्ता। इसे आप सुन सकते हैं कल सुबह 10

आरटी ये प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा दोपहर 2:30 पर। शाम की सभा में आप सुन सकते हैं भारत सरकार आपके द्वार शाम 5:05 पर। युवा श्रोताओं के लिए युवाणी होगी 5:10 पर। लोकगीत सुनेगा शाम 6:30 पर। बस्तर के स्वर शाम 7:00 और रामचौगांव 7:21 पर। नानोली में रात्रि 8:00 गोंडी लोकगीत का प्रसारण किया जाएगा। पीलामन काजे गोट हम लेकर के आएंगे रात्रि 8:30 पर। जीवनाचो शोर ये कार्यक्रम सुनिएगा 9:15 पर। और भेंटघाट आप सुन सकते हैं रात्रि 9:30 पर। और रात्रि 10:00 आप सुन सकते हैं कोदोमाली में लोकगीत। श्रोताओं ये थी जानकारी आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

देशभक्ति गीत मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: युवाणी सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को हमारा अभिवादन। आज की शाम हम है आपके साथ आपके रेडियो मित्र, मैं ग्लोरी विनीशा
1: और मैं रिया प्रियांशी नाग। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: रिया,
1: हाँ,
0: क्या हुआ? आज तुम थोड़ी परेशान लग रही हो।
1: हाँ ग्लोरी, आजकल मैं थोड़ी परेशान रहती हूँ, मन अशांत और घबराहट होती है।
0: सही कहा रिया तुमने, आजकल के दिनचर्या में इतने व्यस्त हो गए हैं कि खुद की खुशी और शांति के लिए समय नहीं मिलता है ना?
1: लेकिन ग्लोरी, एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपको हर समय खुश रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने दिनों में शांति के पल खोजने होंगे।
0: रिया, मुझे पता है कि हमारा जीवन पहले से कहीं अधिक व्यस्त है और अपने लिए समय निकालना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमें पता करना होगा कि हमें क्या खुशी देता है।
1: ग्लोरी, मानसिक शांति कोई अवस्था नहीं, ये अहंकार और उपेक्षा का भार उतारने देने की कला है, जब मन अपनी व्यर्थ दौड़ को छोड़ देता है।
0: हाँ रिया, तब उसके भीतर एक ऐसा आकाश खुलता है जहाँ केवल शांति, स्वीकृति और सरलता रहती है। मानसिक शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में चुनौतियों के भीतर अडिग शांति बनी रहे।
1: और मानसिक स्वास्थ्य हमारे सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीकों को नियंत्रित करता है। यह समग्र जीवन गुणवत्ता, तनाव प्रबंधन, शारीरिक कल्याण और सामाजिक संबंधों की नींव है।
0: दोस्तों, एक स्वस्थ मन आपको चुनौतियों का सामना करने और पूरी क्षमता का एहसास करने में सक्षम बनाता है। मानसिक स्वास्थ्य के मुख्य लाभ एवं महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं।
1: और ये आपको दैनिक जीवन के दबावों, असफलताओं और चुनौतियों का रचनात्मक तरीके से सामना करने की शक्ति देता है।
0: रिया, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए हैं, है ना? अच्छा मानसिक स्वास्थ्य आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हृदय रोग जैसी बीमारियों के खतरे को कम करता है।
1: और यह भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे आप परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ स्वस्थ और मजबूत और सकारात्मक संबंध बना पाते हैं।
0: रिया, जब हम मानसिक रूप से शांत और स्थिर होते हैं तो आपकी कार्य क्षमता और रचनात्मकता बढ़ती है।
1: ग्लोरी, मानसिक शांति हमको अपनी क्षमताओं को पहचानने, आत्मविश्वास बढ़ाने और जीवन में खुशी तथा उद्देश्य खोजने में मदद करता है।
0: दोस्तों, जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते उन्हें स्वीकार करना ही मानसिक शांति की पहली कुंजी है। व्यर्थ की चिंता, ओवरथिंकिंग छोड़ने से ऊर्जा बचती है।
1: और ग्लोरी, रोजाना 10 या 15 मिनट ध्यान करने से मन की उथल पुथल शांत होती है। यह हमको वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाती है।
0: दोस्तों, क्रोध, ईर्ष्या और भय मानसिक शांति के सबसे बड़े दुश्मन हैं। योग और प्राणायाम के माध्यम से इन भावनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है।
1: और दोस्तों, ये सब के साथ अत्यधिक सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम से ब्रेक ले, खुद के साथ कुछ समय बिताना मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज की चर्चा में बस इतना ही। अब वक्त है आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने का। आइए जानते हैं कि आज के इस खास कार्यक्रम में आपके लिए क्या क्या है खास, क्यों ग्लोरी?
0: जी हाँ दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खास कार्यक्रम तरन्नुम, जिसमें हम सुनेंगे गैर फिल्मी गीत। साथ ही दोस्तों, कुछ बात करेंगे सामान्य ज्ञान पर
1: और चर्चा करेंगे विज्ञान पत्रिका पर भी, और साथ ही सुनेंगे झलकी, जिसका विषय होगा बिन बुलाए मुसीबत। इसके लेखक और प्रस्तुति की है

0: जगदीश अधिकारी ने।
1: जी हाँ दोस्तों, अब बिना देरी किए सुनते हैं आज के कार्यक्रम तरन्नुम से पहला गीत, जिसे अपनी आवाज दी है सोहम नाइक ने और संगीत से सजाया है जयन और अंतरिप ने और लिखा है इस गीत को मीर ने।
0: दोस्तों कुछ एहसास शब्दों से नहीं सिर्फ संगीत से महसूस होते हैं, ऐसा ही एक खूबसूरत गीत है ये। सुनते हैं ये गीत जो दिल को छू जाए।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: दोस्तों, कहते हैं जब कोई दिल के बहुत करीब हो तो हर दिन खास और हर पल यादगार बन जाता है। उसी खूबसूरत एहसास को सुरों में पिरोता हुआ अगला गीत आपके लिए,
3: जिसके गायक हैं दीदार कौर और वरुण जैन, और इसे लिखा और संगीत से पिरोया है सुहित अभ्यंकर ने। लीजिए दोस्तों, सुनिए ये मजेदार गीत।

0: रिया, कभी कभी हमारी छोटी सी लापरवाही या बिना सोचे समझे लिया गया एक फैसला हमें ऐसी परेशानी में डाल देता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है।
1: जी हाँ दोस्तों, सुनते हैं ऐसे एक सीख देने वाली झलकी बिन बुलाए मुसीबत, जिसके प्रस्तुत करता है जगदीश अधिकारी।
2: हेलो,
3: हम आपको एक ऑफर देते हैं।
2: आप कार खरीदना चाहते हैं?
3: आपको कोई बैंक या फाइनेंस कंपनी जाने की जरूरत नहीं है।
2: नया मॉडल
3: मात्र कुछ ही दिन इस्तेमाल हुई है।
2: नई सेकंड हैंड कार
3: आप अगर खरीदना चाहते हैं
2: तो संपर्क कीजिए
3: श्री रमा शंकर अवस्थी,
2: गली नंबर 2,
3: धर्मपुरा,
2: जगदलपुर।
3: जल्दी कीजिए,
2: कहीं मौका चला न जाए,
3: कहीं हाथ से निकल न जाए।
2: टिप टॉप कंडीशन की पुरानी कार,
3: पता है
2: रमा शंकर अवस्थी,
3: धर्मपुरा, जगदलपुर।
4: प्रस्तुत है मधुरिमा।
5: रमा शंकर धर्मपुरा, अरे ये तुम तो नहीं? अरे तुमने सुना रेडियो में क्या रहा था?
6: हाँ सुना, पिछले 5 दिनों से सुन रहा हूँ।
5: इसमें तुम्हारा नाम पता कैसे आया?
6: क्योंकि मैंने ही रेडियो में प्रसारण के लिए कहा था।
5: तुमने?
6: हाँ भगवान, मैंने रेडियो से लेकर यहाँ के सब स्थानीय अखबारों में विज्ञापन भी दिया है। मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ।
5: तो तुम?
6: कार बेच दूंगा।
5: पर क्यों?
6: अरे इतनी मुसीबत आने के बाद भी सब जानते हुए पूछ रही हो।
5: हाँ हाँ, फिर भी पूछ रही हूँ, क्यों? क्या मुसीबत आई है हमारी कार में? तुम्हारी किस्मत अच्छी है और मेरे तगड़े भाग्य और बच्चों की जबरदस्त कुंडली के कारण तुम्हारे नसीब में कार का योग आया, नहीं तो तुम्हारी लोअर डिवीजन नौकरी में कार।
6: मुझे पता है सीते, सब पता है। ईमानदारी की बाबूगिरी में 2 पहिया मेंटेन करना भी मुश्किल है, ये भी जानता हूँ। तुम्हारे और बच्चों के पूर्व जन्म के पुण्य फल के कारण हमें 30 रुपए की चाय पत्ती में मिले कूपन से ये कार मिली है।
5: वही तो मैं भी कह रही हूँ, तुम्हारे जैसे नौकरी करने वालों के पास कहाँ से कार आती।
6: इसीलिए तो लगता है लोग मुझसे बहुत खुश हैं और मैं मुसीबत में हूँ।
5: मतलब कार के कारण तुम

0: मुसीबत में हूँ। न जाने कहाँ से मुसीबत अपने परिवार के साथ हमारे ऊपर एक के बाद एक टपकती जा रही है।
1: इसलिए तुमने एकाएक निर्णय ले लिया कि कार बेच देंगे, मेरी सलाह के बगैर, मेरे बिना इजाजत के?
0: क्या इजाजत लूं सीते, जब कूपन देखकर कार लिया, सीधा सीधा 40% हार्ड कैश जमा करना पड़ा टैक्स का। फिर जब कार आई, रखने में मुसीबत हुई। हमारे जैसे बी टाइप क्वार्टर में कहां कार रख सकते थे भला। ले दे के जब कार के लिए टेम्पररी गैरेज बनवाया तो नीचे क्वार्टर वाला भड़क गया। इतने दिनों की दोस्ती अचानक दुश्मनी में बदल गई। अब तो जनाब मुझसे बात तक नहीं करते।
1: वे लोग तो मन ही मन जलते हैं हमसे।
0: चलो माना प्रोफेशनल जेलसी हो सकती है, मगर मेरा वो बॉस, इतने दिन जिसके अंडर नौकरी करने के बावजूद जिसने आज तक कभी बात तक नहीं की, यहाँ तक कि कभी नमस्ते करने पर पहचानता तक नहीं था, वो क्यों और कैसे मेरी इतनी तारीफ करने लगा, क्या बताऊं? और अब मैं उसका अपना आदमी हो गया हूं।
1: यानी अब अजनबी दोस्त बन गया।
0: आपने बुलाया सर?
2: आप कौन?
0: जी मैं रमाशंकर अवस्थी सर।
2: अरे अवस्थी जी, आइए आइए। अरे बैठिए भाई, आखिर आप अपने ही आदमी हैं
0: सर।
2: अरे बैठिए अवस्थी जी, खड़े क्यों हैं?
0: सर मगर
2: अब देखिए तिवारी जी।
0: जी जी अवस्थी।
2: अरे हाँ अवस्थी जी, अब देखिए भाई, अफसर बाबू का भेद हमारे ऑफिस में नहीं चलेगा। और फिर आप तो हाँ वैसे बोलिए, आप क्या लेंगे, ठंडा या गर्म?
0: जी नहीं सर, मतलब सर
2: अरे मोहन, दो गर्मा गर्म कॉफी तो लाना।
0: जी इसकी जरूरत नहीं है सर।
2: अरे सब चलेगा पंडित जी। हाँ बोलिए, कैसे हैं आप, कुछ तकलीफ तो नहीं है ना आपको?
0: तकलीफ सर?
2: अरे हाँ भाई, इस सीट में, इस ऑफिस में, इस हेडक्वार्टर में, या फिर अपने कुलीग के साथ?
0: सर वो
2: अरे देखिए अवस्थी जी, कोई भी बात हो बिना संकोच बता सकते हैं आप। आफ्टर ऑल हमारे आदमी जो ठहरे।
0: यहाँ सर एक सेक्शन में एक सीट पर 12 साल हो गए सर। 13 बार रिप्रेजेंटेशन दिया मगर आज तक।
2: अरे नहीं हुआ तो अब हो जाएगा
0: जी।
2: हाँ हाँ, अरे आगे बोलिए। अवस्थी जी, ट्रांसफर के बारे में सोचा है या फिर कोई नया क्वार्टर चाहिए?
0: जी क्वार्टर नया तो चेंज सर
2: करना है तो बता दीजिए, अब नहीं तो कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। आफ्टर ऑल आप हमारे आदमी जो ठहरे।
0: जी ठीक है सर।
2: और कुछ?
0: नहीं और कुछ नहीं सर।
2: अच्छा अच्छा, वैसे अवस्थी जी आपकी कार कैसी चल रही? हाँ हाँ कार,
0: वो तो सर
2: अरे वही चाय पत्ती के लक्की ड्रा वाले कूपन में मिली थी ना आपको।
0: वो सर वो ठीक है सर।
2: भाई चलाते वलाते हैं कि नहीं?
0: जी चलाता हूँ सर, फैमिली के साथ जब कभी बाहर जाना होता है तो चलाता।
2: वेरी गुड वेरी गुड। कंडीशन तो अच्छी है ना उसकी?
0: हाँ सर बिल्कुल नई है।
2: हाँ भाई लेटेस्ट मॉडल भी है और उसका कलर भी मेरी मिसेस को बहुत पसंद है। कितनी क्यूट दिखती है आपकी कार।
0: वो तो सर
2: कभी लॉन्ग ड्राइव में गए हैं भी कि नहीं
0: सर?
2: हाँ भाई, अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, ऐसे में जाना कहाँ होता है।
0: हाँ सर संभाल के चलाता हूँ सर, इस सर्विस में कार सपने में ही दिखती अगर लॉटरी नहीं लगती तो।
2: हाँ अवस्थी जी भाई, गवर्नमेंट सर्विस में नई कार तो सपना ही होती है, इसलिए देखो ना

0: अरे अरे, ये किसकी कार उठा के ले आए जी? चारों तरफ धूल ही धूल, सारे शीशे टूटे फूटे, दरवाजे पे ये लंबी लंबी खरोंचे, आगे का बोनेट तो अंदर ही चला गया है। ये किसकी टूटी फूटी कार ले आए?
1: ये किसी और की कार नहीं है भगवान, हमारी कार है।
0: क्या, हे भगवान, ये हालत हो गई हमारी चकाचक गाड़ी की। हर दिन पोछते थे, किसी को छूने तक नहीं देते थे। मेरी बहन की शादी में बारात में गाड़ी मांगे तो मना कर दिए। कैसे, किस मुंह से, क्या सोचकर हमारी नई कार थमा दिए उस बॉब कट गोरी चमड़ी वाली गवार मेम साहब को।
1: क्या करता सीते, साहब का आदेश नहीं मानूं तो मेरा ट्रांसफर बीजापुर या कोंटा कर देगा। कार दे दिया तो ये हालत, सचमुच मुझे भी बहुत रोना आता है।
0: मैं अभी जाकर पूछती हूँ तुम्हारी मेम साहब से।
1: क्या पूछोगी, क्या पूछोगी? अरे वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि एक हफ्ते में गाड़ी जैसी भी हो हमारे पास वापस आ गई।
0: मतलब?
1: गाड़ी बड़ी मेहनत से साहब पुलिस स्टेशन से वापस लाए हैं।
0: पुलिस स्टेशन?
1: हाँ, मेम साहब ने लॉन्ग ड्राइव के दौरान एक गाय को ठोक दिया। गांव वालों ने गाड़ी के ऊपर गुस्सा निकाला और ये हालत कर दी। अरे थाने में रिपोर्ट भी कर दी। शुक्र है साहब ने दौड़ धूप करके पैसा ऐसा देकर गाड़ी को छुड़ा लिया, नहीं तो हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते।
0: कार नहीं अपनी बीवी को बचाए हैं, नहीं तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाली मैम ना जेल में चक्की पीसती रहती।
1: अरे क्या बात करती हो,
0: मैं सब जानती हूँ।
1: कौन है?
2: नमस्कार साहब।
1: नमस्ते, कैसे आना हुआ भैया?
2: हम चंदे के लिए आए साहब, सार्वजनिक गणेश उत्सव है ना मोहल्ले में।
1: देखिए हमारा मूड अभी ठीक नहीं है, आप बाद में आइए।
2: बाद में कह के तो 5 बार वापस कर दिए, अब हम चंदा मांगने आए हैं, कोई भीख नहीं मालूम
0: क्या?
2: देखिए मैडम, आपने हमें 5 बार वापस भेज दिया साहब आने के बाद देंगे कह के, और अब भगा रही हैं।
0: दे दीजिए।
1: ये लो भाई।
2: सिर्फ 50 रुपए?
1: 50 रुपए नहीं भैया, सिर्फ 30 रुपए। 30 रुपए की रसीद काटो और 20 वापस करो।
2: 30 नहीं होगा मैडम।
0: क्यों नहीं होगा, हर साल तो हम 20 देते थे, इस बार 30 दिए हैं फिर भी?
2: नहीं होगा मैडम, कार रखने वाले अगर 30 दें तो लोग क्या कहेंगे?
0: क्यों, कार रखने वाले बदल जाते हैं क्या? क्या नौकरी बदल जाती है? समाज में पोजीशन बदल जाती है? कद काठी बदल जाती है? क्या रातों रात अमीर हो जाते हैं कि 20-30 नहीं चाहिए?
2: मालूम है मैडम, मालूम है, मगर हम बहस नहीं करते। कार चलाने में सक्षम लोग और 100 रुपए नहीं दे सकते।
0: लेकिन
1: ठीक है भाई, ये लो 50 और।
0: पूरा 100 हो गया, अब खुश?
2: अबे साहब के नाम से रसीद काट, रमाशंकर अवस्थी। और साहब ये रसीद संभाल के रखिएगा।
0: आप 100 रुपए दे दिए।
1: अरे तो क्या करता सीते, कार वाले हो गए ना, सोसाइटी में एक पोजीशन बन गई है, स्टैंडर्ड बन गया है।
0: लेकिन?
1: लेकिन क्या सीता, कितनों को समझाएं कि कार आने के बाद हमारी तनख्वाह के ऊपर 1000-2000 रुपए का खर्च और बढ़ गया है, हमारा कर्जा बढ़ता जा रहा है,
0: और ऊपर से आपकी मेम साहब।
1: अरे तो क्या करूं, कार रखना तो गुनाह हो गया है।
0: गुनाह है कि नहीं पता नहीं, मगर जब से कार आई है घर का सुख चैन खत्म हो गया है।
2: साहब, साहब।
0: कौन है?
2: मैं हूँ साहब पप्पू।
1: जी बोलिए।
2: अब भाई आपको बुला रहे हैं।
1: कौन भाई?
2: नीचे खड़े हैं।
1: अरे भैया कौन भाई?
2: धीरे बोलिए साहब, धीरे बोलिए, हमारे भाई को ऊंची आवाज पसंद नहीं मालूम।
1: अरे तो कौन भाई?
2: आपका, हमारा, हम सबका, इस इलाके का भाई मालूम?
1: जी नहीं मालूम।
2: भाई यहाँ के दादा, हमारे गणेश पूजा कमेटी के प्रेसिडेंट, इस इलाके के नेता, चुटकियों में काम करते हैं साहब, चुटकियों में, पुलिस वुलिस सब उनके हाथ में है, इशारा किया बस मालूम सब काम फटाफट हो जाएगा।
1: मगर मैं क्यों जाऊं आपके भाई के पास?
2: मालूम, फिर से बता देता हूं साहब, चिल्लाना नहीं।
1: क्यों भाई, आप बोले तो 100 रुपए दे दिया, और इधर हम अपनी कार को लेके परेशान हैं, और ऊपर से आप।
2: हाँ हाँ, वही कार के लिए तो

0: भाई आपको याद कर रहे हैं नीचे।
1: क्या हुआ कार में?
0: कुछ नहीं मैडम, भाई को राजधानी जाना है पार्टी मीटिंग में, तो आपकी कार।
1: क्यों, टैक्सी है क्या? ये हमारी पर्सनल कार है।
0: पता है अपुन को, सब पता है।
1: तो क्यों मांग रहे हैं? एक सार्वजनिक कार है, कॉलोनी में किसी की तबीयत थोड़ी सी खराब हुई, हॉस्पिटल के लिए कार चाहिए, जैसे हमारी कार आने से पहले टैक्सी से ले जाते थे। मेम साहब की लॉन्ग ड्राइव के लिए हमारी कार चाहिए, यहाँ की नेता की नजर भी हमारी कार पर। अरे राजधानी जाना है तो जाएं, हमारी कार हम क्यों देंगे?
0: देखिए मैडम, भाई बड़ा खतरनाक आदमी है।
1: जो भी है क्या करेगा, दादागिरी दिखा रहे हो, धमकी दे रहे हो, जाओ बता दो हमारी कार हम नहीं देंगे, नहीं देंगे।
0: ठीक है, अभी पता पड़ जाएगा हमारे भाई कैसे आदमी है।
1: हाँ हाँ, हम भी

0: और उसी दिन आधी रात को इन लोगों ने हमारी गाड़ी को तोड़ फोड़ दिया। और जब मैंने पुलिस स्टेशन फोन किया हेलो पुलिस स्टेशन जी देखिए मैं रमाशंकर अवस्थी बोल रहा हूँ जी कॉलोनी से हाँ साहब रात को करना पड़ा जी नहीं नहीं कोई भागा नहीं है हमारी कार नहीं कार नहीं भागी है देखिए कुछ गुंडे हाँ हाँ गुंडों ने उसे डैमेज कर दिया है नहीं साहब किसी साहब की नहीं ऐसी की नहीं मेरी पर्सनल कार नहीं नहीं मैं साहब नहीं मैं जूनियर असिस्टेंट हूँ जी क्या सुबह आकर रिपोर्ट करूं हेलो हेलो हेलो
1: और आप चिल्लाते रहे थाने की मुंशी ने फोन रख दिया
0: अगर मैं क्लास वन ऑफिसर होता ना तो साथ ही साथ एक्शन हो जाता
1: तो
0: इसीलिए मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया कार बेच दूंगा और सुबह पुलिस स्टेशन जाने की जगह रेडियो स्टेशन जाकर सबसे पहुंच गया समझी
1: क्या

0: दोस्तों, झलकी बिन बुलाए मुसीबत अभी हमने सुना। झलकी के प्रतिभागी थे रामाशंकर की भूमिका में श्री एम ए रहीम, ऑफिसर की भूमिका में आलोक अवस्थी, पप्पू की भूमिका में प्रणव बनर्जी और सीना द्रिवी की भूमिका में श्रीमती नसरीन मुद्रवी, और इसे लिखा और प्रस्तुत किया था जगदीश अधिकारी ने।
1: दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं कुछ विज्ञान से जुड़ी खबरें कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका पर।
0: दोस्तों, विज्ञान से जुड़ी पहली खबर है, भारत के चीनी एक्सपोर्ट पर लगेगा कई साल का ब्रेक। अल नीनो, कम बारिश और एथेनॉल की बढ़ती मांग भारत के चीनी सेक्टर के लिए नई चुनौती बन सकती है। आने वाले कुछ सालों तक देश में चीनी का अतिरिक्त स्टॉक कम हो सकता है।
1: ये शार्क तैरती ही नहीं चलती भी है, नई प्रजाति से चौके वैज्ञानिक। एक ऐसी शार्क प्रजाति की पहचान हुई है जो अपने पंखों की मदद से कम पानी और रीफ पर चल सकती है।
0: हिंद महासागर में वेल का सबसे बड़ा जीवाश्म क्षेत्र मिला। वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया के पास हिंद महासागर में सैकड़ों वेल के जीवाश्म खोजे हैं।
1: नासा के रोवर ने मंगल ग्रह पर जटिल कार्बन यौगिकों के संकेत पाए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे मंगल पर प्राचीन जीवन की संभावनाओं को समझने में नई मदद मिल सकती है।
0: जून का स्ट्रॉबेरी मून इस बार सामान्य से अधिक बड़ा और चमकीला दिखाई दिया। यह नाम चंद्रमा के रंग के कारण नहीं बल्कि स्ट्रॉबेरी की फसल के मौसम से जुड़ा है। दोस्तों, ज्ञान की यह छोटी सी यात्रा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आज की विज्ञान पत्रिका ने आपकी जिज्ञासा को और बढ़ाया होगा।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने रिया। और दोस्तों, एक बार फिर चलते हैं कार्यक्रम तरन्नुम की ओर और सुनते हैं।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: दोस्तों, सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत अनुव जैन की, जिसे लिखा और संगीतबद्ध भी किया है अनुव जैन ने। और दोस्तों, उनकी आवाज में एक अलग ही सादगी है जो सीधे दिल से जुड़ जाती है ना ग्लोरी?
3: बिल्कुल रिया। दोस्तों, सुनते हैं उनका खूबसूरत सा गीत।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आप दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: ग्लोरी, क्यों ना गाने के सिलसिले को देते हैं कुछ पल के लिए विराम और बात करते हैं कुछ ज्ञान की, यानी सामान्य ज्ञान की।
2: दोस्तों, क्या आपको पता है दक्षिण भारत में स्थित नीलगिरी पर्वत अपनी अनोखी जैव विविधता, मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य और नीलकुरंजी फूलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
1: भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है।
2: पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है।
1: दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है।
2: भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। दोस्तों, आज की ज्ञान की बातों में बस इतना ही। तो चलिए अब अगली धुन से बुनते हैं कुछ और यादें। सुनते हैं आयुष्मान खुराना का ये गीत, जिसके संगीतकार है रोचक कोहली और इस गीत के खूबसूरत बोल लिखे हैं रोचक कोहली, गुरप्रीत सैनी और गौतम गोविंद शर्मा ने।
1: वैसे ग्लोरी, मुझे ना इस गाने से वो पहली बारिश की वो सौंधी सौंधी खुशबू, बचपन की गलियां और अपनों की याद आ रही है।
2: हाँ रिया, सही कहा। जब बारिश की पहली बूंदे जमीन को छूती है तो सिर्फ मिट्टी ही नहीं महकती बल्कि यादें भी ताजा हो जाती है।
1: बिल्कुल दोस्तों, उन्हीं यादों के साथ सुनते हैं ये प्यारा गीत आयुष्मान खुराना की आवाज में।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: खिड़की से आती ठंडी हवा, हाथ में चाय का प्याला और बैकग्राउंड में चलता एक ऐसा गाना जो सीधे दिल को छू जाए।
3: और दोस्तों, अगर बाहर का शोर थमा हुआ हो और मन बिल्कुल शांत हो, ऐसे मौसम और ऐसे माहौल के लिए इससे कोई बेहतर धुन हो ही नहीं सकता, है ना ग्लोरी?
2: बिल्कुल दोस्तों, सुनते हैं ये गीत जिसे अपने स्वर दिए हैं सोहम नाइक ने और

0: दोस्तों, आज की हमारी दिलचस्प बातें, प्यारे गाने, मुस्कुराहटों से भरी ये सफर बस यहीं तक।
1: लेकिन याद रखिए, हर शाम का एक सवेरा होता है और हर अलविदा की एक नई मुलाकात होती है। इसी के साथ अब दीजिए हमें अनुमति, मुझे रिया प्रियांशी नाथ को
0: और मुझे ग्लोरी विनीशा नाथ को,
2: मिलेंगे फिर एक नई कहानी, नए गानों और ढेर सारी खुशियों के साथ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी। मीडियम वेव 396.8 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। 6 बजने को है अब समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
2: I came here because I believe that Seychelles occupied a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted to join you as you celebrate 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
1: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशेल्स हिंद महासागर में द्वीपों के समूह के

0: रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
1: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। अमरीका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुई ड्रोन हमले के जवाब में की गई। भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है। अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया। यह भारत का इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहला पदक है। भारत ने आयरलैंड के साथ 2 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला के दूसरे और अंतिम मैच में बेलफास्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 4 मैच में 3 जीत के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। जिले की चिट्ठी में सुनिए जशपुर जिले की चिट्ठी। आलेख है तरुण प्रकाश शर्मा का।
3: श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं जशपुर जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देश भर में 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में योजना के प्रचार प्रसार के लिए ग्राम सभाओं, चौपालों, पोस्टर बैनर, मुनादी, रथ प्रचार और डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। वहीं सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, स्व सहायता

0: स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और मितानिन घर घर जाकर दवा पिलाएंगी। इस अभियान के तहत जिले में 1,15,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। श्रोताओं, जशपुर जिला अब रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। केंद्र सरकार ने धरमजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया है। करीब 292 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन जशपुर को पहली बार राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। यह रेल नेटवर्क रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ से जशपुर जिले के पत्थलगांव होते हुए झारखंड के लोहरदगा तक विकसित होगी। इससे किसानों, व्यापारियों और युवाओं को लाभ मिलेगा, साथ ही क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्रोताओं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 20 जून को जशपुर जिले के कुनकुरी स्थित कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र में आयोजित जैविक किसान मेला और प्राकृतिक तथा जैविक खेती कार्यशाला में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि ही विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला है। श्री साय ने कहा कि आधुनिक कृषि तकनीक, बेहतर फसल चयन, प्राकृतिक और जैविक खेती तथा मजबूत बाजार व्यवस्था से किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने का आह्वान किया। अपने जशपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने बगिया से जश लर्न कार्यक्रम का जिला स्तरीय शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि जश लर्न कार्यक्रम बच्चों की गणितीय समझ विकसित करने, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने तथा सीखने के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस कार्यक्रम को अब जिले के सभी विकासखंडों तक विस्तारित किया जाएगा। जशपुर पुलिस ने 24 जून को जिले के सभी 766 गांवों में एक साथ जन चौपाल लगाकर हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत को कम करने और यातायात नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जशपुर पुलिस द्वारा हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत इन गांवों में जन चौपाल, विशेष ग्राम सभा और हेलमेट जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। श्रोताओं, जशपुर वनमंडल ने 19 जून को एक ही दिन में 2,00,000 से अधिक सीड बॉल के प्रसार और रोपण कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में वनमंडल को इसका प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बीज गोला बनाबो, जशपुर के जंगल ला बढ़ाबो अभियान में ग्रामीणों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने भागीदारी निभाई। इस अभियान का उद्देश्य प्रकृति संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और हरित आवरण में वृद्धि करना है। श्रोताओं, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत जिले में 11 बसें चलाई जा रही हैं, जिससे दूरस्थ गांव में रहने वाले लोगों को आवागमन में सुविधा हो रही है। इन बसों का संचालन कैलाश गुफा से बगीचा, सन्ना से चंपा, रनपुर से कांसाबेल, दोकड़ा से दुलदुला, जशपुर से हर्री, पत्थल गांव से नारायणपुर, दुलदुला से अबीरा जैसे विभिन्न मार्गों पर किया जा रहा है। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जिले की चिट्ठी में अभी आप सुन रहे थे जशपुर जिले की चिट्ठी।

0: समाचार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। मन की बात कार्यक्रम मा प्रधानमंत्री हा देशवासी मन ले जल संरक्षण के संबंध मा वर्षा जल के एक एक बूंद ला बचाए के करीन अपील। ए कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के आने आने जगह मा घलो सुनेगीस। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर मा शून्य ले 5 बछर तक के लईका मन ला पोलियो के दवाई पिलाई गीस। और मौसम विभाग हा अवैया 3 दिन तक बस्तर संभाग मा 1-2 जगह मा मध्यम ले भारी वर्षा हुए के चेतावनी देहे। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा कहिन हे कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन मा ध्यान केंद्रित करत हुए भारत समुद्र ले लेके आकाश तक ज्यादा सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनत हे। आकाशवाणी ले मन की बात कार्यक्रम मा श्री मोदी हा कहिन हे कि जून महीना मा स्वदेशी C-295 विमान के पहली उड़ान के संग ही भारत हा विमान क्षेत्र मा एक बड़का सफलता हासिल करे हे। श्री मोदी हा कहिन हे कि इही महीना कोलकाता मा 3 युद्धपोत के जलावतरण करेगीस और DRDO हा लंबा दूरी के क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण करे हे। प्रधानमंत्री हा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के चर्चा करिन जेला दुनिया भर मा मनाएगीस। ए बार ए आयोजन 2,500 ले ज्यादा जगह मा होइस। भारत मा करोड़ों लोगन मन हा योग दिवस मा भागीदारी दिन। श्री मोदी हा अहमदाबाद मा विश्व योगासन चैंपियनशिप मा पदक विजेता एथलीट ला बधाई दिन। प्रधानमंत्री हा पश्चिम एशिया मा युद्ध के दौरान उखर अपील मा देशवासी मन के समर्थन और सहयोग बर आभार जताइन। प्रधानमंत्री हा देशवासी मन ले जल संरक्षण के संबंध मा कहिन कि वर्षा जल के एक एक बूंद ला बचाए जाना चाहिए। उन्होंने कहिन कि कैच द रेन अभियान मा जरा भी ढिलाई नहीं होना चाहिए। मन की बात कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के आने आने जगह मा सुनेगीस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा रायपुर स्थित अपन निवास कार्यालय मा जनप्रतिनिधि और मनखे मन संग ए कार्यक्रम ला सुनीस। ए बेरा मा मुख्यमंत्री हा कहिन कि मन की बात आज जनता और नेतृत्व के बीच संवाद के सशक्त माध्यम बन चुके हे। प्रधानमंत्री के विचार देशवासी मन ला प्रेरित करे के संगे संग समाज मा सकारात्मक परिवर्तन के रद्दा घलो प्रशस्त करत हे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर मा शून्य ले 5 बछर तक के लईका मन ला पोलियो के दवाई पिलाएगीस। आज जौन लईका मन दवाई पिए ले छूट गए हे ओमन काली और परम दिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिन घर घर जाके दवाई पिलाही। ए अभियान के तहत प्रदेश मा 35,98,000 ले ज्यादा लईका मन ला पोलियो की खुराक पिलाए के लक्ष्य रखे गए हे। ई बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हा प्रदेशवासी मन ले अपील करे हे कि ओमन अपन शून्य ले 5 बछर तक के हरेक लईका मल्ला पोलियो के 2 बूंद दवाई जरूर पिलाए। श्री साय हा अपन संदेश मा कहिन कि ए दवाई नहीं लईका मन के स्वस्थ सुरक्षित और उज्जवल भविष्य के सुरक्षा के संकल्प हे। ओमन हा सबो मन के मन ले आग्रह करे हे कि ओमन तीर तखार घलो ए सुनिश्चित करे कि कोनो भी लईका पल्स पोलियो के 2 बूंद ले छूटे झन। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हा विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण ला साकार करे मा गांव के मुख्य भूमिका के उल्लेख करिन। नई दिल्ली मा राष्ट्रीय ग्राम विकास सम्मेलन मा श्री चौहान हा कहिन कि राष्ट्रीय विकास मा तेजी लाए बर विकसित भारत ग्रामीण योजना मा अवैया राज्य मन के योगदान के संग 1,51,000 करोड़ रूपया ले ज्यादा के प्रावधान करे गे हे। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 बछर पूरा होए मा छत्तीसगढ़ मा काली 29 जून ले सहकारिता सप्ताह मनाए जाही। 6 जुलाई तक चलैया इस सप्ताह के दौरान प्रदेश भर मा सहकारिता ला बढ़ावा देबर आने आने कार्यक्रम आयोजित होही। रायपुर मा अवैया 3 और 4 जुलाई के राज्य स्तरीय चिंतन शिविर सहकार मेला और संगोष्ठी के आयोजन करे जाही। एमा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप मा शामिल होही। सहकार मेला मा सहकारिता क्षेत्र के उपलब्धि और सफल मॉडल के केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह डाले अन्न भंडारण योजना के तहत प्रदेश के 9 पैक्सों में गोदाम निर्माण के काम के भूमि पूजन करे जाही। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा काली 29 जून के नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वां बैठक में एनीमिया मुक्त भारत अभियान पर परिचारणगत दिशा निर्देश जारी कर ही। ए शुभारंभ एनीमिया मुक्त भारत ले एनीमिया मुक्त भारत अभियान में परिवर्तित होए के कारण एनीमिया के विरूद्ध देश के लड़ाई में एक जरूरी मील के पत्थर साबित होगी। ए अभियान में हीमोग्लोबिन परीक्षण आयरन अल्पता एनीमिया के प्रोटोकॉल आधारित उपचार व्यवस्थित फॉलोअप और लाभार्थी के संदर्भ देना और स्वास्थ्य आहार संबंधी आदत ऊपर केंद्रीय परामर्श देना शामिल है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप

0: अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा था छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगु बाढ़ बाचे समाचार गोती। पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण अभियान के तहत डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कार्यक्रम ला लेके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के वर्चुअल बैठक हुई। ए बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घलो शामिल हुई। ए बेरा में मुख्यमंत्री कहिन है कि डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण ले न केवल कार्यकर्ता के बल्कि जनप्रतिनिधि मन के घलो डिजिटल और तकनीकी ज्ञान बाढ़ी। बैठक ला पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और संगठन महामंत्री पवन साय घलो संबोधित करी। उन्हें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के प्रदेश प्रभारी जगन्नाथ पाणिग्रही बैठक में ए अभियान के विस्तृत रूपरेखा और उद्देश्य के जानकारी साझा करें। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पेंशनर के हित में बड़का फैसला सुनात हुए छठवा और सातवां वेतन आयोग ले जुड़े 59 महीना के बकाया एरियर्स के भुगतान के रद्दा साफ कर दे है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल के खंडपीठ राज्य सरकार के रीट अपील खारिज करत हुए एकल पीठ के आदेश ला बरकरार राखी। अदालत कि इनकी दो राज्य के बीच वित्तीय समन्वय या सहमति के अभाव पेंशनर के वैध अधिकार ला प्रभावित नहीं कर सके। सरगुजा जिला के रामगढ़ में काली 29 जून ले दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव के आयोजन करे जाही। महोत्सव के शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करही। महोत्सव के पहली दिन छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति ऊपर आधारित आने आने लोक नृत्य और लोकगीत प्रस्तुत करे जाही। जांजगीर चांपा जिला के ग्राम कोरबी में आज हुए एक सड़क हादसा में 3 लोगों के मौत मौका में ही होगी। जानवा के मुताबिक बलौदा थाना क्षेत्र में अवैया भारतमाला रद्दा में मॉर्निंग वॉक में निकले 3 लोगों मल्ला अज्ञात वाहन अपन चपेट में ले लीस। मृतक में 2 डोंगरी और 1 कोरबी गांव के रवैया रहीस। हादसा के बाद चालक फरार होगी। उन्हें शक्ति जिला के भेड़ीकोना गांव में चारपहिया वाहन मोटरसाइकिल सवार युवक मल्ला टक्कर मार दीस। ए हादसा में 1 युवक के मौत होगी। उन्हें 1 आने युवक घायल होगी। इस बीच बेमेतरा के ग्राम राउरपुर में अचानक कच्चा दीवार के ढह जाए ले 2 बहिनी के मौत होगी। उन्हें 1 माई लोगिन घायल होगी। जानवा के अनुसार दोनों लड़का घर के आंगन में बैठे रही। इसी दौरान दीवार भरभरा के गिर गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डहारले हाल ही में पद्मश्री ले सम्मानित दंतेवाड़ा के समाज सेवी डॉक्टर बुधरी ताती के आकाशवाणी डहारले ले गए साक्षात्कार काली 29 जून के प्रसारित करे जाही। ए कार्यक्रम बिहनिया 10 बजे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र डहारले प्रसारित करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सबो केंद्र रिले करही। मौसम के हाल। मौसम विभाग अवैया 3 दिन तक बस्तर संभाग में 1-2 जगह में मध्यम ले भारी वर्षा होए के चेतावनी दे है। उन्हें कुछ जगह में गरज चमक के संग गाज गिरे की संभावना जता है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी आकाशवाणी समाचार ला बताएं कि आज ले अवैया 7 दिन तक प्रदेश में वर्षा की गतिविधि बढ़ी। उन्हें उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में ज्यादा वर्षा की संभावना है। इस बीच आज बस्तर के संग प्रदेश के कतकोन जगह में हल्का ले मध्यम वर्षा होए की खबर है। जगदलपुर में गरज चमक और तेज हवा के संग जमके वर्षा हुई। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप पर ऑनलाइन आवेदन करैया 7 जुलाई ले करे जा सकत है। ए योजना के तहत एमटेक डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश लेवैया चयनित छात्र मनला हर महीना 50,000 रूपया फेलोशिप दे जाही। ट्यूशन फीस के पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करही। आखिर मां प्रमुख समाचार एक घौं फेर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देशवासी मनले जल संरक्षण के संबंध में वर्षा जल के एक एक बूंदला बचाए के करीन अपील। ए कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के आने आने जगह में घलो सुनेगी। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में शून्य ले 5 बछर तक के लयिका मल्ला पोलियो के दवाई पिलाएगी। और मौसम विभाग वैया 3 दिन तक बस्तर संभाग में 1-2 जगह में मध्यम ले भारी वर्षा होए के चेतावनी दे है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जुहार।

0: प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रत्यपादयत् यत् स्वदेशी प्रतिरक्षोत्पादने सविशेषं बलं विधाय भारतं समुद्रतः आकाशपर्यन्तं उत्तरोत्तरं सुरक्षितं आत्मनिर्भरं च भवति। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना देशस्य नागरिकाणां प्रति कार्तज्ञभावं ज्ञापितम्, यतोहि जनैः स्वर्णक्रयणं विदेशयात्रा च किञ्चित् कालं यावत् स्थगिता। सेशेल्स् देशस्य विक्टोरिया नगरे आयोजितायाः प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्तायाः अनन्तरं भारत सेशेल्स् देशयोर्मध्ये स्वास्थ्यं वित्तं समेत्य अन्तरिक्षादि विविध विषयेषु महत्वपूर्ण सहमति पत्रेषु हस्ताक्षराणि अभवन्। प्रशासनेन भारतीय नागरिकाः सञ्चेतिताः यत् ते सर्वेषाम् आवश्यकानां यात्रापत्राणां पूर्तिकया विना कैलाश मानसरोवर यात्रां न आरभेरन्। पश्चिमेशिया देशे सुरक्षा स्थितिः तीव्र गत्या अपक्षीयते, यत्र संयुक्त राज्य अमेरिका ईरानः उभावपि परस्परं नूतनानि सैन्य आक्रमणानि अकुरुताम्। अपि च आईसीसी महिला T20 विश्वकप स्पर्धा मालिकायां भारतीय महिला दलम् अद्य लंडन नगरे ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिशिष्ट। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सविशेषं प्रत्यपादयत् यत् भारतेन जून मासे वैमानिकी क्षेत्रे एका महती सफलता अर्जिता, यत्र स्वदेश निर्मितस्य मेक इन इण्डिया C-295 सैन्य परिवहन विमानस्य प्रथमं परीक्षण उड्डयनं सफलतापूर्वकं सुसम्पन्नम्। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे जनान् सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा इयं सूचना प्रख्यापिता यत् सम्प्रति एतादृशानि चत्वारिंशत् विमानानि भारतदेशे एव विनिर्मीयन्ते।
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदिना गदितं यत् देशे अन्ये केचन महत्वपूर्णाः प्रयासाः विधीयन्ते। अस्मिन्नेव क्रमे देहल्यां स्थितः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डेटा साइंस इत्यादिषु आधुनिक विषयेषु BTech पाठ्यक्रमस्य शुभारम्भं विदधाति।
1: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में BTech प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी सहर्षं न्यगादीत् यत् अद्य भारतीय संस्कृतिः विश्वस्मिन् हि विश्वे प्रसरति। श्रीमोदी गौरवान्वितः अस्ति यत् भारतेन अस्मिन् मासे देशस्य सुरक्षायाः

0: स्वदेशी है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: मोदिना अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य अपि उल्लेखो विहितः तेन अहमदाबाद नगरे आयोजितायाः विश्व योगासन प्रतियोगितायाः विषये कथितं यत् अस्यां भारतेन द्वयधिकैकशत स्वर्ण पदकैः सह आहत्य चतुर्दशोत्तर एकशत पदकानि विजितानि। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रतिपादितं यत् राष्ट्रनिर्माणे जनसहभागितायाः शक्तिः भारतस्य कृते एका महती सम्पत्तिः वर्तते।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: अनेन सहैव श्रीमोदिना प्रोदीरितं यत् आगामि गणेशोत्सवाय गणपति बप्पा भगवतः प्रतिमा अनिवार्यरूपेण अस्यैव देशस्य मृत्तिकायाः भवेत्, सा च स्थानीय कुम्भकारैः शिल्पीभिः विनिर्मिता स्यात्। तेन मूर्तिनिर्मातारः अपि अनुरुद्धाः यत् ते मृण्मय मूर्तीणां निर्माणाय एव प्राथमिकतां दद्युः। स्वीय सम्बोधनस्य चरमे सोपाने प्रधानमन्त्रिणा जलसंरक्षणस्य विषये च बलं प्रदत्तम्। तेन कथितं यत् वर्षाजलस्य एकैकोऽपि बिन्दुः संरक्षणीयः वर्तते। श्रीमोदिना विशेषरूपेण गदितं यत् जलसंरक्षणार्थं कैच द रेन अभियानस्य वेगः मन्दो न भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिः पैट्रिक हर्मनी च अद्य अपराह्णे विक्टोरिया नगरे द्विपक्षीय वार्ताम् अकुरुताम्। उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सहयोगस्य सम्पूर्णक्षेत्राणां समीक्षां कृतवन्तौ। सहैव पारस्परिकहितस्य क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रिय विषयेष् च स्वस्व मनोगतं विनिमयी कृतवन्तौ। तस्मात् पूर्वं सेशेल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्रमोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मान गार्ड्स ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्त। संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवोचत् यत् अयं गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन सम्मानः मम कृते अथ भारतस्य नागरिकाणां कृते परम गौरवस्य विषयो वर्तते। प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् द्वयोर देशयोर दूरत्वं न्यूनीकर्तुं डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रभावपूर्णं माध्यमं वर्तते। तेन एतदर्थं प्रसन्नता प्रदर्शिता यत् अद्य देशे भारतस्य यूपीआई तन्त्रस्य प्रवर्तनाय एकस्मिन् सहमति पत्रे हस्ताक्षरं क्रियमाणमस्ति। विदेश मन्त्रालयेन भारतीय नागरिकाः परामृष्टाः यत् सम्पूर्ण यात्रायाः कृते आवश्यकानि सर्वाणि यात्रापत्राणि विना कैलाश मानसरोवर यात्रा न क्रियन्ताम्। केचन भारतीय तीर्थयात्रिणः नेपाले अवरुद्धाः अभवन्, सहैव साहाय्यार्थं प्रार्थितवन्तः। एतां घटनामुद्दिश्य विदेश मन्त्रालयेन एषः परामर्शः प्रख्यापितः। पश्चिमेशिया क्षेत्रे सुरक्षा स्थितिः पुनरपि गभीरा जाता। अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये विद्यमानः युद्धविरामः खण्डितः। गतकतिपय होरासु च उभय पक्षाभ्यां परस्परं नूतनानि सैन्याक्रमणानि कृतानि। तेहरानेन वाणिज्यिक तैलवाहकपोतस्य उपरि ड्रोणाक्रमणं विहितमिति आरोपं विधाय अमेरिकया होर्मुज जलसन्धेः समीपे स्थितेषु दशसु ईरानी सैन्यस्थानकेषु वायुप्रहाराः कृताः। अद्य महिला विंशति प्रतिविंशति विश्वकप क्रिकेट स्पर्धायाः समूह ए इत्यस्य चरम स्पर्धायां भारतं ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिशिष्ट। एषा स्पर्धा लंडन नगरस्य लॉन्स क्रिकेट क्रीडांगणे भविष्यति। स्पर्धा भारतीय समयानुगुणं सायं 7:30 वादने आरभ्यते। इति वार्ताः।

0: मिनी वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। हम आपको बता दें श्रोताओं, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का आंखों देखा हाल आप सुन सकते हैं अभी यानी 6:30 से। इसे आप मीडिया वेव पर सुन सकते हैं। इसका प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है गोंडी समाचार बुलेटिन।
1: गोंडी समाचार बुलेटिन तंगना सावित्री नाग नेटा मूल समाचार छत्तीसगढ़ संग देश भर तक 9 जुलाई तिना लागू आयना जी रांधी योजना केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय त स्थापना तंग देता पूरा अज तक छत्तीसगढ़ तक ना तिना पाड़नो सहकारिता सप्ताह एक जैसा सामान्य से कम मुठो का आशंका तिना उड़तो कृषि विभाग छत्तीसगढ़ तो और किसानी तीन मौसम का अनुरूप फसल को इतना इतो सलाह राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान से नेल प्रदेश तक शून्य तिना कोई एंग जैसा एवना पिला किन उपी तीन और पोलियो का दवाई इधर समाचार कुंडे विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देश भर तक 9 जुलाई तिना लागू आयनत छत्तीसगढ़ तक योजना का प्रचार प्रसार तलाय ग्राम सभा चौपाल पोस्टर बैनर मुनादी रथ प्रचार और डिजिटल माध्यमिना उपयोग की मुतुर अगाये सरपंच सचिव रोजगार सहायक स्व सहायता समूह तमुते जनप्रतिनिधि और स्थानीय सामाजिक संगठन वेंडे माने किन योजना तक कबूर ई मुतुर इदिना अलावा ग्राम सभा और जनपद पंचायती न संघ जिला स्तर तक प्रशिक्षण वेटका और ग्राम सभा आयोजित की मुतुर इतना माध्यम ते नाटिनोरिन योजना ता और प्रावधानी और लाभ तक कबूर ई मुतुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के तौर की 9 जुलाई तिना लागू आयना लागू आया दायमुता वीबीजी रामजी योजना ग्रामीण आजीविका रोजगार और आत्मनिर्भर नार दिशा ता और ऐतिहासिक पहल सिद्धाता श्री साय के तौर की इस योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना विकसित भारत ता संकल्प तीन पुनः गति सो आत्मनिर्भर और समृद्ध ग्रामीण भारत ता निर्माण ता सशक्त आधार बने माता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय तक आयोजित राज्य मंत्री परिषद बैठका विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण योजना छत्तीसगढ़ का प्रारूप का अनुमोदन कित्तुर योजना ताकेट पात्र ग्रामीण परिवारी न वयस्क सदस्य किन हर वित्तीय वर्षा 125 दिनांक रोजगार ता गारंटी इनुर इदिना के जल संरक्षण प्रकृति संसाधन प्रबंधन ग्रामीण आधारभूत संरचना निर्माण आजीविका मूलक परिसंपत्ति त विकास संग ग्रामीण क्षेत्रीय नगर रोजगार तक अवसर सृजित किनोर इद योजना ताकेट चालू वित्तीय वर्ष लाए राज्य बजट तक 4000 करोड़ रुपया का प्रावधान कितक मिले अगर मंत्री परिषद अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना मूर किनद निर्णय कोर इद योजना ताकेट ग्रामीण क्षेत्रीय नगर हथकरघा बुनाई सिलाई हस्तशिल्प केंद्र संग दलहन तिलहन प्रसंस्करण इकाई राइस मिल डेयरी और सेवा केंद्री न स्थापना कीनुर इदिनाकेट कोल्ड स्टोरेज सोलर ड्रायर कृषि उपकरण मरम्मत अटल डिजिटल केंद्र विपणन केंद्र और आपूर्ति केंद्र वेंडे ग्रामीण क्षेत्रीय नगर स्थापित कीनुर अगर ओंड और फैसला तक मंत्री परिषद छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति का प्रारूप का अनुमोदन किता इस नीति का माध्यम से राज्य तक उपलब्ध कृषि अवशेष नगरीय ठोस अपशिष्ट पशुधन अपशिष्ट और जैविक संसाधनी त वैज्ञानिक प्रबंधन की अधीन कंप्रेस्ड बायोगैस ईंधन तक बदला किन्नुर प्रदेश तक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू कीना तैयारी मूरत्ता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के तौर की यूसीसी त प्रारूप तैयार की लाए उच्चतम न्यायालय त सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई न अध्यक्षता तक गठित कमेटी तक हर वर्ग त नर्मा अंज रिपोर्ट तैयार की न केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय त स्थापना त अंग वर्षा पूरा तक छत्तीसगढ़ तक नाड 29 जून तीना सहकारिता सप्ताह पाड़नो 6 जुलाई एवना चले मायनत इस सप्ताह तछुट देश भर तक सहकारिता तीन प्रतिलाय और कार्यक्रम आयोजित आयनत इचुटिन प्रदेश त 2575 पेक्स समिति संघ और सहकारी संस्था नगर सदस्यता अभियान किसान क्रेडिट वितरण वृक्षारोपण और किसान संगोष्ठी आयोजित किनोर अगाय सहकार मेला तग सहकारिता क्षेत्र त उपलब्धि और सफल मॉडली न प्रदर्शन किनोर सहकारिता सप्ताह तछुट बस्तर संभाग ता कोंडे जिला विकासखंड और सहकारी समिति नगर विशेष कार्यक्रम और जनभागीदारी अभियान चला किनोर इचुटेन किसानी

सहायता समूह, दुग्ध उत्पादक, मत्स्य पालक, वनोपज संग्राहक, स्थानीय हस्तशिल्पकारों ना भागीदारी सुनिश्चित की। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई अत्ता 25 जून ते नई दिल्ली तक केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण और रसायन उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा संकालित तुर इटुटेन जन स्वास्थ्य औषधि और उर्वरक क्षेत्र संघ और विभागीय विषय न चर्चा अत्ता वेटक तक मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री कबूल इतुर की राज्य तक खाद्य वितरण व्यवस्था तीन नेल उड़ मुतुर कालाबाजारी और जमाखोरी तक खिलाफ कार्रवाई की मुतुर ताना संग राज्य सरकार नैनो यूरिया और नैनो डीएपी त उपयोग तीन प्रसिद्धि मुतुर इसी नमूने 24 जून ते मुख्यमंत्री नई दिल्ली त प्रवास तचुट केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह संग कालिसमन छत्तीसगढ़ विशेषकर बस्तर त विकास भूतो त और जन कल्याण त चर्चा कितुर इचुटन उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा वेण मत्तुर मुख्यमंत्री केतुर की बस्तर तक सड़क शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल और संचार सुविधा त विस्तार की मुतुर तान संग सहकारी सेवा मानिक एवना एवितिय मुतुर और छत्तीसगढ़ तक अखिल भारतीय संस्थान त स्थापना त प्रस्ताव वेण तास्तुर मुख्यमंत्री केतुर की बस्तर विकास और पर्यटन त पूना केंद्र त रूप ते उभरे माय मुता इचुटन केंद्रीय मंत्री राज्य तीन हर संभव सहयोग तप आश्वासन इतुर अगर मुख्यमंत्री नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन तक संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी त प्रारंभिक परीक्षा त सफल अतुर ट्राइबल यूथ हॉस्टल तुर विद्यार्थी संघ कालिसमंज ओना उत्साहवर्धन कितुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य तक जन सुरक्षा तीन उड़सो बहुमंजिली भवन कोचिंग संस्थानी होटली और व्यवसायिक प्रतिष्ठानी न सुरक्षा व्यवस्था त विशेष ऑडिट की न निर्देश इतुर मुख्यमंत्री मुख्य सचिव इन राज्य भर तक अग्नि सुरक्षा भवन सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्था त जांच की लायक इतुर इदिना केटकोंडे जिला नगर विशेष निरीक्षण अभियान चला किनोर मुख्यमंत्री केतुर की सुरक्षा मानिक न अनदेखी किनोर किन नियमानुसार कार्रवाई किनोर महिला और बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका किन लाए साड़ी त केंद्रीकृत खरीदी व्यवस्था तीन माफी तुर इधर गिसड़ी असल लाए निर्धारित राशि सीधा कर्मचारी लोरा बैंक खाता तक अंतरित किनोर महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े विभाग तीन निर्देश इतना की साड़ी त डिजाइन मुन्ने लेके मनी बाड़ित के प्रदेश तक एक रूपता मनी अगर गिसड़ी त कपड़ा आयोग के विकल्पी न चयन स्थानीय स्तर तक तमा के कार्यकर्ता और सहायिका किया पर दीता इस वर्ष अलनीनो त प्रभाव त कारण सामान्य ते कम मुसूर त आशंका तीन उड़तो कृषि विभाग छत्तीसगढ़ तुर किसानी किन मौसम त अनुरूप फसल पोतना सलाइ तुर विभाग व्यंजी त जगह दलहन और तिलहन फसल त केती तीन परिस्थिति लाइतुर कृषि विभाग त अनुसार कम मुसूर त संभावित परिस्थिति नग अरहर मूंग पुपुल पेरमी मूंग मूंगफली रामलुंग कोदो कुटकी अर गोरा लेके तो फसल निकलने ला विकल्प साबित आता कृषि विशेषज्ञ न अनुसार दलहन और तिलहन फसल कम लागत ते नला उत्पादन इना संग भूम त उर्वरक शक्ति तीनवेड सुधरा के नग निका भूमिका इनद राज्य सरकार कम एर तव क्षेत्रीय नग व्यंजी त पलटा दाड़ और नुंक त फसल त केती किनोर किसानी किन 15,000 रूपया प्रति एकड़ त प्रोत्साहन राशि इना फैसला किता इस फसली न असनल प्रधानमंत्री आशा योजना त के समर्थन मूल्य ते किनोर राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान ते निन प्रदेश तक शून्य तिना एंग वर्षा एवना पिला किन पोलियो त दवाई उपितिनो अगर शेष पिला किन नाड़ और मनाटी स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोरा अलावा मितानीन लोक लोक अंज दवाई उपितिनाव दंतेवाड़ा जिला तगर नेन तीना 30 जून एवना 41,000 तदिदे पिलाकिन पोलियो रोधी दवाई उपितिनो लग तास्तक मंदे अभियान तमुने दिनाम नेन जिला ता और क्षेत्रीय नग 329 पोलियो बूती नग पिलाकिन पोलियो ता दवाई उपितिनोर अभियान ता संचालन ता लाए 745 कर्मचारी ना ड्यूटी वार्तक मंदे अगर उड़े लाए पर्यवेक्षक ता लाए 47 पर्यवेक्षक की किन जिम्मेदारी इतक मंदे नगरीय प्रशासन और विकास विभाग प्रदेश त कोंडे नगरीय निकाय न मरम्मत और नला तासल 22 करोड़ रूपया त दिब्बे आपात निधि जारी किता विभाग ताके चालू वित्तीय वर्ष त प्रथम तिमाही अप्रैल 3 जून लेंस तलाय इद राशि जारी कितद मिलते इदिना के 14 नगर निगमी किम 13 करोड़ 76 लाख रूपया जारी कितुर अगर 56 नगर पालिका किन लाए 5 करोड़ 18 लाख रूपया स्वीकृत कितद मिलते विभाग 124 नगर पंचायती किन लाए वेंडे मुंड करोड़ 66 लाख रूपया जारी किता प्रदेश सरकारी स्कूली नगर वायनस शैक्षणिक सत्र 8 अप्रैल तिना मूर आयनत स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव केतुर की पिला किन 8 अप्रैल तिना पाठ्य पुस्तक गणवेश और साइकिल तू सनोर और केतुर की इस सत्र उबाय मूर कीना उद्देश्य पाठ्यक्रम तीन समय ते पूरा कीना अर

सीधा परीक्षा परिणाम नग सुधार ततनद मिले। स्कूल शिक्षा मंत्री के तुर की उन जुलाई तीना उनके गुर्जी लोरा अर कर्मचारी किन लाए वीएसके एप तक पंजीयन अर उपस्थिति अनिवार्य आयनत जुलाई ले वेतन एप तक दर्ज उपस्थिति ता आधार ते इनोर। छत्तीसगढ़ तक निजी विश्वविद्यालय नग प्रवेश पोतन और विद्यार्थी अर अभिभावकों लाए निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग गाइडलाइन जारी की सित्ता आयोग केता की दाखिला ता मुन्ने विश्वविद्यालय ता मान्यता।

अभिभावकांलाई निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग गाइडलाइन जारी की सित्ता आयोग केता की दाखिला ता मुन्ने विश्वविद्यालय ता मान्यता राजपत्र तक प्रकाशन संबद्धता और पाठ्यक्रम नीति ता मंजूरी ता जांच की मुड आयोग केता की निजी विश्वविद्यालय अपना के अभिभावकांलाई निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग गाइडलाइन जारी की सित्ता आयोग केता की दाखिला ता मुन्ने विश्वविद्यालय ता मान्यता राजपत्र तक प्रकाशन संबद्धता और पाठ्यक्रम नीति ता मंजूरी ता जांच की मुड आयोग केता की निजी विश्वविद्यालय अपना के

0: सेवा इत्तुर। इंद्रावती नदी कचार विकास प्राधिकरण त पूना अध्यक्ष शरद अवस्थी के तुर की इंद्रावती इंद्र त संरक्षण ए त संकट त समाधान और बस्तर तग सिंचाई परियोजना तीन गति लय भूतो किनोर। इंद्रावती नदी बचाओ अभियान तुर सदस्य लोरा संघ वेटक तग और केतुर की मटनार और देउर गाँव बैराज तग समय ते पाड़नोर। वेटक तग इंद्रावती इंद्र त एर दायन दिन नापा किला उड़ीसा सीमा था बेजा पदर तग गेंज स्थापित कीना इंद्र तग दायनद एर तीन केपनूर अद उसको तीन कुंजी तीना और गैर मानसूनी अवधि तग छत्तीसगढ़ तीन ताना हिस्सा था एर इलाय पहल कीनद सहमति बने मत्ता। नीति आयोग तोर केंद्रीय प्रभारी अधिकारी पी नरहरी अपुना रेन दिनम तक प्रवास चुटकुंडा गाँव जिला तक शासन तक और महत्वाकांक्षी योजना तक विकास भूतो तक निरीक्षण कितोर। इचुटेन श्री नरहरी किसानीर किनलाय राज्य तीना दुआते एक्सपोजर विजिट आयोजित किलाय कितोर। बारिश के किसानीर अपुना उत्पादन असनोरीन संग सीधा जुड़े मयीर तान संग पिला अर नेका पताओ पोटते मदनाव मुते किन इमुता सेवा ता कबूड वेंट पितोर। श्री नरहरी शामपुर स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का निरीक्षण कितोर। कोंडागांव जिला तक विधायक लता हुसैनडी विभिन्न ग्राम पंचायती नग 19 विकास बूथों तक भूमि तक सेवार्जी किता। ये बूथों तक उनके लागत 1,66,00,000 रुपया तक दिब्बे मंदे इगर सड़क स्कूल भवन सामुदायिक भवन और आधारभूत सुविधा ते जुड़े मत्ता बूथों मंदे। इस मौके विधायक केता की इवेटे ग्रामीण क्षेत्र नग सुविधा का विस्तार आता। दंतेवाड़ा जिला ता बांसी कमालूर रेल सेक्शन तक दोहरीकरण तक बूथों चले मायमुता इदिना कारण किरंदूर दायनद रेन प्रमुख ट्रेनी न परिचालन 26 जून तिना रेन जुलाई एवं स्थगित मदनद। अगर विशाखापट्टनम तिना किरंदूल त नडम चले मायनद नाइट एक्सप्रेस रेन जुलाई एवं रद्द मंदनद। मलदाम पे इध ट्रेन मुन जुलाई एवं किरंदूल तिना विशाखापट्टनम एवं वावो इति नगर रेंडासू ट्रेन दंतेवाड़ा स्टेशन तक चले मायनत। दंतेवाड़ा जिला तक वायनत जुलाई तीना पौधारोपण अभियान चला किनोर। इस संबंध तक जिला पंचायत तोर मुख्य कार्यपालन अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारी तक समीक्षा कितोर। वेटका तक और निर्देश इतोर की शासकीय कार्यालय परिसर विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्र पंचायत भवनी खेल मैदान सड़क उटुल और उपयुक्त जगह नगर दिबे त दिबे पोदला उसकना सुनिश्चित की। अभियान 7 जुलाई एवं चले मायनत। मैडम पे मूल समाचार अंतावा बिंदी छत्तीसगढ़ संघ देश भर तक 8 जुलाई तिना लागू आयनत जी रांधी योजना। केंद्रीय सहकारी मंत्रालय स्थापना तंग वर्षा पूरा अस्तक छत्तीसगढ़ तक नार तिना पाड़न और सहकारिता सप्ताह इधर ऐसी सामान्य ऐसी कम मसूर ता आशंका तीन उड़तो कृषि विभाग छत्तीसगढ़ और किसानीर किन मौसम ता अनुरूप फसल पैसना इतोर चला। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान ते नेल प्रदेश तक शून्य तिना पोस एंग वर्षा एवना पिला किन उपितीन और पोलियो ता दवाई इदिना संगोनी समाचार बुलेटिन ता इदंक इगाय मारता जोहार।
1: मीडियम वेव 396.8 मीटर 856 किलोहर्ट्ज़ एफएम बैंड 14.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:45 होने को है। विज्ञापनों के बाद प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
2: खेले जा रहे क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
3: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
4: चलो
3: कहाँ
4: एडमिशन कराने?
5: खाता हुआ एक्टिव।
6: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
8: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
9: हाँ यार पत्रकार जो हूँ।
8: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
9: सुधीर मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और

0: ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
0: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से जल संरक्षण करने और कैच द रेन अभियान में भागीदारी की अपील की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा, अगले 2 दिनों तक घर घर जाकर दी जाएगी पोलियो की खुराक। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में कल से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
7: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
6: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में जरा भी ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। मन की बात कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर सुना गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ इस कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात आज जनता और नेतृत्व के बीच संवाद का सशक्त माध्यम बन चुका है।

0: मन की बात का 135वां एपिसोड मुख्यमंत्री निवास में हम सभी लोगों ने सुना है। एक तो आज एक नई जानकारी मिली है कि रूट ब्रिज मतलब पेड़ों के जो जड़ होते हैं उसको संग्रह करके उसको विशेष प्रयास करके ब्रिज बनाने का काम ये भी देश में चल रहा है। ये सब अद्भुत चीज प्रधानमंत्री जी की मन की बात के द्वारा पूरे देशवासियों को पता चलता है तो बड़ा ही उपयोगी रहता है।
1: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। आज जो बच्चे दवा पीने से छूट गए हैं उन्हें कल और परसों स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिन घर घर जाकर दवा पिलाएंगी। इस अभियान के तहत प्रदेश में 35,98,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अपने 5 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती और शिशुवती माताओं के पंजीयन के लिए 15 जून से संचालित विशेष अभियान में छत्तीसगढ़ ने ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश ने अभियान के शुरुआती 9 दिनों में ही निर्धारित लक्ष्य का 72% पूरा कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। ये अभियान आगामी 15 जुलाई तक चलेगा। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और महिला तथा बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सभी हितग्राहियों को बधाई दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में कल 29 जून से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। 6 जुलाई तक चलने वाले इस सप्ताह के दौरान प्रदेश भर में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। रायपुर में आगामी 3 और 4 जुलाई को राज्य स्तरीय सहकारी चिंतन शिविर, सहकार मेला और संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सहकार मेले में सहकारिता क्षेत्र की उपलब्धियों और सफल मॉडलों का प्रदर्शन किया जाएगा। 6 जुलाई को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा अन्न भंडारण योजना के तहत प्रदेश के 9 पैक्सों में गोदाम निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में लोकतंत्र सेनानी संघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से आने वाली पीढ़ी को आपातकाल के बारे में जानकारी मिलेगी।
0: प्रदेश भर के जितने लोकतंत्र सेनानी हैं उनको सम्मान करने का और आपातकाल को लेकर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन संघ के द्वारा किया गया था जिसमें स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी शामिल हुए थे और इस तरह के कार्यक्रम से निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को आपातकाल के विषय में जानकारी होगी। बहुत बड़ा अन्याय आपातकाल के माध्यम से उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री और सरकार ने किया था।
1: पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण महाअभियान के तहत डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कार्यक्रम को लेकर कल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की वर्चुअल बैठक हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण से न केवल कार्यकर्ताओं का बल्कि जनप्रतिनिधियों का भी डिजिटल और तकनीकी ज्ञान बढ़ेगा। श्री साय ने कहा कि इसके माध्यम से बूथ स्तर तक के नए और युवा कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, इतिहास और कार्यप्रणाली की सटीक जानकारी घर बैठे मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पेंशनरों के हित में बड़ा फैसला सुनाते हुए 6वें और 7वें वेतन आयोग से जुड़े 59 महीने के बकाया एरियर्स के भुगतान का

0: रास्ता साफ कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार के रिट अपील खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि दो राज्यों के बीच वित्तीय समन्वय या सहमति का अभाव पेंशनरों के वैध अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित दंतेवाड़ा की समाजसेवी डॉक्टर बुधरी ताती का आकाशवाणी द्वारा लिया गया साक्षात्कार कल 29 जून को प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। सरगुजा जिले के रामगढ़ में कल 29 जून से 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। महोत्सव के पहले दिन छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति पर आधारित विभिन्न लोक नृत्य और लोकगीत प्रस्तुत किए जाएंगे। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम कोरबी में आज हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बलौदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भारतमाला मार्ग पर मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 लोगों को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। मृतकों में 2 डोंगरी और 1 कोरबी गांव का रहने वाला था। हादसे के बाद चालक फरार हो गया। वहीं सक्ती जिले के भेड़ीकोना गांव में 4-पहिया वाहन ने मोटरसाइकिल सवार युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 1 युवक की मौत हो गई, वहीं 1 अन्य युवक घायल हो गया है। इस बीच बेमेतरा जिले के ग्राम राउरपुर में अचानक कच्ची दीवार के ढह जाने से 2 बहनों की मौत हो गई, वहीं 1 महिला घायल हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों बच्चियां घर के आंगन में बैठी थी, इसी दौरान दीवार भरभराकर गिर गई। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है।
1: दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर मध्य से लेकर भारी वर्षा होने की संभावना है और इसके साथ साथ उत्तर छत्तीसगढ़ में भी सरगुजा संभाग में भी काफी अच्छा बारिश होने की संभावना है। आज से लेकर आगामी 7 दिन तक भी वर्षा का गतिविधि में थोड़ा वृद्धि होने की संभावना है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हल्की से लेकर मध्य वर्षा होने की चांसेस है। बस्तर संभाग में आज से लेकर आगामी 3 दिन तक 1-2 स्थानों पर मध्य से लेकर भारी वर्षा होने की चांसेस है।
0: इस बीच आज बस्तर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की खबर है। जगदलपुर में गरज चमक और तेज हवाओं

0: ने देशवासियों से जल संरक्षण करने और कैच द रेन अभियान में भागीदारी की अपील की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा, अगले दो दिनों तक घर घर जाकर दी जाएगी पोलियो की खुराक। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में कल से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बस्तर संभाग में
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का अपना कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: इस इंजे 18% की सित्ता टैक्स तगा कमी कित्ता आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम आयना उम्मीद मिंदे लेकिन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके उनले कटाद बंडकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% जीएसटी लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नामता ईटा और बंडकल तीन जोड़ाई की अनबूता तेवेन मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड
1: ये समय तक होटल चो खोली ऊपरे जीएसटी चो 4 दर लागते रहे जसन 1,000 रुपया ले कम दाम बीती होटल चो खोली ने शून्य जीएसटी आसे हुता 1,000 ले 2,499 रुपया तक चो खोली ने 12% जीएसटी लागे से 2,500 ले धरून 7,499 रुपया तक चो होटल खोली ने 18% टैक्स लागे से अरु एचो ले आगर दाम चो खोली रलो ने 28% जीएसटी लागे से मानता रेबर होटल चो खोली उपरे दुई प्रकार चो दर लागे दे 7,500 ले कम कीमत बीती खोली रले 5% अरु आगर रलो ने 12% जीएसटी दर लागे दे।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
5: हाँ मंग तो भाई
6: हाँ।
5: ये तो होली जा हाला
6: हाँ।
5: और जो दिन ऐसा नाम चला गया आज यहाँ से कानून की बात
6: हाँ।
5: तो के बोले सुनो
6: हाँ।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम कानून की बात में मैं प्रतिमा अजमानी आप सभी का स्वागत करती हूं। श्रोताओं, ईश्वर ने सभी मनुष्यों को एक जैसा बनाया है, पर आर्थिक स्थिति के कारण यदि कोई व्यक्ति वर्ग कमजोर की श्रेणी में आ जाता है, तब ऐसे में कानून सहायता के लिए लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के रूप में मजबूती के साथ पहल करता है। आज कार्यक्रम कानून की बात में हम जानेंगे लीगल एड डिफेंस काउंसिल योजना 2022 के बारे में। इसके लिए हमें जानकारी देंगे श्री मनोज कुमार श्रीवास, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम रायगढ़। नमस्कार सर, स्वागत है आपका।
1: नमस्कार मैडम।
0: सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल योजना 2022 क्या है।
1: लीगल एड डिफेंस काउंसिल ये एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, नासा के द्वारा संचालित की जाती है
0: जी,
1: जो फौजदारी प्रकरणों में पात्र व्यक्तियों को मुफ्त और पेशेवर कानून सहायता प्रदान करती है
0: जी।
1: इसके पूर्व LADC के पूर्व पुरानी प्रणाली थी कि जो पैनल वकीलों हैं जो तालुका स्तर पर और जिला स्तर पर उन्हें केस टू केस के आधार पर नियुक्त किया जाता था। अभी वर्तमान में LADC में स्थायी वकीलों की नियुक्ति की गई है जो

0: केवल कानूनी सहायता के मामलों में के लिए समर्पित होते हैं और उन्हें प्रदान की सेवाओं को निःशुल्क प्रकरणों की पैरवी करते हैं।
1: जी मनोज जी, इसकी स्थापना कैसे हुई?
0: इसकी स्थापना एक चरणबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से हुई है।
1: जी
0: संविधान और कानून के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 से जो सभी को समान न्याय पर लागू होता है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसे बनाया गया है।
1: जी
0: नालसा की योजना 2022 से प्रारंभ हुई थी, जिसमें आपराधिक न्यायिक प्रणाली में सुधार के लिए LADC स्कीम 2022 तैयार की गई है।
1: जी
0: जिसमें सर्वप्रथम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे बिलासपुर जिले में प्रारंभ किया गया था। इसकी अपार सफलता और जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए चालू किया था उसको देखते हुए ये सभी देश के सभी जिलों में और सभी राज्यों में इसको चालू किया गया है।
1: जी
0: इसकी सफलता को देखते हुए इसे देश के 654 जिलों में
1: जी
0: कार्यान्वित हो चुका है तथा छत्तीसगढ़ में 18 जिलों में इसे प्रारंभ किया जा चुका है।
1: जी सर, LADCS की मुख्य विशेषताएं एवं उद्देश्य क्या है?
0: LADCS में स्थायी वकील होते हैं। इसके पूर्व LADCS की स्थापना नहीं थी, उसके पूर्व में केस टू केस के आधार पर वकील दिए जाते थे, लेकिन जब से LADCS की योजना चालू हुई इसमें डिफेंस काउंसिल को स्थायी रूप से केवल कानूनी सहायता के मामलों के लिए नियुक्त किया जाता है। इसमें इस प्रणाली में केवल फौजदारी मामले पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि आरोपियों को बेहतर कानूनी प्रतिनिधित्व मिल सके। इस योजना के तहत में 3 स्तर पर वकील होते हैं, चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल, दूसरा डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल और तीसरा है असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल।
1: सर, इस योजना का लाभ कौन ले सकता है या कौन व्यक्ति पात्र है?
0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत इसमें पात्र व्यक्ति हैं महिलाएं और बच्चे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य, हिरासत में लिए गए व्यक्ति जो जिला जेल में बंद है।
1: जी
0: ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 80,000 डेढ़ लाख से कम हो,
1: जी
0: उन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से वकील मुफ्त में प्रदान की जाती है।
1: जी सर, इस योजना के तहत लोगों को किस तरह का लाभ मिलता है?
0: इसमें मैडम जो व्यक्ति जेल में बंद है, जिनके आर्थिक रूप से कमजोर हैं या उनके घर परिवार में कोई नहीं है, तो उन्हें हमारे द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है, जो उनके प्रकरण का पैरवी करते हैं और बिना पैसे लिए उनसे उन्हें विधिक सहायता प्रदान करते हैं।
1: जी सर, महिलाओं और बच्चों को किस तरह का लाभ मिलता है?
0: महिलाएं को भी उनकी जो प्रकरण है, जैसे कई महिला ऐसे होती हैं कि उनको जानकारी नहीं होता है
1: जी
0: कि घरेलू हिंसा होता है या उनके पति के द्वारा झगड़ा किया जाता है, पति को छोड़ दिया जाता है, तो हमारे कार्यालय में आते हैं और उन्हें हम उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसको विधिक जानकारी देते हैं कि आप ये कर सकते हैं, आपको अधिकार है, आप ये अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, उनको बताते हैं, समझाते हैं और उनकी तरफ से फिर विधिक सेवा प्राधिकरण से एक अधिवक्ता उनको दी जाती है और वो अपने और अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए
1: उनकी बुनियादी सुविधाएं उनको मिल जाए
0: लेने के लिए वो परिवार न्यायालय में वाद दायर करते हैं। वैसे सिम घरेलू हिंसा में भी है कि उनका उसके पति के द्वारा या घरेलू किसी सदस्य के द्वारा उनके साथ हिंसा की जाती है, तो उन्हें उनको अधिकारों को जानकारी दे करके

0: टोल फ्री नंबर भी है जो हर जिले के उसमें कार्यालय में उपस्थित है, और अखिल भारतीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1500, इसमें भी संपर्क करके वो सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
1: मनोज जी, लीगल एंड डिफेंस योजना का गठन कैसे किया जाता है?
0: जिला स्तर पर गठन इसका चयन प्रक्रिया से किया जाता है
1: जी,
0: जिसमें चीफ, डिप्टी और असिस्टेंट की नियुक्ति की जाती है, जो सिर्फ क्या बोले उसको फौजदारी प्रकरणों, आपराधिक प्रकरणों के लिए ही
1: जी।
0: उसमें नियुक्त जाता है, जो समय समय पर जो पात्र व्यक्ति हैं उनको उनके प्रकरणों की पैरवी करते हैं।
1: मनोज जी, इस योजना की आवश्यकता क्यों महसूस की गई?
0: मैडम, बहुत देखा गया है जैसे कि जेल में जो बंदी होता है ना, जिसे घर परिवार नहीं है या जिसे विधि की जानकारी नहीं है कानून के बारे में, वो व्यक्ति सजा है उससे अधिक सजा को भुगत लिया रहता है, और उसको जानकारी भी नहीं रहता है कि मैंने सजा जितनी है मैं उससे अधिक सजा काट चुका हूँ
1: जी।
0: तो देखा गया कि जिन व्यक्ति को जानकारी नहीं है और उन्हें वकील नहीं मिल रहे हैं, उनके कोई पैरवी करने नहीं है, घर परिवार वाले नहीं आ रहे मिलने के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उस सबको देखते हुए ये सिस्टम चालू लागू किया गया
1: जी।
0: और उसी के आधार पे फिर हमारे जो लीगल
1: एड लोगों को पूरा न्याय मिल सके और
0: लीगल एड डिफेंस काउंसिल के जो वकील हैं वो समय समय पर जिला जेल में जाते हैं और जाकर के विजिट करके उनसे मुलाकात करते हैं, उनके समस्याओं के बारे में जानते हैं
1: जी।
0: और जिनको पात्र व्यक्ति हैं जिन वो
1: लीगल एड डिफेंस काउंसिल लोगों की मदद कर सकता है।
0: देखिए, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिर्फ आपराधिक प्रकरणों के मामलों के लिए ही नियुक्ति बना है
1: जी,
0: और वो सिर्फ उसी की पैरवी कर सकती है।
1: अच्छा,
0: परंतु अगर अन्य प्रकरण जैसे फौजदारी के अलावा जमीन के संबंधित मामले हैं वो हमारे पास आएंगे, हम उन्हें सलाह देते हैं कि ये प्रकरण है, और हमारे लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पैनल वकीलों की नियुक्ति होती है, जो इस मामले में जो लीगल एंड डिफेंस काउंसिल नहीं करते हैं वो पैनल वकील जो नियुक्त हैं उन्हें वो किराया दिया जाता है, तो वो जमीन संबंधी विवाद और अन्य जो हैं जो क्रिमिनल से हट करके हैं वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त कर सकते हैं
1: जी,
0: और जो उनको जानकारी चाहिए कि जो कानून संबंधी में है वो हमारे द्वारा सलाह उनको दिया जाता है, वो बताया जाता है
1: जी। मनोज जी, अब हम चाहेंगे कि लोक अदालत की जानकारी आप हमारे श्रोताओं को दें।
0: लोक अदालत का संचालन नालसा के द्वारा समय समय पर किया जाता है सभी जिलों सभी तालुकाओं में
1: जी,
0: जिसमें दीवानी, फौजदारी, बैंक से संबंधित, चेक बाउंस है जो पैसा लेन देन का मामला है उस संबंध में, पारिवारिक विवाद, भरण पोषण के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, इन सब मामलों का निपटारा लोक अदालत में किया जाता है
1: जी।
0: जैसे किसी का मैटर होता है कि हम उनसे पैसे दिए वो पैसा हमको देना चाह रहा है या किसी कारण से कानूनी मैटर चटक रहा है तो वो हम न्यायालय में भरण पोषण के मैटर हो गए और आपसी भाई भाई के विवाद होता है, जमीन संबंधी विवाद है, उस सारे मामलों को हम लोक अदालत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण वातावरण में उससे समाधान किया जाता है उसमें
1: जी। तो सर, अगर लोक अदालत में कोई मामला जाता है तो उसके उसका मतलब लोगों को अलग बेनिफिट क्या ऐसा मिलता है?
0: त्वरित निराकरण होता है
1: जी,
0: जो आपसी जो पारिवारिक में हो या पति पत्नी में जो तलाक है या जो लंबे समय से खाली

0: योजना पहुंचे और उनको लाभ प्राप्त हो, इसलिए LADCS योजना चालू किया गया है, लागू किया
1: जी
0: गया है।
1: सर, आज की बातचीत से हमें यह समझ आया कि न्याय केवल अधिकार नहीं बल्कि सबका हक है। श्रोताओं, आज हमने जानकारी ली लीगल एड डिफेंस काउंसिल योजना 2022 के संबंध में। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। सर, आप यहाँ आए, हमें जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अनुमति दीजिए प्रतिमा अजमानी को। नमस्कार।

0: की दीदी, ये कानून चौकट तो होली नहीं
1: हाँ
0: मानता रे, इमन प्रति भेंट करता
1: ये
0: रहो।
1: जो हाँ हाँ भेंट करता जो नाथ मनोज श्रीवास्तव और गोड बात करते रहला प्रतिमा अजवानी, तो ये तो होली और हम जो जातो श्याम होली तो हम विदा धरू। बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तो सपा गांव करे दादी दीदी सियान सजन और संग जमेरा संगवारीन मन के मैं झुनकी
0: और मैं मंगतू
1: हम दोनों करूँ से राम राम।
0: राम राम।

बस्तर के स्वर, अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का अपना ये कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आमचगांव।

0: जुहार जिनकी दीदी जुहार
1: जुहार मंगतो भाई जुहार और अच्छी संगे संगे आमचो गांव कार्यक्रम सुनतो सपाए गांव करे दादी दीदी सी अन सजन और संग जमरिया संगवारी मन के मैं जुनकी
0: और मैं मंगतो
1: आमी दोनों करू से जुहार।
0: तो जुनकी दीदी ये ऐसे संग संग पीला मन बोल नहीं भूल कुछ
1: नहीं मन मन के भूलक लोन नहीं होए तो नन्ने ने पीला मन के आमी दोनों चपाटले खोबे खोबे
0: माया तो आमी तो रोजे दिन चौसन दादा दीदी मन लग गोट दरुम बता मूर्ति चिरुम हमने तो उन्हीं आयाम चले गए आजकल आजी चोगोट आसने हस्तशिल्प और उनचो स्थानीय जो कारीगरी मन चो तो कारीगरी मन अबे तो मीर सोत और नहीं बल मीर ने और जोन बल आयाम चो आतले बना लो भी थी ये कहीं चीज बल हो नाले कि ड्यूटी बल गार तो बीती हो नाले कहीं बोले हो और मिट्टी जो बोले सामान बोल दे
1: साहब मैं बोलते रहे मंगतो भाई हस्तशिल्प बोलो ने हाथ ले जोन बोले आमी गढ़ों से बनाऊं से है कि नहीं जैसे ने भी तू बोल ली इसकी माटी ले बामी को नहीं बोल चीज बनाऊं से जैसे कुम्हार आ से कुम्हार बोल अपन हाथ ले ची माटी चो हांडी बनाया से मूर्ति बनाया से कई खिलौना मन बनाया से असने और भी मूर्तिकार मन आसोत हुमन बोले जो न बेल मेटल सो काम करे सोत असने आमी देखूं सी कि कै कसन आसोत जिन मन टुकना टाकरा बना तो काम के करे सोत और कै कसन मन आसोत जिन मन जो ना ए बोलू वे पाटा गात सोत ने भिंतो भिंती पाटा आमी तुआल के दकवा ये सब गात तो काम बल कर सोत ने तो बोल तो कोटे आए कि जित्रो बोले आमचो गांव पारा ने आमी देखूं से जोन बोले स्थानीय हिसाब ने जोन बोले कारीगरी हिसाब ने जोन काम करे सो ये जो ना है हुन मनचो जीवना चो बाढ़ती काज बल होए से और संगे संगे काय पुरखती बिरले मन आपलो आजी दादी मनले सीखला से।

0: उनके मन करते है सोत
1: हाँ।
0: अरे ये आमचो जो नए गांव चो पहचान है
1: हाँ।
0: आमी आजकल कल मशीन चो समय होली से जो आगे बढ़ते जाए से
1: हाँ।
0: और कई कसन मशीन लेवल सब चीज बने से
1: हाँ।
0: मात्र हाथ ले बना तो जो चीज आसे
1: हाँ।
0: उनचो अलगे मोल आसे और उनके जो नए आमके आगे बोले उनके जीवता संगत तो काजे का है कि आप लोग जो नानी नानी पीला मना सोत हुन मन के घर चो जो बोले हुनर आसे
1: हाँ।
0: जसन बोलो भी कुम्हार चो बेटा के कुम्हार चो जो बोले हांडी बना तो काम हो उनके सीख तो रहा है
1: सीख तो रहा
0: भले
1: से
0: उन चीज संग संग और कोई बोल दूसर काम बोल करूक सको तो मानता आप लोग जो माई मुर काम आसे जो आगे जुगे ले आप लोग घर चलो उन करते ही लासे उनके अनुहन मन के कर तो जरूरी है
1: आप लोग परिवार के सिखा तो जरूरी है
0: जरूरी है
1: हाँ
0: नहाले उन धीरे धीरे उन हजुन जाए दे
1: जी जी
0: तो हुनी का जगह है कि आप लोग जो भले
1: माई बोल कला हो नहीं
0: कला हो उनके हमके जीवता संगा तो रहा है।
1: तो उसने है तो आम चलक तो आसी गोटोक जहाला अली जहाला को सुनू
0: आले
1: और
0: आले
1: दादा जी
0: सुनो
1: सुनो
0: आले आले आले
2: की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: जीएसटी काउंसिल बुधवार ने टेन घोषणा की तक की सरकार सीमेंट तपोर्रो जीएसटी मोला 28% तुन कम किस इंजे 18% की सित्ता टैक्स तगा कमी कित्ता आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम मायना दुमिद मिंदे ई लेकिन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवकिन ट्रेवटिन ब्लॉक इतके ओंडले कटा बंडाकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड़ ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% जीएसटी लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नाम ताव ईटा और बंडाकल तीन जोड़ाई की अनबूता तेवेंट मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड़।
1: जुनकी दीदी एक गोट तो होली नहीं हम
0: हाँ।
1: हम चलक तो रोज दिन चना आज गोटक पहाड़ धरने लिखने
0: हाँ हाँ।
1: और ये पहाड़ आए भांडा खोर देव पहाड़ और ये मन के बजा लो बीता मनात संजूराम और साथी
0: तो ये संगवारी मन संगे जो पहाड़ आसे एक बोले मन बजाओ
1: हाँ।
0: और हमी बोले सुनो और हम तो दादा दीदी मन बोले सुनो
1: हाँ।
0: आले

0: हाँ, ये देव पार के तो सुन लू ने, और ये के बजाऊ रोहत सैजू राम और उनचो
1: संगवारी मन। तो मैं बोलता रहे मंगतू भाई,
0: हाँ
1: आम चलोगे समय वाले आसे और आम चलोगे गीत सो मोडरा वाले आसे।

तो गोटो गोटो गीत के सुनाते जाऊंगा नहीं तो सुनू ये गीत के आले।

0: हाँ तो मंगतू भाई
1: हाँ।
0: ये गीत के गाते रहला रायबाली और उनमचो संगवारी मान और हम चला के और बोले गीत आसे तो के बोले सुनो
1: हाँ।

0: तो मग तो भाई
1: हाँ
0: काय नंगत गीत रहने
1: हाँ और ये गीत के गौरव योगेश्वर पुजारी और उनमंचो
0: संगवारी मन तो गीत के तो अमरण दिलू
1: हाँ
0: असने आम चला के और बोले गीत मना से
1: हाँ
0: तो सुनू ये गीत के
1: हाँ
0: आले।

0: तो मंगतु भाई ये गीत करीन बहिन रला ममता चंद्राकर और हनुमंचु संगवारी मन, तो गीत तो खूब नगत लागली हमके और हमसे दादी दीदी मन के बोले नगत लागली होती ने, तो इसी संगे हम चलो समय बोले आसे
1: तो गीत बोले
0: गीत वाले आसे तो सुनू ये गीत के आले।

0: तो मंग तो भाई काय रसिया गीत रहे नहीं अरे के गाँव तेरा शत्रुघ्न सिन्हा रूम मंचू संगवारी मारू तो गीत गोविंद बोल सर ली हमसे गोडबाद बर सर ली और समय हुए से जातो
1: जातो
0: तो विदा धरू
1: अरे आमचो गाँव सुन तो सब पाए गाँव करी दादा दीदी सी सजन मन के मैं मंग थू
0: और मैं झुनकी
1: हम इतना करूँ से
0: जुहार।

आमचो गांव ग्रामीण श्रोताओं के लिए ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनता से संवाद पर आधारित कार्यक्रम मन की बात का हलबी अनुवाद।

जुहार मन की बात ने फेर हारक तुमच्या संगे मी सुनभाती मके खूबे अस्थिर लागे से बरख 2026 चो आधा बरख सरे से ये छह महीना ने आमी मन की बात ने देश चो सपाय लोग मन चो कई एक बाढ़ती चो चीना बीती गोट गुठियालू से जून महीना ने भले आम चो देश के असनी कई एक बाढ़ती चो चीना मिरली जे भारत चो सपाय लोग मन चो छाती के फुलाउन दे हुआ है इस सफल कहनी मन देश चो राखा जतन और बाढ़ती संगे मिसली से एबे गेलो दिने मके कोलकाता ने नौसेना संचो गोटो कार्यक्रम ने भाग धरतो मौका मिली हुता आईएनएस दुनागिरी आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय के भारतीय नौसेना ने मिसा तो होली ये पानी जहाज मंचो डिजाइन और हुनके बना तो काम सपाय आमचो देश ने होली संगवारी मन जून चो महीना ने ची विमानन उद्योग चो ठान ने बले देश गोटो बड़े काम करुन दखाली सी 295 ये जहाज भारत ने बना लो राय और सी 295 जहाज आप लोग पहल हार बादरी उपरे उड़ली और असनी ची 40 टन जहाज मन के भारत ने ची बना तो काम होए से ये चोले एमएसएमई और अंतरिक्ष और विमान चौठान ने नुआ ताकत मिरे से रोजगार चो मौका बाढ़े से और आत्मनिर्भर भारत चो संकल्प बले बरसक होते जाए से यही महीना डीआरडीओ बाटले देश ने बनलो लाफी दुरियाले भूई ने हमला कर तो क्रूज मिसाइल चो बले नंगत हिसाबले परीक्षण होली एके डीआरडीओ चो लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्रीज पार्टनर्स बाटले मिसुन बनातर होली से बलू ने आज ही समुद्र ले धरुन बादरी ऊपर तकले आमचो भारत खूबे बरसक होते जाए से संगवारी मन जून महीना ने और गोटो कार्यक्रम होली जेथा गुलाय संसार चो लोग भारत चो कोसित संगे मिसला और एक कार्यक्रम रली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ए सुहार संसार भर चो 2500 ले आगर ठान मन ने योग चो कैक बरन चो कार्यक्रम मन होली आम चो देश ने कैक करोड़ लोग मन ठान ठान ने योग कार्यक्रम ने भाग धरला ई महीना अहमदाबाद ने होलो विश्व योगासन चैंपियनशिप चो बले गुलाय गोटबात होली यथा भारत बाटले सपाय मिसाउन 114 ठन पदक जीतला इमन ने 102 ठन गोल्ड मेडल बले शामिल आसे ए चैंपियनशिप जो इनाम धरतो ठान ने सबले पहिल भारत रली मैं यथा जीतलो सपाय खिलाड़ी मन के खूबे खूबे बधाई दे से संगवारी मन कोनी बले देश चो आत्मा हुन देश चो लोग मन हो सोत और जिदल दाए हुन देश चो लोग मन काई क्रिया खवात तेवे कोनी बले ताकत हुन मन के आप लो लक्ष्य लगे अमरा तो काजे थेवाउक नी सके राष्ट्र निर्माण चो काम ने भारत चो जन भागीदारी चो ताकत खूबे बड़े धन आए और ए जन भागीदारी चे आमी घन घन दखू से संगवारी मन पश्चिम एशिया ने लड़ई छिड़ तो गरहा के दखुन भाती मैं देश जो सपाय लोग मन के खिंडी गुहार करुन रले मैं बोलून रले कि जितलो बले हो सको तुम्हें खिंडिक समय काजे सोन के नी घेना लोग मन के बोलून रले कि छुट्टी चो समय ने विदेश नी जहा मैं लोग मन के कार ने मिसुन ईआर जहार काजे बोले बोलून रले मैं किसान मन ले केमिकल बीती खत भात के नी बावरूक बेड़ा के बचा तो काजे और प्राकृतिक खत के आगर ले आगर बावर तो काजे गुहार करुन रले संगवारी मन मैं देश चो सपाय गोटोक गोटोक लोग मन चो आभारी आए कि तुम्ही मचो गुहार के सोजे मानला सी नहीं पहाड़ ले हुन काम के आप लो सहायता बलि करला साहस मके कई एक लोग मन आप लो खबर पठन सांगला से कि कई कुटुंब परिवार चो लोग मन ये पक्की विचार करला से कि घर चो बिया टीका ने इसुहार सोन के मुंह

ट्रेनी घेनू दे काम पड़ी जाले जूना बीती सोन के देवन फेर नुआ गहना बनाऊ बलवा। कई एक लोगमन सोशल मीडिया ने ए बले लिखला से कि कसन हुनमन एसु हारचो दूसर देश जातो यात्रा के थेबाउन दिला से। संगवारी मन कार ने मिसुन एतो जातो गोट के बले खूबे लोग पठाला। जे लोगमन रोजे गोट की बाट ने आप लहान गाड़ी ने जाओत हुनमन इनाए संगे मिसुन जासोत। लोगमन अमदिया बस और मेट्रो ने एसत जासोत। एचोले पेट्रोल और डीजल चो बचत बले होई से। असनीची देश चो अलगे अलगे ठान ने प्राकृतिक खत बले खूबे लोग काम ने आंसोत। संगवारी मन मके ए गोट काजे बले हरीक लागली कि संसार भर चो असन चीपा के गुचा तो काजे आमी भारत चो लोगमन मिसुन भांति उवाट करूं से। मके विश्वासा से कि जन भागीदारी चो एक ताकत ले आमी बरसक हों दे आमी सफल हों दे। मचो देश चो सपाए लोगमन आम चो देश ने जन्मदिन बिया टीका कुटुंब समाज चो उदुम मन हो वाए। सपाए लोगमन चो मन रहे से कि हुंचो हरीक दूसर लोगमन संगे मानतो रहो। लोगमन सगा मन के भेंट बले दिवा। संगवारी मन महाराष्ट्र चो नांदेड़ ने गोटो कुटुंब आप लो हरीक के बाट तो काजे असन काम कर ली जेके गुलाय गोट गोठिया सोत। एथा नांदेड़ चो बहादुरपुरा गांव ने पेटकर कुटुंब चो लोगमन रुवात। एमन विचार करला कि हरीक के बाट तो राय जाले असंतीज देतर हो जे अड़नाप चीपा डंड वेरा लोगमन के काम देव। काची सहारा हो आप लोग घर चो बिया रुसुम चो मोहका ने एक कुटुंब चो लोगमन गुलाय गांव पारा चो 3,500 महा लोगमन के दुर्घटना बीमा चो सहायता दिला। गोटोक गोटोक लोगमन के 1,00,000 रुपया चो बीमा कवर दिला। एक कोशिश चो भावना सपाए गोट के सांगे से। कुटुंब चो लोग दखला कि काई घटना गरहा होलो पाछे लोगमन के पैसा कौड़ी चो खूबे चीपा हो गए। असन समय ने नानी नानी असन सहायता बले खूबे बड़ी ताकत दे तो काम करुआ। संगवारी मन सरकार देश चो कई करोड़ कुटुंब परिवार चो लोगमन लगेले सुरक्षा चो कवच के अमराय से। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हिसाब ने सोजे 20 रुपया प्रीमियम हुंचो ऊपरे 2,00,000 रुपया चो दुर्घटना बीमा मिरुआ। ए बतले ए योजना ले 58 करोड़ ले आगर लोगमन मिसला सोत। एमन ने 28 करोड़ महा आमचो माता बहिन मन बेटी मनासोत। ए योजना ले पीड़ित परिवार मन के ए बतले जे हिसाब मिरली से हुन 3,700 करोड़ ले आगर चो सहायता मिरली से। संगवारी मन असनीची प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा वले उतली खास आए। ए योजना कोनी बले लोक चो मोरलो पाछे होंचो कुटुंब के 2,00,000 रुपया चो बीमा कवर दिवाए। जेचो बरक कार चो प्रीमियम सोचे 436 रुपया आए। बलो ने एक दिन चो 1.5 रुपया महा। ए योजना ले एवतले 27 करोड़ ले आगर लोग मन मिसला सोत। एचो हिसाब ने देश चो 11,00,000 महा कुटुंब परिवार के 22,000 करोड़ रुपया चो सहायता मिरली से। ए आंकड़ा खूबे बड़े आए। एचो पाठे कई 1,00,000 कुटुंब परिवार चो आपलो कहनी आसे। कहाँ कोनी माय के पीला मन चो पढ़े लिखे चो खर्चा काजे सहायता मिरली। कहाँ कोनी मेहरार के घर चो जीमा धरतो साका सहारा मिरली। संगवारी मन कई खार कोनी खूबे बड़े सहायता चो मुर खूबे नानी ढाका और खिंडिक पैसा ले होक सके। नानी असन फासला बड़े बड़े बड़े काम काजे नंगत रहुआ। मचो बाटले तुम्ही सपाए के गुहाराए कि आप लो कुटुंब मन ने ए योजना मंचो जानकारी के गुलाय सांगा। मचो देश चो सपाए लोगमन इदाए मन की बात ने गोटो गोट असन विषय चो जे कैक हजार बरख जूना आए। कैक हजार बरख ले मनुख समाज ने भीतरे ले बसुन गेली से। ए विषय आए अंधविश्वास चो। बल्लो ने नी दखुन सुनुन बले विश्वास करतो गोट। ए कैक हार गोटो गलत विचार ची नी होए हुन डर धरा हुआ है। और जिदल दाए डर मन के चेपा हुआ है तेबे मनुख सत के दखे बले नाई। अंधविश्वास ने गुपलो लोग सत के नी जानुन बले काई के नी समझुन भाती असन फासला धरुक मुरियावात जेचो खूबे नुकसान हुआ है। हुताए समाज ने असन लोगमन बले आसोत जे मन विज्ञान आपलो सीखलो और गोट बातले असन

गोठवन के नीपति आवत। अंधविश्वास ले विश्वास तक ये यात्रा सरल नहीं रहे और आजी मैं असनी गोटोक सफल यात्रा चु गोट के तुमके सांगे से। संगवारी मन असम ने गोटोक चढ़ैया से होंच नाव आए हरगिला। हरगिला गोटोक असन चढ़ैया है जे गुलाय दखा नहीं दे। ये प्रकृति के साफ सफा संगातों ने खूबे नंगत काम करुआ है। मानतर असम चो कोई कोनी ठान ने खूबे समयाले एके अशुभ मानते रला। लोग मन एके आप लो ऐले फैले दखा दिले मारून खेदोत। कै खार हुन रुखराई के बले गोंदून देवत जे था हरगिला चो गुड़ा रते रली। विचार करा गोटोक असन चढ़ई जे आली पाली चो साफ सफाई ने सहायता करुआ हुनी हरगिला लोग मन चो डर चो कीर्ता लुकुन रली। यही समय ने जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ये सफाई गोट के दखली। हुन लोग मंचो मन ने बसलो गलत विचार के बदल तो क्रिया खादली। हुन मेहरार मन संगे गोठियाली। हुन लोग मन के विज्ञान चो हिसाब ने समझाली। पाछे धीरे धीरे मेहरार मन ए अभियान ने मिसते गेला और सफाई चो विचार बदलते गेली। जे चढ़ई के कभी अशुभाय बोलून लोग खेते रला हुनी एदाय गांव चो चीना होक मुरियाली। कई हजार गांवकारी मन मेहरार मन हरगिला के बचा तो काजे पूरे हिला। आजी हुन मन के हरगिला आर्मी चो नाव ले जानुक हुआ है। ए मेहरार मन समाज संगे लड़ला बले समाज के समझा तो काजे रात मंझन काम करला और अंधविश्वास के गुचाउन दखाला। हुन मन दखाउन दिला कि जिदलदाय नंगत जानकारी अमरा तोर होय से तेबे कैक बरख चो जूना विचार बले बदलुक सके। संगवारी मन मैं अमदिया बोलुआ कि जे खेलुआ है हुनी नंगत बिकसुआ बले। आज देश ने असन जुआन मन चो संख्या खूबे झपके वाड़ते जाए से जे मन खेल सोत बले और बिगत सोत बले। आगे जुगे चो समयाले आगर जुआन मन एदाए खेल मन के आप लो ए तो समया चो बरस कुआट हिसाब ने मन कर सोत। मके नागालैंड चो दुई ठन असन कोसित मन चो जानकारी मिली से जे खूबे भाव तो असन आए। पहिल कोसित आए नागालैंड बेबी लीग। नाव के सुनन तुम के असन लागे से होती कि ये कोनी नानी पीला मन चो खेल तो खेल होए दे। मानतर असन नो है। ये पांच ले दस बारह बरस चो उम्र चो नानी नानी फूल असन पीला मन चो गोटो खास खेल प्रतियोगिता आए और ये पीला मन चो फुटबॉल खिलाड़ी मन चो गोटोक असन प्रतियोगिता आए जे हुन मन चो रोस और हुनर काजे हुन मन के शिक्षा बले दे हुआ है और एचेले हुन मन जाना चीना बले हो सोत। एच मूर नागालैंड चो आगर ले आगर पीला मन के फुटबॉल ने मिसा तो काजे होन रली। पांच ले बारह बरस चो लेका लेकी मन एथा भाग धरुक सकोत। ये प्रतियोगिता एदाए आप लोग तीन बरस के पूरा ली से। ये प्रतियोगिता ले पीला मन चो मन ने खूबे असर पड़ ली से। संगवारी मन नागालैंड ने और गोटोक नंगत कोसित होए से। ये चो नाव आए नागालैंड वुमन फुटसल लीग। होक सके तुम चुकाजे ये फुटसल गोटोक नुआ नाव होए दे। मैं तुम के सांगे से फुटसल के इंडोर फुटबॉल बले बोलुआत। बल्लो ने बड़े असन बाखरा भीतरे खेल तो खेल। एथा गोटोक दल ने सोजे पांच जन खिलाड़ी रसोत। खेल भाटा बले फुटबॉल चो खेल भाटा ले खूबे नानी रहुआए। एची काजे इसने खेलु पड़ुआ है। हुन मन के आप लो तकनीक और हुनर के नंगत दखाउ पड़ुआ है। नागालैंड चो वुमन फुटसल लीग आम चो बेटी मन के आप लो हुनर के दखा थो काजे नंगत मोह का दे से। मैं असन कोसित मन काजे नागालैंड चो लोग मन चो खूबे सहरानी करे से। असन कोसित मन देश चो दूसर ठान मन के बले शिक्षा दे हुआ है। संगवारी मन ये तकनीक चो युग आए। रोजे दिन है नुआ खोजा करी वाट मन होए से। नुआ नुआ एआई चो नुआचारी उवाट मन पूरे ते जाए से। असन समय ने गोटोक सवाल खूबे खास होए से। लोग मन चो करुण दखातो हुनर के कसन करुण बचातो रहो। नुआ तकनीक उवाट संगे पूरे बाढ़ती करते आमी आप लो जड़ ले कसन टेकुन रहूं दे। असन सवाल मंचो जवाब डगराला से नालंदा विश्वविद्यालय ने। कई हजार बरख चो जूना आमचो नालंदा विश्वविद्यालय एदाए नुआ अवतार हुन भाती भारत चो भाईक के लिख सोत। दुई बरख पहिल मके नालंदा विश्वविद्यालय चो नुआ बनालो ठान के मूर करतो मौका मिरुन रली। नालंदा विश्वविद्यालय बाटले शास्त्रार्थ चो

आवेदन कर लो रासे। संगवारी मन, लेहरा पानी बदल तो किरता ए जड़ बीती फुलिया मंचो पूरे कई एक बिपती वाले एवं आए। असन समय ने मेघालय चो लोगमन ए प्राकृतिक चीना चो दखा राखा चो बले नंगत जी मा उठाला से। आगे ए बले जानतोर कठिन रली कि असन पुलिया मन कित ठना से। देहात चो लोगमन आपने असन पुलिया मन के गनला, ए चो पाछे समाज वाटले ए पुलिया मन चो दखा राखा चो जीमा धरला। आजी देहात चो लोगमन 120 ठन जड़बीती पुलिया चो दखा राखा करसोत। कोनी कोनी दलमन रोजे बरक ए पुलिया मन चो जाचा परखा बली करुआत। कोनी कोनी लोगमन अहले फैले चो ठान के बरसक बना तो काजे नर्सरी बले तैयार करला से। असन हिसाबले एचो नंगत दखा रखा काजे गुलाय ध्यान देतोर होय से। तुम्ही दखला सोती एसु बरक हेलीवार जी के पद्म पुरस्कार देऊन भाती मान करतोर होली। हुन आपलो जीवनाचो 50 ले अगर बरक ए जड़बीती पुलिया मंचो दखा रखा काजे दिला। हुन मंचो असन सपाय के सोपुन देतो गोठ आमचो काजे शिक्षा धरतो असन आए। संगवारी मन, तुम्ही केवई बले जड़बीती पुलिया मन बाटे गेलास जाले, होंचो फोटो छापा मन के सोशल मीडिया ने गुलाय पठावा। तुमचो पठालो छापा दूसर लोग मन के बले मेघालय चो असन पुरखती चीना के जान तो काजे शिक्षा दे दे। मचो देश चो सपाय लोग मन, आमी सपाय चो मनासे कि आमचो गांव साफ सफा रहो, आमचो शहर सुंदर दखा देव। मांतर केवई बले कोनी थेबुन दंडिक विचार नहीं करोत कि आमचो अयले फैले चो जे कचरा जिहुआ उनके कौन साफ सफा करुआ। आगर करून लोगमन ए विचार करुआत कि ए तो कोनी दूसर लोग चो जीमा आए और हुनी ची साफ सफा करे दे। मांतर आमचो मंजी कोनी कोनी

0: रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनता से संवाद पर आधारित कार्यक्रम मन की बात का हल्बी अनुवाद। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है, लीजिए सुनिए कुछ संदेश।
1: बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर,
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
4: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
5: RBI कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पीला मन काजे कोट। आज सुनिए गोस्वामी तुलसीदास पर संतोष कुमार बघेल की प्रस्तुति।

पीला मन का जी गोट ये कार्यक्रम सुन तो सब पाए पीला मन के मोचो बाटली खूबे खूबे माया और लाड। तो पीला मन हम जो ये कार्यक्रम ने महान पुरुष लेखक महापुरुष मंचो कहनी के धरुन हमी एवरोम से असनी आजी बले हमी गोस्वामी तुलसीदास जो जीवन कहनी के तुम चो काजे अनलो से। तो पीला मन गोस्वामी तुलसीदास जो जन्म श्रावण मास ने शुक्ल पक्ष ने 1511 उत्तर प्रदेश जो सोरन गांव ने होली। तुलसीदास जो माता जो नाव हुलसी और पिता आत्माराम दुबे रो ये भारद्वाज गोत्र वंश के सानड्य ब्राह्मण जाति ने जन्म धरला। तुलसीदास जो जन्म 12 माह गर्भ ने टलो पाचे जन्म होला। जन्म होलो बेरा हुनमन जो टोंडले टोंडने पूरा 32 दांत रली और जन्म ते खन हुनचो टोंडले राम शब्द निकरली। सपाय पिलामन जन्म होलो पाचे घगुआत और कोनी कोनी उगाय बल रुवात। मांतर की ये तुलसीदास जो टोंडले जन्म ते खन राम शब्द निकरली यही काजे तुलसीदास के राम बोला भले बलते रहो। जन्म लो बेरा हुनचो शरीर और रूप 5 साल जो पीला असन रो ये मन जो जन्म अभूत काल नक्षत्र ने होली।

हिंदू ज्योतिष जो हिसाब ले बाप जो जीवन का जी खतरा संकट रली उन्हीं का जी चार रात पाचे माँ बाप मन तुलसी दास जो आप लो ले हमेशा का जी त्याग कर ला चुनिया नाव जो आप लो संगे हरिपुर आन ली और 5.5 साल तक हुंचो देखभाल कर ली पाचे चुनिया मरुन गेली हुंचो पाचे तुलसी दास खुबे डुग डंड पावला भीख मांगुन मांगुन आप लो जीवना के अपन चलाते रहो हुंचो पाचे पीला मन 7.5 साल जो तुलसीदास जो उम्र होली महीना जनवरी फरवरी जो शुक्ल पक्ष जो 5वां दिने अयोध्या ने गुरु नरिहरी दास जो पवित्र धागा समारोह चलते रहे जो कि भगवान श्री राम जो तीर्थ स्थल रली तुलसीदास ने अयोध्या ने आप लो शिक्षा दीक्षा शुरू कर ला खिनिक समय पाचे नरहरी दास तुलसीदास के विशेष वरहा क्षेत्र सोरो मंदिर पवित्र स्थान नीला और पहली बार रामायण के सुनाला सांग तो हिसाब ने गुरु ने तुलसीदास के खुबे हार रामायण के सांगला तेवे तुलसीदास के समझ एते गेली कि रामायण काया है और एता तुलसीदास पाचे पवित्र शहर वाराणसी इला और गुरु सनातन ले 15-16 साल जो समय ने संस्कृत व्याकरण 4 वेद 6 वेदांग ज्योतिषी और हिंदू दर्शन के 6 विद्यालय जो अध्ययन करला तुलसीदास जो विवाह 1561 ने कार्तिक मास शुक्ल पक्ष जो 11 तारीख के गोंडा जिला जो नारायणपुर गांव जो उनकी पराशर गोत्र जो ब्राह्मण दीन बंधु जो पुत्री रत्नावली ले होली एक हार तुलसीदास हनुमान मंदिर जाओ रोत और रत्नावली आप लो भाई संगे आप लो बाप चो घरे इली जब तुलसीदास ये जानला तो हुन रोक नहीं सकला और आप लो रत्नावली चो घरे जातो काजे विचार करला मानतर हुन दिन इतलो लहरा धुका बरसा बीज खसरते रहे असन समय आने बले मानतर पीछे नहीं हटला और राती बेरा जी जंगल नदी के पार करून सरजू नदी के पोरुन पार करला और अपनी आप लो पत्नी रत्नावली जो घरे अमरला मानतर रत्नावली तुलसीदास के खुबे खींचली कि असल समय ने तुम्हें इलास मोचो घरे इतलो लहरा धुका जंगल जानवर के तुम्हें निडरून भाती नदी पारून पार करून इलास ये गोट के सुनून खूब खींचली ये गोट के सुनून तुलसीदास बले मन के खुबे सोचला मने मन खूब सोचला कि आप लो जीव के संकट ने डालून असन बेरा मैं एता काय काजे इले बलते और हुनी दिन ले आप लो पत्नी चो त्याग करला और प्रयागराज चो बाट के धरला आप लो गृहस्थ जीवना के त्याग करून साधु चो भेस धरला कुछ समय पाचे राजापुर रौन भाती फिर ले काशी चो बाट धरला लोग मन के राम कथा सुनाते सुनाते कथा सांगुन सांगुन एक दिना मनुक रूप ने प्रेत के भेटला और उन प्रेत तुलसीदास के हनुमान जी चो पता के सांगलो हनुमान संगे भेट होन तुलसीदास श्री राम जो दर्शन करातो काजी प्रार्थना करला हनुमान सांगला कि तुम के श्री राम जो दर्शन होए दे चित्रकूट ने ये सुनून भाती तुलसीदास चित्रकूट जो बाट के धरुन रेंगला चित्रकूट अमरुन राम घाट ने आप लो आसन जमाला एक दिन तुलसीदास प्रदक्षिणा काजे निकुर रो की बाटे उदुपनाय श्री राम जो दर्शन होली मंत्र की दुई नानी नानी राजकुमार गोड़ा ने बसुन धनु कांड के धरुन जाय सोत तुलसीदास हनुमन जो उपरे मोहला मंत्र की पहचानुक नि सकला इतलो रूप इतलो उनके दकुन भाती हनुमन चो बुद्धि काम नि कर ली और हनुमन चो पूरे ले दुई नानी नानी राजकुमार मन घोड़ा ने बसुन गेला हुंचो पाट पाट हनुमान अमर लो और सांगलो सपाई गोट के तुलसीदास खुबे पछताला कि मैं श्री राम के चितौग नि सकले तेबे फिर हनुमान सांगला काली के बड़े बियान तुम के फिर श्री राम जो दर्शन होए दे बड़े बियाने भगवान श्री राम फिर ले इला पीला बालक होन तुलसीदास के बल्ला बाबा हम के चंदन हो तो राय तुम ही हम के चंदन देव लाए सकासे बलते बल्ला श्री राम हुन समय तुलसीदास भाम चपालो मासन होली श्री राम जो सूरत मुरुत शरीर के दकुन ज्ञान

ले सुनूरला मांग मंडी सरते चिकी प्रयाग ले काशी का निकरला और हुता प्रहाद घाट ने कोटुक ब्राह्मण चुगरे ठेबला हुता रो रो तुलसीदास के मने मने कवित्व शक्ति चो बाटे मन लागली और हुन कविता मन लिखुक मुरियाला मांतर हुन कविता के हुन मन दिन ने लिखते रोत तो राती हुन नींद का देते रहे। आठवां दिने तुलसीदास के सपना ने भगवान शंकर आदेश दिलो कि तुम्ही आपलो भाषा ने रचना के लिखा। तुलसीदास सपना दुखुन उठुन बसला हुनी समया भगवान शंकर और पार्वती पूरी इला। तुलसीदास ने हुन मंचो हाथ पाए जोड़ून पाए पढ़ला भगवान शंकर सांगला कि तू अयोध्या ने जाऊन रा और हिंदी ने रचना लिखा। मैं तुके आशीर्वाद दे से कि तू सफल हो से बलून होताले जाते गेला। देवे तुलसीदास हुन आज्ञा के मानून उपड़े धापड़े निकरला अयोध्या चो भाट ने। रामचरित मानस 1631 में देव युग हुन वर्ष रामनवमी इली त्रेतायुग ने राम जन्म चो दिन इली हुनी दिने तुलसीदास श्री रामचरित मानस चो रचना के शुरू करला। ये रचना 2 बरख 7 माह और 26 दिन चो समय ने पूरा होली। हुन चो पाचे भगवान चो आज्ञा ले तुलसीदास काशी ला और भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा के श्री रामचरित मानस के सुनाला और राती के पुस्तक के विश्वनाथ मंदिर ने संगान दिला। बड़े ब्याह ने मंदिर चो दरवाजा खोलला और दखला की पुस्तक चोपरे सत्यम शिवम सुंदरम लिखुरे शंकर भगवान चो चीना बले मिरली होनी संगे समया सपाय लोग मन चो काने सत्यम शिवम सुंदरम चो आवाज के लिए ये गोट के सुनून काशी चो पंडित मन तुलसीदास के ईर्खा होला। हुन मन तुलसीदास चो बकना चकना करुक मुरियाला बदनाम कर तो खूब कोशिश करला और हुनिया समय पुस्तक के चोर तो काजे उपाय बनाला। दुई चोर के तुलसीदास चो कुटिया ने पटाला मांतर चोर मन दखला की बाहरी दुई सुंदर युवक धनुकांड के धरुन पहरा देश होत। हुन मन के दर्दक्तो के हुन मन चो बुद्धि भ्रष्ट होली और सदबुद्धि ली और हुनी दिन ले हुन चोर काम के छानुन दिला। तुलसीदास सोचला कि भगवान के कष्ट होली और यही सोचुन आप लो पूरा सामान चमक के देन दिला और पुस्तक के आप लो जोड़ी डोंडरमल अकबर चो नवरत्न ने एकलो चो थाने संगान दिला। हुन चो पाचे आप लो स्मरण शक्ति ले दूसरा रचना करला

मांतर की मुख्य रचना मनाए रामचरित मानस, कवितावली, संकट मोचन, राम लला नछु, वैराग्य संदीपनी, गीतावली, करखा रामायण, बरबे रामायण, श्री कृष्ण गीतावली, रीता रामायण, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, झुलना, जानकी मंगल, सतसई, छंदावली रामायण, रामाज्ञाप्रस, कुंडलिया रामायण, काली धर्माधर्म, निरूपण, दोहावली, राम सलाका, हनुमान चालीसा और बहुत सी रचना तुलसीदास ने कर ला। आप लोग समय ने गोस्वामी तुलसीदास के भारतीय और पश्चिमी विद्वान मन कर लो रचना काजे, कविता लिख तो काजे, हिंदू समाज लेवल प्रभाव डाल तो काजे, खूब सम्मानित कर ला। गोस्वामी तुलसीदास बलुआत ये संसार में कई प्रकार जो लोग आसोत, रतो ढंग लगाए, रब जो रहन सहन आए, भिने भिने आत, हम के सपाए लोग के गोठिया तो राय, मिलुन मिसुन रतो राय, जसन नाव नदी ले दोस्ती करुन, आप लोग बाट बनावाए और पार करवाए, असनी हामी बले नंगत कोट बात ले, आप लोग व्यवहार चलन के नंगत चलाऊन, ये संसार जो भंवर सागर के पार करवा। तुलसीदास असनी रचना करते करते 30 अगस्त 1623 ने वाराणसी ने आप लोग दे के छाणुन गेला। तो पिला मन ए रहे गोस्वामी तुलसीदास जो जीवन जो कहनी। तो ये कार्यक्रम सुन तो सब पै पिला मन के मैं जातो पूरे मुझो बाटले खुबे खुबे मया और लाड़।

चमन काजे गोठ। अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में समाचार होंगे, हम इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना कर

0: सकता है, जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावना

तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने

0: द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व, विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि यह सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में

0: मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
2: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: असम के धेमाजी जिले में सीमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गाँव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहाँ फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है।

0: है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी। फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 9 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनता से संवाद पर आधारित कार्यक्रम मन की बात का गोंडी अनुवाद।
3: जोहार मन की बात तगा वेणोंडाम मी संगे जुड़े मास नेक वेरकायम ता 2026 ता सगम वेडसा मारान वेला अत्ता ई आरु लेंस ते मम मन की बात तगा देशम तो रसंगे नरगे विकास माठा किन वेहता जून लेंस ते वेन देशम तगा चुडुम विकास बुता अत्ता अदे नूर्स देशम तोर नेक वेरका आतोर ई सफल अत्ता बुता देशम ता सुरक्षा और आत्मनिर्भरता ता संगे जुड़े मास मिंदे इंजिन नाकिन कोलकाता तगा नौसेना तद उन कार्यक्रम ते जुड़ेम आयन उन मौका दुर्की मत्ता अगा INS दूनागिरी INS संशोधक और INS अग्रय किन भारतीय नौसेना तगा शामिल कित्तोर यु जहाज किन नकनेल मनो देशम ता तरीका ते फुटी कित्तोर संतोरी जून त लेंस ते जहाज पाड़ान भूता ते देशम उन नकाय बढ़िया सफलता पोइता C-295 इत जहाज माव देशम तगान पुटिकित्त आर C-295 जहाज तंब मदोलता उड़ान तीन पूरा कित्ता और ईसोंताव 40 जहाजी भारत तगान पारम तोर इदेन लय MSME और विमान अंतरिक्ष क्षेत्र किन पूर्ण ताकत दरकमता रोजगार त मौका पुटमता आर आत्मनिर्भर भारत आलसुड बन दुर्सायमता इदे महीना ते DRD तोरु माव देशेम तगान पुट्टाव नरगे जुई दायनाव और लड़े मायनाव मिसाइल नत परीक्षण बन कित्तोर अदेन DRDO तोर और भारतीय उद्योग तोर कली बना कित्तोर इतके नैन समुद्र तीना पोइस पोरो मोयूल तगेवना माव भारत नेकाय सुरक्षित और आत्मनिर्भर बने मायमता संतोरी जून लेंज ते वेंडोन बूता आसमत्ता अदेन गुलाय दुनिया तोर भारत ता यु कोशिश बूता किन उड़ तोर अद बात इतके अंतर्राष्ट्रीय योग दिनाम ई दुनिया ता 2500 ते दिवे जागानगा योग ता नर्ग कार्यक्रम आसमत्ता मनव देशम तग करोड़ो मूल जागा जागानगा योग कार्यक्रम तग कलित तोर इदे लेंज ते अहमदाबाद तग आसमत्त विश्व योगासन चैंपियनशिप तीन बैंड नर्गे वेहतोर अदेनगा भारत 114 मेडल जीतता अवेनगा 102 सोनता मेडल मिंदे भारत इद आरा जीता ते मेडल जीड़नगा पहला नंबर ते मत्ता नन्न कोंडे जीतोर खिलाड़ी नर्गे नर्गे बधाई अम्तान संतोरी बेदेवन राष्ट्रमता आत्मा अगतोर जनता मंतोर और अद देशम तोर बेदेवन क्रिया पैत के अदेन

बस्ता और प्लास्टिक किन ईटा बना किया नग बूता मधु लगता नैन अवे प्लास्टिक ता ईटा नर्ग जागा किन न कह सो की नद जागा बना किया मता राजगढ़ तक चुडून महीना ते सैकड़ों किलो प्लास्टिक किन रिसाइकल तान वेंडे पारिस अदेन काम ते तान बूता आयम ता इतके प्लास्टिक मुन्ने शहर किन गंदा किस और मत्ता अदे इंजे

राजगढ़ तक चुडून महीनाते सैकड़ों किलो प्लास्टिक किन रिसाइकल तन वेंडे पाड़ीस अदेन काम ते ततन बूता आयम।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 9:30 होने को है। अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

प्रस्तुत है कार्यक्रम दौना। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हल्बी भजन और गीत। कलाकार हैं मधुराम और साथी।

दसों दसों लगा गए से बिकलाऊना। चलिए मारे

दोना, अभी आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम में हल्बी भजन और हल्बी लोकगीत। आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से ये कार्यक्रम आपके सेवा में प्रसारित किया गया। इस कार्यक्रम के कलाकार थे मधुराम और साथी। इस समय रात्रि के 11 बजने को हैं। अब हिंदी अंग्रेजी में समाचार होंगे, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में

0: फ्रांस के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust.